शुभ सवेरा, नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं सुनीता सिंह, अपने सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं। श्रोताओं, आज गुरुवार है, विक्रम संवत 2083 के भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि और शक संवत 1948 के आश्विन मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 24 सितंबर सन 2026। इस समय 7:04 हुए हैं। हमारी ये सभा अब आरंभ होती है। आप सभी के लिए आज का दिन शुभ हो, मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, यही शुभकामना हमारी।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, समय है कि आपको आज प्रातःकालीन प्रसारण सभा में जो कार्यक्रम प्रसारित होने वाले हैं उनकी जानकारी दें, लेकिन उसके पहले आज के दिन की बात करते हैं, 24 सितंबर की बात करते हैं। हर साल 24 सितंबर को विश्व गोरिल्ला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़े प्राइमेट्स में शामिल गोरिल्लाओं के संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा और उनके सामने मौजूद खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित दिन है। इस तारीख का विशेष महत्व है। 24 सितंबर सन 1967 को प्रसिद्ध प्राइमेट शोधकर्ता डैन फॉसी ने रवांडा में करिसोके रिसर्च सेंटर की स्थापना की थी। लगभग 5 दशक से अधिक समय तक गोरिल्लाओं के अध्ययन और संरक्षण से जुड़ा ये प्रयास आगे चलकर उनके संरक्षण के वैश्विक अभियान का महत्वपूर्ण आधार बना। विश्व गोरिल्ला दिवस की शुरुआत सन 2017 में इसी विरासत को याद करते हुए की गई थी। आइए आपको जानकारी दें कि क्यों आवश्यक है गोरिल्ला का संरक्षण। गोरिल्ला केवल जंगल का एक विशालकाय जीव नहीं, बल्कि वन पारिस्थितिकी तंत्र का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो जिन जंगलों में रहते हैं वहाँ वनस्पतियों और जैव विविधता के संरक्षण में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए गोरिल्लाओं की रक्षा का अर्थ उनके साथ साथ उनके पूरे वन आवास और उसमें रहने वाली अनेक प्रजातियों की रक्षा करना है। गोरिल्लाओं के सामने प्रमुख चुनौतियों में वनों का विनाश और आवास का सिकुड़ना और अवैध शिकार तथा मानवीय गतिविधियों का बढ़ता दबाव शामिल है। संरक्षण के प्रयासों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी, वैज्ञानिक अध्ययन और प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। एक रोचक तथ्य ये भी है कि माउंटेन गोरिल्ला संरक्षण की उल्लेखनीय सफलता की कहानियों में शामिल है। लगातार संरक्षण और निगरानी के प्रयासों से उनकी स्थिति में सुधार लाने में मदद हुई है। हालांकि गोरिल्लाओं की अन्य आबादियां अब भी गंभीर संरक्षण चुनौतियों का सामना कर रही हैं। तो श्रोताओं, गोरिल्ला दिवस हमें याद दिलाता है कि जंगल में किसी प्रजाति का बचना दरअसल पूरे जंगल की सांसों का बचना है, क्योंकि प्रकृति में कोई भी जीव अकेला नहीं होता है। हम सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम सबकी पारस्परिक निर्भरता है। इसलिए आवश्यक है हर जीव का संरक्षित रहना। तो आज विश्व गोरिल्ला दिवस है, 24 सितंबर की तारीख है, तो आप भी संकल्प लें कि इस दिशा में आप महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं कि क्या कुछ खास लेकर हम उपस्थित हुए हैं आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा में। रोज की तरह सबसे पहले आप सुनेंगे कार्यक्रम जीवन सौरभ, उसके बाद अक्षय निधि और फिर आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम का। सुबह 8 बजे वतन का राग कार्यक्रम प्रसारित होता है। इसमें आज हम बात करेंगे भीकाजी रुस्तम जी कामा की। बाल सभा कार्यक्रम में पौराणिक कथाओं के महत्व पर चर्चा होगी सुबह 8:30 बजे। 9 बजे हमारी सेना हमारा गर्व कार्यक्रम होगा, इसमें आप सुनेंगे नेवी और एयरफोर्स की कार्यप्रणाली के विषय में। आप जानते ही हैं कि 15 अगस्त को भोपाल में कविता कृष्णमूर्ति का आगमन हुआ था, हमारी आज़ादी के महापर्व में वो शामिल हुई थी। इस कार्यक्रम का पहला भाग आपको हम विशेष कार्यक्रम में सुनवाएंगे सुबह 9:30 बजे। 10 बजे देश के संस्थान कार्यक्रम में चर्चा होगी BEML की। आज़ाद हिंद कार्यक्रम केंद्रित होगा प्रीति लता वादेदार पर। प्रसारण का समय 10:30। 11 बजे नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा का प्रसारण होगा। और 11:30 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। जहाँ भी रहिएगा, बने रहिएगा रेडियो आज़ाद हिंद के साथ, सुनते रहिएगा 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और उसके बाद आपको सुनवाएंगे आज की पहली प्रस्तुति, कार्यक्रम जीवन सौरभ।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जीवन सौरभ।
2: महेश भूपति भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया। एक समय था जब उनके शरीर में स्थायी विकलांगता आ गई थी, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय इसे अपनी ताकत बनाते हुए अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छुआ। महेश की कहानी ये बताती है कि किसी भी कठिनाई को आत्मविश्वास और मेहनत से पार किया जा सकता है। उनके द्वारा उठाए गए कदम और उनकी मेहनत ने उन्हें एक प्रमुख टेनिस खिलाड़ी बना दिया। इस प्रकार महेश भूपति की कहानी हमें ये सिखाती है कि विकलांगता सिर्फ एक शारीरिक स्थिति है। अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई भी बाधा हमारे रास्ते में नहीं आ सकती।
3: न जी भर के देखा न कुछ

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: श्रोताओं, कहते हैं वही मनुष्य जीवन में ऊपर उठ सकता है जो अपनी जड़ों से जुड़ा होता है। तो आइए हम भी अपनी जड़ों की ओर चलें, वेदों उपनिषदों के ज्ञान को सुनें। कार्यक्रम का नाम अक्षय निधि।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 26 से वाचन। ऋषि हैं ग्रत्स्मत एवं भार्गव शौनक, देवता ब्रह्मणस्पति, छंद जगति।
1: ऋजु ऋच्छंसो वनवद वनुष्यतो देवयन निदेवयन्त मभ्यसत सुप्रावीरिद वनवत प्रत्सु दुष्टरम यजवेद यज्योर्वी भजाति भोजनम। ब्रह्मणस्पति देव की स्तुति करने वाले सज्जन स्तोता ही देवगणों का पूजन करते हैं तथा देवगणों को न मानने वालों एवं हिंसकों का संहार करते हैं। उत्तम संरक्षण प्रदान करने वाले वे ब्रह्मणस्पति देव युद्ध में दुर्धर्ष शत्रुओं को मारते हैं। याज्ञिक ही यज्ञ न करने वाले व्यक्तियों के ऐश्वर्य का उपभोग करते हैं। यजस्व वीर प्रविहि मनायतो भद्रम मनः कृष्पुष्व वृततूर्ये हविष्कृष्णुष्व सुभगो यथाससि ब्रह्मणस्पतेरेव आवृणीमहे। हे मनुष्यो, यज्ञ के द्वारा अहंकारी शत्रुओं का विनाश करो। विघ्नों को नष्ट करने के लिए मंगलमय विचारों से जुड़कर ब्रह्मणस्पति देव के संरक्षण की कामना से हविष्यान्न तैयार करो जिससे सौभाग्यशाली बन सको। स इज्जनेन स विषा स जन्मना स पुत्रैर्वाजम भरते धाना नृभिः देवानां यः पितर माविवासति श्रद्धा मना हविषा ब्रह्मणस्पतिम। जो याजक श्रद्धा भावना से देवों के पालन करता ब्रह्मणस्पति देव को हव्य समर्पित करता है वह व्यक्तियों द्वारा समाज द्वारा तथा संतति द्वारा ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है और मनुष्य मात्र का सहयोग पाता है। यो अस्मै हव्यैर घृत वद्भिर विधत्प्र तं प्राचा नयति ब्रह्मणस्पतिः उरुष्यति महसो रक्षति रिंशो होशिश्च दस्मा उरु चक्रिरद्भुतः। जो याजक यज्ञ में ब्रह्मणस्पति देव के निमित्त घृतयुक्त हव्य से आहुतियां समर्पित करता है उसे ब्रह्मणस्पति देव उत्तम संरक्षण प्रदान करते हैं, पाप से बचाते हैं, दारिद्र्य आदि कष्ट से रक्षा करते हैं और देवत्व के मार्ग में बढ़ाते हुए अद्भुत महान बना देते हैं।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 26 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
2: ये था आपको आपकी जड़ों से जोड़ता कार्यक्रम अक्षय निधि। रेडियो आजाद हिंद की इस प्रसारण सभा में बहुत कुछ है खास आगे आपके लिए। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, ध्यान से देखें तो मालूम होता है कि जीवन एक सरफिरा मौसम है जो कभी अपने साथ ले आता है सूखे पत्तों में आंधियां बांधकर, तो कभी दे जाता है भटकते बादलों से रिसती हुई बारिशें। जीवन एक सरफिरा मौसम है जो कभी अपने साथ बांध लाता है चांदनी से निखरी शरद की शीतलता, तो कभी डाल डाल हर पात से झरता मधुमेह वसंत। जीवन एक सरफिरा मौसम है जिसमें कोई एक रंग ठहरता ही नहीं, चाहा अनचाहा हर रंग हमें डुबोता रहता है पल पल, और जीवन के इस चाहे अनचाहे हर रंग को समभाव से देखने का हमें सामर्थ्य देती है हमारी आध्यात्मिक गहराई, हमारी आस्था। और अपनी उसी गहराई, उसी आस्था को विस्तार देने का अभ्यास है वंदना। आइए हरि सुमिरन करें, वंदना करें।

ये एक पल, एक क्षण की बात है कि जब हमारे भीतर प्रेम घटित होता है, परमात्मा अनुभूत होता है। सच तो ये है कि वो उपस्थित है सदा सर्वदा से, किंतु उसकी अनुभूति एक अलग ही सौंदर्य है। इस अनुभूति की महिमा अलग है और इसी को प्रसाद कहा गया है। जीवन एक पात्र है, प्यास है, एक गहन प्यास। ये प्यास जितनी गहन होती है, अनुभूति उतनी ही सघन। परमात्मा की अनुभूति के लिए चेतना की जागृति आवश्यक है और जागृति का यही प्रयास है नाम स्मरण।

श्रोताओं, हमें चाहिए कि हम स्वयं को भगवान के लिए अर्पित कर दें। वही हमारे लिए सबसे उत्तम सहारा है। जो मनुष्य भगवान के सहारे को जानता है और समझता है, वो भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। उसका जीवन आनंद हो जाता है।

प्रभु चरणों की प्रीति मनुष्य के मन में प्रकाश भर देती है। अखिल विश्व में उसे परमात्मा ही दिखाई देने लगता है। उसको पाप के प्रहार का फिर कोई भय नहीं रहता और न ही उसे मृत्यु डराती है। वो तो मग्न रहता है अपने आराध्य के प्रेम में।

ईश्वर माया के प्रभाव से बिल्कुल परे है। प्रभु के नाम की पुनरावृत्ति कर करके जिस व्यक्ति के मन में उनकी प्रीति उत्पन्न हो जाती है, उसकी आत्मा भी माया के प्रहार और प्रभाव से परे हो जाती है। इसीलिए आराधना में जप का विधान है, नाम स्मरण का विधान है।

श्रोताओं, जीवन की सम विषम परिस्थितियों को, जीवन के सुख दुख को, आंसू और मुस्कान को हम समभाव से देख सकें, यही कामना उस परमेश्वर से हमारी। इसके साथ ही संपन्न होता है भक्ति संगीत का आज का ये कार्यक्रम। अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। हमारी अगली प्रस्तुति कार्यक्रम वतन का राग।

यह घटना 18 अगस्त 1907 की है। जर्मनी में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में एक ऐसी भारतीय महिला को भी आमंत्रित किया गया जिसने स्वयं को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित कर दिया था, और वो महिला थी भिकाई कस्तम कामा, जिनका परिचय सभा मंच से देते हुए सम्मेलन के नेता जीन गौरस ने उन्हें हम सफर प्रतिनिधि कहकर ससम्मान बुलाया, और ये सुनकर वे आवेश और उत्तेजना से इतनी भर गईं कि उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उसे भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक ध्वज स्वरूप बड़े गर्व से वहां लहरा दिया। सारा पंडाल तालियों से गूंज उठा और आवाज आई, भारतवासियों उठो और अत्याचार के विरुद्ध सीना तान कर खड़े हो जाओ। ये छोटी सी कहानी है तिरंगे के जन्म की।

कामा बम्बई के संपन्न पारसी परिवार में 24 सितंबर 1861 को पैदा हुई। उनके पिता ने उन्हें पश्चिमी सभ्यता के संस्कारों के अनुरूप लालन पालन की व्यवस्था की, लेकिन इसके विपरीत बुद्धिमान, जन्मजात प्रतिभा संपन्न और संवेदनशील इस तरुणी से भारतवासियों के साथ अंग्रेज हुकूमत के अत्याचार, शोषण और उनकी दयनीय दशा देखी नहीं गई। ये वो जमाना था जब स्त्रियों का घर से बाहर निकलना काबिल एतराज हुआ करता था, जबकि कामा तो बड़े घर की बेटी थी और वे समाज सेवा करना चाहती थी। फिर भी घर के कड़े विरोध के बावजूद वे स्वयं को रोक नहीं पाई और अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए जी जान से जुट गईं। सन 1885 में एक अधिवेशन में नेताओं के ओजस्वी भाषणों और अपील से वे बड़ी प्रभावित हुई और तभी से एक सक्रिय निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में समाज सेवा के लिए मैदान में कूद पड़ी। जात पात, धर्म संप्रदाय के भेदभाव से परे उन्होंने ही सबसे पहले महिलाओं को संगठित किया, महिला संस्थाओं की स्थापना की और समाज कल्याण और राजनीतिक दोनों ही क्षेत्रों में सक्रिय रहते हुए नारी उत्थान और देश प्रेम के प्रति उन्हें प्रेरित किया। भीकाजी कामा के क्रांतिकारी विचारों और ब्रिटिश हुकूमत विरोधी गतिविधियों से तंग आकर उनके पिता ने सन 1885 में उनका विवाह रुस्तम जी कामा से करा दिया, जिससे कि वे अपने घर परिवार को संभालें और बाहरी गतिविधियों से दूर हो जाएं। लेकिन अपने पक्के इरादे के कारण ये विवाह उनकी राजनीतिक गतिविधियों में कोई रुकावट नहीं बन सका। वे अक्सर कहती थीं कि मेरा विवाह तो मेरे ध्येय के साथ हो चुका है। उनकी इसी जिद के चलते उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय नहीं रहा। इसी दौरान जब वे अस्वस्थ हुईं, तो उनके पति ने उन्हें इलाज के लिए इंग्लैंड भेज दिया, ताकि देश से बाहर जाकर वे राजनीति से दूर हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके पहले कि वे स्वस्थ होकर भारत लौटती, उनकी भेंट प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी श्याम वर्मा से हुई और उन्होंने भारत लौटने के बजाय इंग्लैंड में ही रहते हुए वहां भारत की आजादी के लिए संग्राम छेड़ दिया। श्याम वर्मा के साथ वे हाइड पार्क में खड़े होकर अपने ओजस्वी भाषणों से आजादी का नारा बुलंद करने लगी। इससे इंडिया ऑफिस के अधिकारी उनसे क्रुद्ध हो गए और उन्होंने कामा को इंग्लैंड से निष्कासित कर देने की धमकी दी।

0: आखिरकार कामा इंग्लिश चैनल के रास्ते इंग्लैंड छोड़कर फ्रांस जा पहुंची और पेरिस को अपनी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना दिया। पेरिस में उनका आवास क्रांतिकारियों का मुख्य अड्डा बन गया। यहाँ भारत, फ्रांस और रूस के सभी भूमिगत क्रांतिकारी शरण लेते थे। ब्रिटिश अधिकारियों ने उनकी गतिविधियों से घबराकर उनके भारत प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया और इस कारण वे करीब 35 सालों तक फ्रांस में रहीं। अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें फ्रांस सरकार से पाने की कई बार कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। 35 वर्षों तक भारत से निष्कासित रहते हुए भी वे निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती रहीं और अपनी गतिविधियों को जारी रखा। इस निर्भीक महिला में अपनी वृद्धावस्था में स्वदेश लौटने की इच्छा और उत्कंठा ऐसी बलवती हुई कि उन्हें ब्रिटिश सरकार को राजनीति में हिस्सा न लेने का वादा करना पड़ा। अंग्रेज अधिकारियों ने ये मानते हुए कि अब ये कमजोर महिला यहाँ कुछ कर भी नहीं सकेगी, कामा को भारत आने की अनुमति दे दी। बम्बई पहुँचने पर उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर सीधे अस्पताल पहुँचाया गया और वहाँ पर 8 माह के बाद 13 अगस्त 1936 को उनका निधन हो गया। उनकी भारत लौटने की इच्छा का उद्देश्य मातृभूमि की गोद पाना था। आज जब भी हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा लहराता है, इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की याद ताजा हो जाती है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रीक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना, नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, बच्चों की महफिल तैयार है जगमगाती हुई, खिलखिलाती हुई और गुनगुनाती हुई। तो चलिए एक छोटे से अंतराल के बाद आपको हम लिए चलते हैं उनके बीच और सुनते हैं कार्यक्रम बाल सभा।

0: कि मैं हूँ मुकेश खन्ना आपका शक्तिमान, या आप कह लो भीष्म पितामह, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है बच्चों के लिए पौराणिक कथाओं का महत्व।
2: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
1: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी, हाजिर हूं लेकर आपके लिए आपका फेवरेट कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में हम बात करते हैं कि आजकल आपके साथ साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और उस दिन को, उस सप्ताह को, उस महीने को, और आपकी जीवन के हर दिन को कैसे सुंदर बनाया जाए, क्या बातें की जाएं जिससे आपका जीवन उस खूबसूरत फुलवारी की तरह महकने लगे जहाँ तरह तरह के फूल होते हैं। और बच्चों, जब हम फुलवारी की बात करते हैं तब हम बात करते हैं कि जहाँ फूल होते हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ फूल नहीं होते, कुछ कांटे भी होते हैं, कुछ बड़े बड़े पौधे वृक्ष भी होते हैं, और कुछ नन्ही नन्ही सी भी हम देखते हैं क्यारी में पत्तियाँ उगाती हैं, है ना। एक तरफ बड़ी बड़ी लताएँ दीवार छूने को तैयार रहती हैं, और दूसरी तरफ छोटी छोटी सी घास होती है जिसके ऊपर से हम सब चलकर जाते हैं। फुलवारी और जीवन एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे है जैसे जब हम आईने में खुद का चेहरा देखते हैं ना, तो हम देखते हैं कि अरे मैं ऐसा दिखता हूँ। तो बस जीवन में आपका जीवन बिल्कुल फुलवारी की तरह है। कभी जैसे बहुत तेज़ बारिश आ जाती है तो कुछ छोटे पौधे एकदम झुक जाते हैं और कुछ तने खड़े रहते हैं, है ना। तो जीवन में भी ऐसा ही है, तरह तरह की बातें हैं, अच्छे दोस्त हैं, कई गलत सलाह देने वाले भी हैं। बच्चों, ऐसे ही फुलवारी की तरह कुछ बहुत खूबसूरत फूलों जैसे दिन हैं और कुछ कांटे की तरह भी दिन हैं, है ना। जब आपको वो चुभने वाले कांटों की तरह कोई दिन लगता है ना, जैसे कोई एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, कोई छोटी सी भी ऐसी बात हो गई, मान लीजिए कि आपकी किसी अच्छे दोस्त से कुट्टी हो गई, कुट्टी तो समझते होंगे, है ना, मतलब थोड़ी बहस हो गई, थोड़ी नाराज़गी हो गई, और आप दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की, तब भी तो आपको अच्छा नहीं लगता। तो उन सब दिनों में ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमको संभाले रखती हैं? बच्चों, सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है इन सब दिनों में? सबसे अच्छी बात होती है आपके भीतर का धैर्य, आपकी समझदारी, आपकी अनुशासन प्रियता, आपकी शालीनता, आपकी भाषा, आपका बात करने का तरीका। ये अच्छे से अच्छे दिनों को और अच्छा बना देता है, और इनफैक्ट बुरे दिनों को भी थोड़ा बेहतर बना देता है। अब लेकिन ये सब हम सीखें कैसे? उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम अच्छी कहानियाँ पढ़ें, अपने बुजुर्गों के साथ बैठें, उनसे उनके अच्छे बुरे दिनों के जीवन के अनुभव लें, है ना। और बच्चों, एक और चीज़ होती है बहुत हमारी संस्कृति में, आपने भी सुना होगा, दादी नानियाँ अक्सर कभी राम की कहानियाँ सुनाती हैं, कभी कृष्ण की सुनाती हैं, कभी बहुत पौराणिक कथाएँ हमें सुनने को मिलती हैं जब हम जाते हैं कहीं बुजुर्गों के बीच बैठते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ बैठते हैं। तो वो कहानी, वो कथाएँ क्यों सुनाई जाती हैं, कभी सोचा है आपने? कुछ बच्चे तो बहुत ध्यान से सुनते हैं, है ना, और कुछ बच्चे एकदम से ऐसे हो जाते हैं कि अरे बोरियत हो रही है। पर नहीं बच्चों, आपको ऐसी कहानी, ऐसी कथाएं ज़रूर सुननी है, क्योंकि यही वो कहानियां और यही वो कथाएं हैं जो आपको कठिन दिनों में भी संबल देती हैं, और बेहतर चरित्र और बेहतर नागरिक बनने की दिशा में भी ये कहानी, ये कथाएँ बहुत बड़ा काम करती हैं, बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। तो चलिए आज हम चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जहाँ मिट्टी

कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो बच्चों के बाल मन को समझ में नहीं आता, लेकिन समझाना पड़ता है। तो चलिए, कंस अपने दानवी दांव चल ही रहे थे, अब क्या होता है आगे बताती हूं। कंस ने कृष्ण को समाप्त करने के अपने प्रयास जारी रखे। इस काम के लिए उसने विकट दानवी दांव का प्रयोग किया। वत्सासुर नामक छली दानव एक बछड़े का रूप धारण करके कृष्ण बलराम के बछड़ों में जा मिला। कृष्ण ने बलराम के कान में कहा, दाऊ, वो बछड़ा तो हमारा नहीं, लेकिन ये बछड़ा हम पर घात क्यों लगा रहा है? कृष्ण ने अकस्मात ही उस बछड़े को पिछली टांगों से पकड़कर इस प्रकार फेंका कि वो एक कटीले तने वाले पेड़ से टकराकर नीचे आ गया और निष्प्राण हो गया। पूतना का भाई वकासुर भी बदला लेने एक विशाल बगुला बनकर आया और उसने कृष्ण को अपनी चोंच में पकड़कर उठा लिया। कृष्ण तुरंत अपने शरीर का ताप बढ़ाकर आग का गोला बन गए। बगुले ने कृष्ण को चोंच से छोड़ दिया तो उन्होंने उसकी चोंच चीर कर उसे यमलोक भेजा। तो बच्चों, ये जो कहानी थी, अब अगर कोई बच्चा आप में से ये कहे कि दीदी आपने कहा था आप कहानी को डीकोड करेंगी, तो बताइए इस कहानी को डीकोड करके कि हम इसके क्या अर्थ समझें। इस कहानी का अर्थ मैं एक और कहानी आपको सुनाऊंगी, फिर बताऊंगी। कंस लगातार चालें चल रहे थे और एक ना एक असुर को, एक ना एक दानव को भेज रहे थे। वृंदावन में आने वाला अगला दानव था व्योमासुर। बच्चों, वो एक चरवाहे बालक का वेश धारण करके आया। तब कृष्ण तथा उनके साथियों ने चरवाहे और भेड़ चोर नामक खेल खेल रहे थे। दो दर्जन ग्वाले भेड़ बन गए थे, साथ उनके चरवाहे और संयोगवश व्योमासुर को भेड़ चोर बनाया गया था। खेल खेल में कई भेड़ बने ग्वालों तथा कुछ चरवाहे बालकों को चुरा कर वो दूर एक गुफा में कैद कर आया। उसने कई बार ऐसा किया तो कृष्ण ने देखा कि उनके साथी ग्वाले चरवाहे गायब हो रहे हैं, केवल 5-6 ही बचे हैं। अंतिम बार कृष्ण ने उनका पीछा किया और उसके दानवी खेल का रहस्य जान गए। कृष्ण ने व्योमासुर को ललकारा, तब दानव ने असली रूप में आकर कृष्ण पर आक्रमण किया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और कृष्ण ने एक शक्तिशाली वार कर दानव की जीवन लीला को समाप्त कर दिया और अपने साथियों को गुफा के कैद से मुक्त करा लिया। सभी गोप और मित्र कृष्ण का पराक्रम देखकर दंग रह गए, है ना बच्चों? अब व्योमासुर की मृत्यु का प्रतिशोध भी लेना था, तो उसी दिन उसका भ्राता अघासुर भी आ पहुंचा। वो एक विशाल अजगर के रूप में आया और पगडंडी पर बैठ गया, जिस पर से ग्वाले चरवाहे अपने पशुओं के साथ आया जाया करते थे। उसने अपना आकार इतना बढ़ा लिया कि उसका मुंह एक गुफा मार्ग जैसा लगने लगा। ग्वाले सकरी घाटी समझकर उसके मुंह में अपने साथ साथ बछड़े और भेड़ बकरियों को भी ले गए। कृष्ण ने पीछे से चिल्लाकर चेतावनी दी, परंतु ग्वाले चरवाहे उनकी बात नहीं सुन पाए। तब कृष्ण वहां दौड़कर पहुंचे और अघासुर के मुंह में कूद गए और अपना शरीर इतना बढ़ाया कि अघासुर ने अपना मुंह बंद करना चाहा, तब भी बंद नहीं कर पाया। अब क्या हुआ कि जब कृष्ण अपने शरीर को बढ़ाते गए तो अजगर की सांस रुक गई और एक बार पुनः अघासुर भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो बच्चों, जो सबसे बड़ी बात है वो आती है अब इन कथाओं को डीकोड करने की, है ना? तो बताऊं आपको या आप लोग खुद ही समझ गए हैं इस कहानी को? अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लग रहा है कि आज के जीवन में इस कहानी को हम कैसे इसे प्रासंगिक माने, क्योंकि आज असुर दानव ये तो देखने को नहीं मिलते, तो चलिए अब कृष्ण की इस लीला को थोड़ा सा डीकोड करते हैं। अब देखिए, कंस लगातार दानव भेज रहा है, कृष्ण लगातार उनको मृत्यु के दरवाजे तक ले जा रहे हैं।
इस

0: बात में छुपी है एक बात बच्चों, कि लगातार आपके साथ कोई बुराई करना चाहे तब भी आप चाहो तो उसको परास्त कर सकते हो, लेकिन उसके पीछे आपको क्या चाहिए, आपका फोकस चाहिए कि नहीं चाहिए। उनके दोस्त गुफा समझकर अंदर चले गए, लेकिन कृष्ण को समझ में आ गया कि यहाँ कोई चाल है। और कृष्ण ने क्या किया, अपना शरीर बढ़ाकर उस राक्षस के शरीर में जा घुसे और अपने शरीर को इतना विराट रूप में दिखाया कि उसकी सांस लेना मुश्किल हो गया। अब दूसरी बात बच्चों ये है कि जब हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे इस कहानी में आपने सुना कि कैसे सारी भेड़ें गायब हो रही हैं, लौट नहीं रही हैं, है ना, कृष्ण को अचानक याद आया कि ये तो कोई चाल है। अब आपके साथ, मेरे साथ, हम सबके साथ ऐसा कभी कुछ हो ही सकता है कि हम ये दिमाग लगाएं कि जो सामान्य नहीं है, अगर कुछ भी असामान्य हो रहा है तो उस पर ध्यान दें, उसको इग्नोर करके या अवॉइड करके आगे ना बढ़ें। जैसे हम रोज खेलने जाते हैं, कभी पार्क में, है ना, कभी हम अपने घर के गार्डन में खेल रहे होते हैं, कभी मोहल्ले में हम दूर तक खेलने निकल जाते हैं, कभी अपने दोस्तों के घर भी चले जाते हैं। अगर तो सब कुछ सामान्य है बच्चों, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अगर छोटी सी बात भी आपको ऐसी लग रही है जो असामान्य है, तो ईश्वर आपकी रक्षा तभी करेंगे जब वो बात आप अपने माता पिता को बताएंगे, है ना। वो छोटी सी बात जो आपको असामान्य लग रही है, कोई भी डेली रूटीन की कोई भी बात जो आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, वो अपने माता पिता को ज़रूर बताएं, है ना। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि माता पिता को धरती पर ईश्वर ने आपकी रक्षा, आपका ध्यान, आपकी हर बात सुनने के लिए भेजा है बच्चों। कहते हैं ना, धरती पे भगवान रोज दिखे ना दिखे, लेकिन माता पिता का रूप भगवान का ही रूप होता है। इसलिए पहले तो उनका बहुत सम्मान कीजिए और फिर दूसरी बात, उनसे कुछ मत छुपाइए। एक बार की बात है जब द्रौपदी चीरहरण के वक्त कहती हैं, ये मैंने एक प्रसंग सुना था एक कथा में, बड़ा अच्छा प्रसंग है बच्चों, आपको बता रही हूँ क्योंकि ये भी कृष्ण जी से ही जुड़ा प्रसंग है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि द्रौपदी कह रही हैं कि कृष्ण, जब ये सब कुछ हो रहा था तब तुम कहाँ थे। तब कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जब दुर्योधन ने ये ऐलान किया कि पासा मेरा मामा फेंकेगा, तब तुम्हारे पतियों को ये याद क्यों नहीं आया कि पासा कृष्ण फेंकेंगे। अगर पासा मैं फेंकता तो संभव है कि कोई और जीत जाता। तो कई बार हम इतना देर से अपने माता पिता को, इतना देर से ईश्वर को याद करते हैं कि तब तक बहुत देर हो जाती है बच्चों, है ना। तो कृष्ण ने भी यही कहा कि द्रौपदी, जितनी तुम नाराज हो रही हो उतनी बड़ी गलती मेरी है नहीं। एक बार सभी कौरवों से पूछो कि क्या उन्होंने ये सब होने से पहले मुझे याद किया था। तो हमेशा याद रखिए कि जब किसी मुश्किल में पड़े, अपने माता पिता को, अपने ईश्वर का जरूर ध्यान करें। हो सकता है बहुत सारी मुश्किलों से आपको वो पहले ही निकाल लें, क्योंकि क्या होता है, एक और कहावत है, का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब कृषि सूख गई पूरी, जब कोई घटना हो ही गई, तब ऐसी बरसात का क्या फायदा, तब ऐसी बात बताकर क्या फायदा। और फिर आप चलिए कुछ हो भी गया बच्चों तो उसका भी हल है, लेकिन पहले अगर बता देते हैं कोई भी बात तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, इसी बाल सभा में हमने उन बच्चों से भी आपकी बात कराई थी जो बच्चों को नशे की लत लग गई थी, याद आ रहा है आपको। ऐसे भी बच्चे स्टूडियो में आए थे, लेकिन उनके जीवन में वो घटना घट चुकी थी। पर अब जब बाल सभा से आप ऐसी बातें सुन रहे हैं, बाल सभा में हम लोग आपके लिए ऐसे प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं, ऐसी बातें आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो आपको पहले ही मार्गदर्शन दे सकती हैं, तब हमें क्या करना है, तब हमें इन बातों को ध्यान से सुनना है। क्योंकि इसी बाल सभा में एक बच्चे ने आपको बताया था कि नशे के कारण उसका एक दोस्त अंत में इस जीवन से चला गया। वो बच गया क्योंकि उसको कुछ बहुत अच्छी दीदियां मिल गई, उसके माता पिता ने उसका साथ दिया। लेकिन अब जब हम ये बात सुन रहे हैं बच्चों, तब हम ये बात जान सकते हैं कि नहीं, हमें उस रास्ते पे जाना ही नहीं है, अगर आपका कोई दोस्त, अगर आपका कोई रिश्तेदार आपसे बड़े भाई की तरह या कुछ आपको गलत संगत में लाना चाह रहा है या कोई गलत बात सिखा रहा है, तब वहीं हमको इस बात का ध्यान रखना है कि ये बात सामान्य नहीं है, ये बात असामान्य है। तो सबसे पहले किसे बताना है? अपने माता पिता को। यही है कहानी को आज जो डिकोड किया मैंने आपके लिए वो। और याद रखिए बच्चों, कई बार लोग जो कहते हैं ना वो बहुत सही बात कहते हैं कि कुछ बच्चे ये सुनकर सीख जाते हैं कि बिजली में करंट आता है उसे हाथ नहीं लगाना, लेकिन कुछ बच्चे करंट खाकर सीखते हैं कि इस तार में करंट है। हमें तार क्यों छूना बच्चों? जब हमें पता है कि वहां पर करंट है तो हमें उसे क्यों छूना है? क्योंकि अगर छू लिया हो सकता है कि वो करंट हल्का हो, आपका हाथ झनझन आ जाए, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो बहुत तीव्र करंट हो और आप बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाएं। तो हमें क्यों नहीं माननी अच्छी बातें? क्यों हमें सब कुछ करके ही, उसके अंजाम को देखकर ही मानना है कि ये चीज गलत है? कई बार अपने बड़ों की बातें बच्चों मान लेनी चाहिए। अब आगे की कहानी सुनाऊं आपको। अब क्या होता है कि कृष्ण, बलराम और पूरा गोपदल वन में लुका छिपी के अतिरिक्त और भी कई तरह के खेल खेलते थे। रोज नए नए खेल सुझाए और खेले जाते थे। पक्षियों, दूसरे जीवों पर कीटों की बोलियों की नकल उतारना सबको भाता था। जंगली जीवों के नन्हे बच्चों की तरह फुदकना, कुलाचे भरना, कूदना, फांदना, सब कुछ बहुत अच्छे से इन बच्चों को भाता था। एक बार वन में आग भड़क गई। लपटों ने घास और पेड़ पौधों को लीलना आरंभ कर दिया। जंगली जीवों और चरगाहों में चरते पालतू पक्षियों का जीवन भी खतरे में पड़ गया। गोपो ने कृष्ण से कुछ उपाय करने की गुहार लगाई तो कृष्ण ने उन्हें आंख बंद करने के लिए कहा। जब उन्होंने आंख बंद कर ली तब श्री कृष्ण ने मुंह द्वारा एक लंबी सांस भरी और सारी लपटें अपने भीतर खींच ली। जब गोपो ने अपनी आंख खोली तो अग्नि का कहीं नामो निशान न पाकर घोर आश्चर्य से दांतों तले उंगलियां दबा ली और प्रशंसा भाव से अपने सखा कृष्ण की ओर देखने लगे। अच्छी है ना ये कहानी? इसके बाद की कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी, अपनी दादी नानी, मामा मौसी, किसी न किसी से जरूर सुनी होगी कि वृंदावन के निकट यमुना नदी के पानी में एक दैत्याकार काला नाग रहता था जिसके 100 लहराते हुए फन थे और उसका नाम था कालिया। वो अपना घातक विष पानी में घोलता और जो भी पशु वो पानी पीता तुरंत मर जाता। तत्पश्चात कालिया उन्हें खा जाता। मृत्यु के भय के कारण कोई वहां का जल पी नहीं पा रहा था। यमुना जी के इस इलाके पर कालिया का एक छत्र राज था। एक दिन कृष्ण ने कालिया को सबक सिखाने का निर्णय ले लिया। कृष्ण अपने गोप सखाओं को खेलने के लिए नदी तट पर ले गए। जब उनकी गेंद पानी में गिरी तो उसे लाने के लिए कृष्ण पानी में कूद पड़े। क्रोध से फुफकारते कालिया ने कृष्ण को अपनी लपेट में ले लिया और लगा कुंडली कसने। उत्तर में कृष्ण ने अपना शरीर फुलाना आरंभ किया। उनके शरीर का फुलाव इतना शक्तिशाली था कि कालिया की हड्डियां चटकने और टूटने लगीं। कालिया ने तुरंत कुंडली खोल दी। जब आशंका में डूबे नंद बाबा, यशोदा और दूसरे लोग तट की ओर दौड़े तो उन्होंने बालक कृष्ण को पराजित कालिया के फन पर बांसुरी बजाते और नृत्य करते पाया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब बच्चों, इन दो कहानियों को डीकोड करने से पहले मुझे लगता है हमको तीसरी कहानी भी सुन लेनी चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी कहानी है। गोवर्धन पूजा होती है कई लोगों के यहाँ, सुना होगा आपने, है ना? दीपावली के दूसरे दिन वर्षा के देवता इंद्र की पूजा की परंपरा थी ताकि समय पर बरसात हो। कृष्ण ने लोगों से कहा इंद्र की पूजा करने के स्थान पर क्यों ना गायों की पूजा की जाए जो हमें दूध देती हैं, अथवा क्यों ना गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाए जो हमारे पशुओं के लिए घास उगाता है। लोगों ने कृष्ण की बात मान ली और इंद्र की पूजा उस दिन ना करके किसकी की? पर्वत की। इंद्र ने कुपित होकर मूसलाधार बारिश आरंभ कर दी। जल थल एक हो गया, चारों ओर त्राही त्राही मच गई। कृष्ण सभी को पशुधन सहित गोवर्धन की तलहटी पर ले गए और गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर धारण करके खड़े हो गए। वृंदावन वासियों एवं उनके पशुओं ने उसके नीचे आश्रय ले लिया। सात दिन पानी बरसा, कृष्ण उसी मुद्रा में खड़े रहे। अंत में इंद्र ने पराजय स्वीकार की और कृष्ण से क्षमा याचना की। तभी से दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की प्रथा आरंभ हुई। अब इन तीन कहानियों को ना एक साथ डिकोड करते हैं बच्चों। पहली कहानी क्या थी, याद आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा, मैं याद दिलाऊं। एक कहानी तो थी कालिया नाग की, उससे पहली कहानी थी जब जंगल जल रहे थे, तब उनके दोस्तों ने कहा कि ये तो बड़ा खराब है कि सारे कीट पतंगे सब जल जाएंगे। अब इस कहानी को हम डिकोड करते हैं। तीनों कहानियां प्रकृति के करीब की कहानियां हैं। ये तीनों कहानियां हमसे कहती हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमें इंसानों का साथ नहीं देना है, कभी कभी हमें अपनी नजर उस तरफ भी दौड़ानी है जो खुद बोल नहीं सकते, जैसे पौधे, जैसे पेड़, जैसे कीट पतंगों की भाषा। चिड़िया चहकती तो रोज है, लेकिन कितने लोग समझ पाते हैं कि वो आपके दरवाजे पर आकर क्या बोल रही है? कुछ लोग तो गर्मी में उसके लिए कटोरे में सकोरे में पानी रख देते हैं क्या, लेकिन सब लोग रखते हैं? नहीं। कृष्ण की तरह ये लीला हम तो नहीं कर सकते कि हम पूरी आग को लील कर उस आग को एक चुटकी में समाप्त कर दें, लेकिन हम इस कहानी से बच्चों सीख लेकर ये जरूर कर सकते हैं कि जब भी कभी जंगलों में जाएं या उसके आसपास जाएं, तो कोई भी ऐसा सामान जो आग को बढ़ावा दे सकता है, ज्वलनशील पदार्थ जिन्हें बोलते हैं, उनसे बचें। ठीक। दूसरी चीज बच्चों, गोधन। इसमें एक शब्द आया ना, गोधन, गाय जो हमें दूध देती है। हा? हमारा कितना सारा अन्न हमें खेती से मिलता है, कृषि से मिलता है, क्यों ना हम अपने खेतों की, उस पर्वत की जहाँ घास है और जिसे पशु खाते हैं। कितनी बड़ी बात है, मतलब प्रकृति की सुरक्षा का संदेश देती है ये कहानियाँ। अब आसान भाषा में आपको समझ आया कि गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठा लिया, ये भी कृष्ण की लीला है, लेकिन इसके पीछे छुपी हुई वो बात है जो हम सबको करनी है। क्या? आसपास पहले तो देखिए कि आपकी हरियाली हो। दूसरी बात, आपके आसपास अगर आप कहीं गए हैं, पर्वत श्रृंखला है कोई, अगर आप ऐसी जगह कहीं गए हैं जहां प्रकृति के खूबसूरत नजारे हैं, तो वो बने रहें। इसके लिए प्रकृति का संरक्षण बहुत जरूरी है बच्चों। जैसे कई बार मैंने देखा है लोग नदी के तट पर जाते हैं और खूब सारी कचरा गंदगी छोड़ कर आते हैं। क्यों? क्यों? यही तो ये कहानियां सिखा रही हमको कि प्रकृति का संरक्षण, संवर्धन और उनका स्वास्थ्य। अब आप कहोगे नदी का भी कोई स्वास्थ्य होता है? मैं कहूंगी हाँ, बिल्कुल होता है। नदी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ये पूरे मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी कौन है? नर्मदा नदी। अब हम उसको कैसे संरक्षित और सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं बच्चों? सबसे पहली बात, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना के बराबर कीजिए, क्योंकि जो प्लास्टिक नदियों में जाती है वो जलीय जीव को नुकसान पहुंचाती है, उनका जीवन खतरे में पड़ता है। और आप देख रहे हैं कृष्ण जी कैसे अपनी गायों को बचाने के लिए क्या क्या कर जाते हैं, कीट पतंगों के लिए पूरी आग को अपने मुंह में ले लेते हैं। तो क्यों नहीं हम छोटे छोटे से बच्चे जो हमें सुन रहे हैं, वो ये प्रयास करें कि अब की बार जब कहीं जाएंगे तो ये चिप्स के पैकेट्स, ये प्लास्टिक की बॉटल, ये सब कचरा जो भी आपके कारण वहां हो रहा है, उसे वापस अपने साथ लेकर आएंगे, है ना? लेके आएंगे कि नहीं? अगर आप लेकर आएंगे तो नदी थोड़ा सा अच्छी अच्छी लहर उठाकर आपको थैंक यू बोलेगी। तो चलिए, अब समय आ गया है कि हम संकल्प ले लें। तो एक बार पुनः अपनी आंखें बंद कर लीजिए, शांति की मुद्रा में बैठ जाइए, दिमाग को बिल्कुल शांत कर लीजिए। जो ख्याल आपके मन में बच्चों आ रहे हैं, उसे आने दीजिए, बस शांत रहिए। आज की जो कहानियाँ हमने सुनी हैं, उनको सुनकर हमारा पहला संकल्प है कि हम कभी भी कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होंगे। हमारा दूसरा संकल्प है, हम स्वयं के साथ साथ बेजुबान जीवों का भी ख्याल रखेंगे और उन्हें नुकसान नहीं होने देंगे। तीसरी बात, यदि हमें कुछ भी अपनी जिंदगी में असामान्य लग रहा है, सबसे पहले अपने माता पिता को बताएंगे। और अब आज का आखिरी संकल्प, प्रकृति की रक्षा, प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति का स्वास्थ्य, इन सब का ख्याल हम बच्चों को जरूर रखना है, क्योंकि प्रकृति की जिम्मेदारी में ही समझदारी है। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को रगड़िए, धीरे से आंख पे लगाइए और बच्चों बहुत धीमे से आंखें खोल लीजिए। अब जब आंखें खोल ली हैं तो मुझे बहुत प्यार से जाने की अनुमति दीजिए, क्योंकि आज की बाल सभा में हमने जो बातें की हैं वो बातें यही थी कि पौराणिक कथाएं जो हमारे घर में हमारे दादी बाबा, नाना नानी, मम्मी पापा सुनाते हैं, उन सब कथाओं का, उन सब कहानियों का कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर होता है। तो उनको न सिर्फ सुनना है बल्कि समझ में नहीं आ रहा है तो मम्मी पापा से उसको डिकोड भी करवाना है। अब चलो, अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बहुत सारे बच्चों के, तो प्लीज़ बहुत मेहनत से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। चलती हूँ, अगली बाल सभा में फिर कुछ अच्छी बातें करने के लिए लौटूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, और मैं थी आपके साथ आपकी मित्र मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: बाल सभा,
2: तो श्रोताओं, ये थी बच्चों की खूबसूरत सी महफिल जिसे आप कहते हैं बाल सभा। आगे बहुत कुछ खास आपके लिए लेकर हम हाजिर हैं, बने रहिए हमारे साथ। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: हेलो, पप्पू पेजर बोल रहा हूँ। ए झंटू ले झटक, दादा ना मटक, और मेरी बात गले में सटक।
4: नमस्कार, मैं हूँ सतीश कौशिक, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
2: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, सेवानिवृत्त। कर्नल भामा ने लगभग 2 दशकों से अधिक समय तक भारतीय थल सेना में अपनी सेवाएं प्रदान की, जिसमें उन्होंने राजस्थान से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक भारत की सीमा पर महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में योगदान दिया। इंडियन आर्मी में आपकी कमिश्निंग, वर्ष 1988 में इन्फेंट्री ऑफिसर के तौर पर 6वीं बटालियन मद्रास रेजिमेंट में हुई। आपने सियाचिन ग्लेशियर, करगिल, सिक्किम, पंजाब, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में कई महत्वपूर्ण काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस क्रियान्वित किए। भारतीय थल सेना से सेवानिवृत्ति के पश्चात आपने कुछ समय तक डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर भी कार्य किया। आप डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के अलावा भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद के पूर्व छात्र रहे हैं। कर्नल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद अदिति।
2: अगर हम बात करें तो 2 अन्य मुख्य सशस्त्र सेनाएं भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जल सेना है और वायु सेना है। तो इंडियन आर्मी के अलावा अगर आप हमें बता सकें इंडियन नेवी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस तरह का रहता है और एयरफोर्स का किस तरह का रहता है।
3: ओके अदिति, हम इंडियन नेवी के बारे में बात करते हैं।
2: जी,
3: वदित है कि हमारे पास जो कोस्टल लाइन है
2: जी,
3: 7,500 किलोमीटर की हमारी कोस्टल लाइन है।
2: कर्नल साहब, ये वो 15,000 किलोमीटर की जो आपने सीमा बताई थी वो आपने लैंड बॉर्डर की बात की, और अब आप जल की बात कर रहे हैं।
3: हमारा देश 3 तरफ से जो है जल से घिरा हुआ है,
2: पेनिनसुला है।
3: और इसके अलावा हमारे देश में, जैसे आपको मालूम है कि बे ऑफ बंगाल में तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर मेन लैंड से 572 आइलैंड्स का एक ग्रुप है, जिसको हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहते हैं। 572 मतलब छोटे मोटे नहीं होते, काफी सारे आइलैंड्स हैं। इसी तरह से हमारे जो अरेबियन सी में जो है तकरीबन 300 से 400 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप आइलैंड्स का 36 आइलैंड्स का ग्रुप है। तो अगर आप इन सबको देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि इन सबकी सुरक्षा
2: भी बहुत महत्वपूर्ण है और जटिल है।
3: इसकी इनकी सुरक्षा करना बहुत ही जटिल कार्य है। और हमारे पास 7,500 किलोमीटर की कोस्टल लाइन के अलावा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जिसपे कि हमारे देश का अधिकार होता है, उसको कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है सी में।
2: तो
3: और जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो 97% ऑफ जो ट्रेड होता है हमारे देश का व्यापार है वो सी रूट से होता है।
2: करण साहब, मैं बस एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूँगी कि क्या इकोनॉमिक जोन जिसके बारे में आपने भी बात की, उसकी रक्षा का दायित्व भी इंडियन नेवी का रहता है?
3: हाँ जी, बिल्कुल रहता है, क्योंकि इस चीज पे भी हमारा हक है। तो उसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना जो है
2: हमारी जिम्मेदारी,
3: हमारी जिम्मेवारी होती जी। है तो दूसरा ये है कि जैसे मैंने भी बोला कि 97% ऑफ हमारा जो ट्रेड है वो सी रूट से होता है। तो ये जो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, स्लॉक जो है, इसकी देखभाल करना, इसकी सुरक्षा करना जो है, ये भी नेवी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। इंडिया में हमारे पास जो है 12 मेजर पोर्ट्स हैं और तकरीबन 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, मतलब बड़े पोर्ट्स हैं। और इन पोर्ट्स में जो है हमारा 95% जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, जो हमारी देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। नेवी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देश की सुरक्षा, सी की तरफ से आने वाले किसी भी बाहरी हमले से अपने देश की सुरक्षा करे, अपना जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसकी देखभाल करे, सुरक्षा करे, जो हमारे पोर्ट्स हैं और जो हमारा ट्रेड है वो स्मूथली काम कर सकें, ये एक उनकी बहुत बड़ी
2: यानी इंडियन नेवी जो है वो सैन्य सुरक्षा के अलावा आर्थिक सुरक्षा करने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान करती है।
3: या बिल्कुल योगदान करती है, बिल्कुल करती है। और हमारी जो नेवी है वो इसको हम बोलते हैं कि इट्स अ थ्री डायमेंशनल फोर्स। थ्री डायमेंशनल फोर्स कैसे होती है कि आपने देखा होगा नेवी जो है उसके पास अपने एयरक्राफ्ट हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, देश को हवाई सुरक्षा भी देते हैं, उसके अलावा शिप सरफेस के ऊपर जो है शिप चलते हैं सी में, और सबमरीन्स होती हैं जो कि अंडर वाटर भी ऑपरेट करती हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो थ्री डायमेंशनल जो है प्रोटेक्शन फोर्स है। नेवल हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है, इनका जो नेतृत्व करते हैं उनको चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कहा जाता है, वो भी जनरल साहब के रैंक के बराबर हुए रहते हैं। और नेवी की तीन जो है कमांड्स हैं,
2: जैसे आर्मी की आपने बताई थी सात हैं, इस तरह से नेवी की तीन है।
3: नेवी की तीन कमांड है, तो एक वेस्टर्न नेवल कमांड है और एक ईस्टर्न नेवल कमांड है। ये जो दोनों कमांड है ये ऑपरेशनल कमांड कहलाती हैं। वेस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर मुंबई में है और ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। तो जैसे आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल साहब कमांड को का नेतृत्व करते हैं, इसमें जो है वाइस एडमिरल जो है वो इसको हेड करते हैं। और तीसरी जो इनकी कमांड है वो है सदर्न नेवल कमांड है, जो कि ट्रेनिंग कमांड है, वो कोची में इसका हेडक्वार्टर है। और बेसिकली जितना भी ट्रेनिंग का इनके इंस्टीट्यूट हैं, जो भी इनका ट्रेनिंग का कार्य है, मतलब रिक्रूटमेंट लेके ऑफिसर की ट्रेनिंग के लिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेनिंग कमांड की रहती है। जो नेवी है, जिस तरह से हमने बात करी थी कमांड के अंडर में कोर होती हैं, ठीक है, इसी तरह से नेवी में देखा जाए तो फ्लीट्स होती हैं। तो अच्छा। दोनों जो फ्लीट्स हैं, वेस्टर्न फ्लीट और जो है वो मुंबई में बेस्ड है, और ईस्टर्न फ्लीट जो है वो हमारी विशाखापट्टनम में बेस्ड है। फ्लीट क्या होता है, जब मैं बोल रहा हूँ फ्लीट, जो शिप्स होती है ना
2: जी,
3: उसका एक ग्रुप होता है।
2: अच्छा।
3: जो एक अथॉरिटी के अंडर में काम कर रहा होता है उसको हम फ्लीट बोलते हैं
2: जी।
3: तो ये जो फ्लीट्स हैं इसके अंडर में, देन उसके नीचे क्या है, फ्लोटिला बोलते हैं, ठीक है, वो आती हैं, जो कि मतलब अगेन सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं, जैसे हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके नीचे फिर छोटी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, ताकि आप जैसे हमने आर्मी में देखा था कि कमांड है, कोर है, कोर के नीचे डिवीजन है, तो ऐसे ऐसे से मतलब जो है नीचे फ्लोटिलास होती हैं, ये जो होते हैं अगेन ग्रुप ऑफ शिप्स होती हैं, और ये अलग अलग जगह पे जो है बेस्ड होती हैं, जैसे पोर्ट ब्लेयर में है, उसके बाद जो है विशाखापट्टनम में है, ताकि उनको एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल क्लियर कट डिवाइड हो सके। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का द्वीप समूह है
2: जी,
3: उसका जो कमांड एंड कंट्रोल है या उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक ट्राई सर्विस कमांड होती है
2: जी।
3: ट्राई सर्विस कमांड का मतलब तीनों जो आर्मी नेवी एयरफोर्स हैं तीनों मिलके जो हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को देखती हैं।
2: अच्छा, इनका संयुक्त जिम्मेदारी
3: रहती है। ये हमारे देश में एक कमांड है जो कि तीनों मिलके देखते हैं।
2: जाहिर सी बात है क्योंकि आपने बताया 572 आइलैंड्स का समूह है
3: जी,
2: तो
3: उसमें हमें तीनों चीजें चाहिए होती हैं। उसमें हमें आर्मी भी चाहिए देखभाल करने के लिए, नेवी भी चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, और हमें एयरफोर्स भी चाहिए। तो इसमें जो है तीनों जो होती हैं, तीनों मिलके जो है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की देखभाल करते हैं। इसको हम अंडमान एंड निकोबार कमांड बोलते हैं।
2: आपने हमें बताया कि तीन कमांड रहती है, ईस्टर्न कमांड और वेस्टर्न कमांड, और एक ट्रेनिंग कमांड जो रहती है। ये इससे इतर है कि ये इसी में सम्मिलित है?
3: बिल्कुल इससे अलग है, ये इससे अलग है। तीन तो जो कोस्टल लाइन को देखती है मेन जिसमें से कि दो मतलब देख रही हैं, एक दो ऑपरेशनल कमांड है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कमांड जो देख रही हैं, और इसके अलावा जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक अलग कमांड है,
2: और क्योंकि उसमें तीनों का संयुक्त
3: योगदान है। तो उनके जो कमांडर होते हैं, जो कमांड को जो लीड करते हैं, वो भी तीनों में बारी बारी से बनते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड का जो है वो वेस्टर्न फ्लीट है, वही उसकी देखभाल करता है। लक्षद्वीप आइलैंड थोड़ा छोटा है, 36 आइलैंड्स का ग्रुप है, वेरस वो 572 है, तो काफी बड़ा है, तो उसके लिए जो है इस तरह से जरूरत पड़ती है। एक तरह से हमारी जो नेवल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि देश की पूरी सी की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है करते हैं।
2: कर्नल साहब, एक छोटा सा प्रश्न है, आपने बताया था कि आर्मी में सबसे जो छोटी इकाई होती है वो सेक्शन होती है, इसी तरह से नेवी में कौन सी इकाई होती है जो सबसे छोटी मानी जा
3: सकती
2: है? शिप
3: होती है।
2: शिप,
3: अब शिप में, लेकिन शिप अलग अलग होती है, शिप बहुत बड़ी भी होती है। INS विक्रांत वो तो मतलब अपने आप में शहर है पूरा का पूरा।
2: जी पूरी बड़ी रोचक जानकारी है, इसीलिए मैंने पूछा था जी।
3: तो और जो उससे भी छोटे से छोटे शिप भी होते हैं जो कि बहुत फास्ट मूविंग शिप्स होते हैं
2: जी।
3: इकाई के नाम पे जैसे हम इन्फेंट्री से डायरेक्टली इसको एप्पल टू एप्पल कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन शिप को ही आप कह सकते हैं कि होता है। नेवी में जो है शिप का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि इनकी जो शिप्स होती हैं वो बहुत अलग अलग रोल के लिए अलग अलग तरह की शिप्स होती हैं। अगर हम उसमें जाएंगे तो वो काफी ज्यादा डिटेल्स हैं। अलग अलग तरह की शिप्स होती हैं कि वेट्स के हिसाब से होता है, उनकी रिस्पांसिबिलिटी के हिसाब से, उसमें जो गन्स लगी होती हैं, उनकी फायर पावर होती है, उनकी स्पीड होती है, उसके हिसाब से जो है उनका क्लासिफिकेशन होते हैं, तो वो बहुत ही अलग अलग होता है।
2: तीन सशस्त्र सेनाएं जो हैं उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत भले एक सा हो सकता है, लेकिन जहाँ ऑपरेशनल स्ट्रक्चर की बात आती है, ऑपरेशंस की बात आती है, वो किस तरह का संचालन करते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें बहुत मतलब पर्टिकुलर हो जाती हैं, कस्टमाइज हो जाती हैं। नेवी का अपनी तरह का काम करने का तरीका रहता है, आर्मी का अपना रहता है, फोर्स का अपना संगठन और अपना वो रहता है। जैसा कि आपने बताया शिप होती है इनकी सबसे छोटी इकाई, जिसको हम आर्मी से नहीं मिला सकते। आपने कहा कि डिट्टो वैसा का वैसा कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। आगे की कड़ी में हम ज़रूर पूछना चाहेंगे कि एयरफोर्स का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरह का रहता है।
3: ये तीनों जो अंग हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स, चाहे इनकी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन जो इनका इंटीग्रेशन है
2: जी,
3: वो बहुत ही स्ट्रांग है
2: जी।
3: जैसे हमारी काफ़ी एक्सरसाइजेस होती हैं जो हम लोग मिलके करते हैं, एम्फीबियस एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें नेवी के साथ आर्मी जाती है, एयरफोर्स के साथ हम एक्सरसाइजेस करते हैं, तो इसमें ये एक ऐसी बात होती है कि जैसे हमारा जो इंटीग्रेशन होता है, आपस में जो तालमेल है, कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि एक के बगैर दूसरा काम नहीं कर सकता है,
2: जाहिर सी बात है।
3: तो ये जो है इस ऑर्गेनाइजेशन की खासियत है। जो बेस है हमारा स्टार्टिंग है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, वही तीनों के तीनों अंगों के जो ऑफिसर्स को ट्रेन करता है। उसके बाद जैसे जो है डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज आता है, उसमें भी जो है तीनों अंगों के ऑफिसर्स आते हैं, एक साथ ट्रेनिंग करते हैं। अदिति, जो इंडियन एयरफोर्स है, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे देश को और उसकी एयरफोर्स को किसी भी एयर थ्रेट से बचाना
2: जी,
3: उसकी डिफेंस करना। एयरफोर्स जो है, इसके अलावा जो भी हमारे ऑपरेशंस इंडियन आर्मी करती है उसमें पूरा सपोर्ट देते हैं, और साथ में इनके पास जो है स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल एयरलिफ्ट कैपेबिलिटीज होती हैं, मतलब इनके पास एयरक्राफ्ट होते हैं जिससे कि ये हमारी सेना को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में पहुंचाने में मदद भी करते हैं
2: जी।
3: इनका सेकेंडरी टास्क जो होता है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को किसी भी आपदा में, नेचुरल कैलामिटीज में, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस में हेल्प करना। जैसे आपने देखा होगा फ्लड में जो है हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएशन होता है, और उसके अलावा जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, किसी तरह से अगर कोई और नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उसमें हेल्प करते हैं। जो इंडियन एयरफोर्स है, ये इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें 7 कमांड हैं, जिसमें से कि 5 ऑपरेशनल कमांड हैं और 2 फंक्शनल कमांड हैं। इनका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और जो इनकी कमांड होती हैं, जो उसको एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ विद रैंक ऑफ एयर मार्शल जो है वो कमांड करते हैं। जैसे कि वेस्टर्न कमांड जो है वो न्यू दिल्ली में है, सेंट्रल कमांड जो है वो इलाहाबाद में है, साउथ वेस्टर्न कमांड गांधीनगर में है, और ईस्टर्न एयर कमांड जो है शिलोंग में है, साथ ही सदर्न एयर कमांड जो है इसकी लोकेशन ट्रिवेंड्रम में है। 2 जो फंक्शनल कमांड है, जो कि ट्रेनिंग कमांड बैंगलोर में लोकेटेड है और मेंटेनेंस कमांड नागपुर में है। जो कमांड होती है इनके अंतर्गत जो है विंग्स आते हैं, जो कि जनरली एयर कमांडर कमांड करते हैं, और विंग्स के अंतर्गत जो है स्क्वाड्रंस आती हैं। हर स्क्वाड्रन जो है इसमें तकरीबन 18 एयरक्राफ्ट होते हैं, और इनको जो है कमांड करते हैं विंग कमांडर्स, कमांड करते हैं, और स्क्वाड्रन जो होते हैं सब डिवाइडेड होते हैं फ्लाइट्स में, और फ्लाइट्स जो होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं सेक्शंस में। ये मोटे तौर पे मतलब जो है एयरफोर्स की ऑर्गेनाइजेशन है। हर सेक्शन में जो है तीन एयरक्राफ्ट होते हैं और ये एक तरह से जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इंडियन एयरफोर्स में, और इसको जो है लीड करते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट लीड करते हैं। इंडियन एयरफोर्स के जो ब्रांचेस हैं वो फ्लाइंग ब्रांच, जिसमें कि फ्लाइंग के लिए रहते हैं, टेक्निकल ब्रांच और ग्राउंड ब्रांच होती है। ग्राउंड ब्रांच में बेसिकली जो लॉजिस्टिक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंट्स, एजुकेशन, मेडिकल और मेटलॉजिकल डिपार्टमेंट्स आते हैं। टेक्निकल ब्रांच में इंजीनियरिंग के लिए जो लोग होते हैं वो आते हैं।
2: कई देशों से भारतीय नागरिकों को बचाने में भी भारतीय वायुसेना का बड़ा योगदान रहा है।
3: बिल्कुल, अभी यूक्रेन से भी जो बच्चों को लेकर आए गए थे उसमें भी इनका योगदान रहा था। तो ये जो है इस तरह से जो है काफ़ी सपोर्ट इनका रहता है, और इवन जब पीस टाइम में भी अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को जब ज़रूरत पड़ती है, फ्लड रिलीफ ऑपरेशन से लोग कैरी आउट करते हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ में भी पूरा सपोर्ट इनका रहता है। इनकी अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो एयरफोर्स का जो हेडक्वार्टर है
2: जी
3: वो दिल्ली में स्थित है
2: जी,
3: और इनको जो है हेड करते हैं एयर चीफ मार्शल हेड करते हैं, जो कि 4-स्टार रैंकिंग जनरल
2: जी
3: के बराबर उनका रैंक होता है, सेम रहता है। और इनके 5 ऑपरेशनल और 2 फंक्शनल कमांड्स हैं।
2: अच्छा,
3: 5 ऑपरेशनल, जैसे हमने आर्मी में देखे थे कमांड
2: 7 थे और नेवी में 3 थे
3: जी, तो वैसे ही 5 इनके पास जो है ऑपरेशनल कमांड है एंड 2 इनके पास जो है फंक्शनल कमांड है। अब हर जो कमांड होती है उसको एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, जिनका रैंक एयर मार्शल होता है
2: जी,
3: वो कमांड करते हैं। इनका जो पर्पस होता है ऑपरेशनल कमांड का, ये क्या करते हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस कैरी आउट करते हैं यूजिंग एयरक्राफ्ट, जो इनकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो जो कमांड्स हैं अगर हम देखें तो वेस्टर्न कमांड जो है वो न्यू दिल्ली में है
2: जी,
3: सेंट्रल कमांड जो है वो इलाहाबाद में है
2: जी,
3: साउथ वेस्टर्न कमांड जो है ये गांधीनगर में है, ईस्टर्न एयर कमांड शिलोंग में लोकेटेड है, सदर्न एयर कमांड वो ट्रिवेंड्रम में है
2: जी,
3: तिरुवनंतपुरम में। इसके अलावा इनके पास 2 कमांड और हैं जिनको हम ट्रेनिंग कमांड और मेंटेनेंस कमांड का नाम देते हैं।
2: मेंटेनेंस कमांड सिर्फ एफ उसके पास है, क्योंकि मेंटेनेंस का जिक्र आपने जल सेना और थल सेना में नहीं किया।
3: इसका कारण है कि जो एयरक्राफ्ट हैं उनको आप एक स्पेसिफिक लोकेशन पर ले जाके मेंटेनेंस करना उनका काफी इजी रहता है, बजाय इसके कि आप उसको उनके रिसोर्स को जगह जगह वो करें। दूसरा क्या है, मेंटेनेंस कमांड का ये मतलब नहीं कि एक ही जगह पे है, मतलब उनके जो रिसोर्सेस हैं वो एक चैनल है कमांड कंट्रोल करने का।
2: अच्छा।
3: अब जैसे एक एयरबेस है तो उसमें मेंटेनेंस के लिए एक विंग होता है
2: जी,
3: लेकिन वो विंग जो है उसकी जो जरूरतें हैं वो सब पूरी करने के लिए एक कमांड है
2: जी।
3: अब उसका रीजन भी आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर आप एक एयरक्राफ्ट देखते हैं उसके जो स्पेयर पार्ट्स भी होते हैं और उसमें जो जरूरत होते हैं वो काफी कॉस्टली होते हैं
2: जी,
3: तो उनके लिए जो है काफी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। अब कमांड का जैसे आपने इसी में डायरेक्शनल उसमें देखा है वेस्टर्न कमांड सेंट्रल कमांड, तो हर एक का जो एरिया है इनका एक ग्रिड है। ग्रिड इन द सेंस क्या होता है कि पूरा का पूरा जो कंट्री है उसको ये लोग कवर करते हैं।
2: आपने जैसे आर्मी में टेरेन की बात की थी, इस तरह से इनका ग्रिड है।
3: देखिए ग्रिड तो आर्मी में ग्राउंड पे भी बनाना पड़ता है, क्योंकि आपको एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करनी पड़ती है कि इस लोकेशन से इस लोकेशन तक जो है, इसी तरह से एयर में होता है उनका भी जो है, एक्चुअली स्पीकिंग वो ग्राउंड पे ही, लैंडमार्क तो ग्राउंड पे ही होते हैं
2: जी,
3: ठीक है, जिससे कि डिफाइन होता है कि इस एरिया से इस एरिया तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन क्या है, एयर में ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं, वेरस आर्मी में जैसे 7 कमांड है, 6 ऑपरेशनल कमांड है, तो ये एक थोड़ा सा फर्क आता है। एंड इनकी कैपेबिलिटी, क्योंकि इनका फास्ट मोबिलिटी है,
2: हाँ,
3: अगर एक तिरुवनंतपुरम से एक एयरक्राफ्ट अगर टेक ऑफ करता है तो उसको मतलब इवन जम्मू पहुंचने में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना हम एक जवान को मतलब क्रॉस करने में लगता है या एक इन्फेंट्री यूनिट को लगेगा, कंपेयर करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं, तो इसलिए इनके लिए वो मायने कम रहते हैं।
2: कर्नल साहब, विशाल देश की जो महत्वपूर्ण सुरक्षा है उसके लिए आप लोग सदैव तत्पर रहते हैं, और ये काफ़ी गौरव की बात है कि आप हमारे साथ आए और हमारे साथ आपने जानकारियां साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू अदिति। जय हिंद श्रोताओं।
4: इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है सुश्री अदिति गौड़ को। ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
6: हमारी सेना हमारा गर्व। अभी आप हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे थे। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के विविध कार्यक्रम। ये है देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आज आपके साथ हूं मैं, आपकी दोस्त सुनीता सिंह। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए। बस थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम।

0: ये प्रस्तुति हुई भोपाल के रविंद्र भवन के हंसध्वनि सभागार में।
1: जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पद्मश्री कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का।
2: प्यार भरा नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। ये मेरे सौभाग्य कि आज ऐसे मीठे वाले दिन में मुझे गाने का मौका मिल रहा है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब साल की शुरुआत होती है और 15 अगस्त को मुझे गाने का मौका मिलता है, मुझे लगता है कि ईश्वर ने बहुत मेरे पर कृपा की। और आप जैसे लोग जो भोपाल हम जानते हैं, भोपाल इतना कल्चरली कॉन्शियस है, यहाँ पे शास्त्रीय संगीत की इतना प्रचार है इस स्टेट में और भोपाल में, आज के दिन मैं यहाँ गा रही हूँ, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर टुडे। मैं सबसे पहला जो गीत गा रही हूँ ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत निर्देशन में मैं गा रही हूँ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मुझे फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहला गाना दिया था और ये मैंने फिल्म भैरवी के लिए गाया, जिसके शब्द, बहुत सुंदर शब्द अमित खन्ना साहब ने लिखा है। इसी गीत से शुरुआत कर रही हूँ।

0: थैंक यू सो मच। अभी आपको मैं देवदास फिल्म का गीत सुनाऊंगी। ये गीत मुझे बहुत पसंद है उस फिल्म में।
1: Tagged it,

रोक ले और चक्कर चूम ले।

0: बहुत शुक्रिया।
1: आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति का गायन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने और परिकल्पना थी अदिति गौड़ की। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज ससुराल गेंदा फूल और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम देश के संस्थान। इंतजार कीजिए बस कुछ पलों का।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML, जमीन से रक्षा की गति की कहानी।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान। पिछले एपिसोड्स में दादू और रुचि यात्रा पर गए थे, जहां रुचि ने विशाल युद्धपोतों, अत्याधुनिक शिपलिफ्ट तकनीक और समुद्री सुरक्षा के बारे में बहुत कुछ सीखा। आज उनकी यात्रा समुद्र से आगे बढ़कर वापस धरती पर आ पहुंची है। आज रुचि जानेगी उस संस्था की कहानी जिसने भारत के विकास, रक्षा और अधोसंरचना निर्माण को नई गति दी। तो चलिए दादू पोती के संवादों के साथ सुनते हैं BEML की प्रेरक गाथा।
1: दादाजी, गोवा की यात्रा बड़ी यादगार थी। बहुत थक गई हूँ, अब घर में आकर बड़ा सुकून लगा है। दादू, मुझे लगता है कि इस यात्रा ने मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न नए नए तैयार कर दिए हैं।
2: अच्छा बेटा, देखो प्रश्न तो तुम्हारे मन में बहुत तैयार होते रहते हैं, मुझे जरा पहले एक गिलास पानी पी लेने दो।
1: हाँ दादू, ये लीजिए आपका पानी।
2: बेटा, यही तो यात्रा का सबसे बड़ा लाभ होता है। इन यात्राओं से जितना सीखो, कुछ नया सीखने की जिज्ञासा और बढ़ती जाती है।
1: दादू, GSL में हमने देखा कि जहाज बनाना कितना कठिन काम है। हजारों पुर्जे, सैकड़ों इंजीनियर और वर्षों की मेहनत लगती है।
2: बिल्कुल सही, कोई भी जहाज बनाना आसान काम नहीं है।
1: लेकिन दादू, समुद्र के अलावा जमीन पर भी तो देश के दूसरे संस्थानों के सामने ऐसी ही बड़ी बड़ी चुनौतियां होती होंगी।
2: हाँ बेटा, पहाड़ों में सड़कें बनानी हो, खदानों से खनिज निकालना हो, सेना के लिए भारी वाहन तैयार करने हो या मेट्रो रेल चलानी हो, इन सभी कार्यों के लिए खास संसाधनों की जरूरत होती है।
1: और वो काम करती है BEML। सही कहा ना आपकी रुचि ने।
2: हाँ हाँ बेटा, BEML का नाम सुनने में भले छोटा लगे, लेकिन इसका योगदान बहुत बड़ा है रुचि बेटा। रुचि, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे अब तुम मुझसे इसी विषय पर जानना चाहती हो?
1: दादू, आप तो मेरे मन की बात जानते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। मेरे मन में आज BEML के बारे में जानने की उत्सुकता है, तो अब आप मुझे इसी बारे में विस्तार से बताएंगे।
2: तो सुनो बेटा, जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड रखा गया था, क्योंकि उस समय इसका मुख्य कार्य भारी अर्थ मूविंग मशीनें बनाना था। लेकिन समय के साथ संस्था का कार्य क्षेत्र इतना बढ़ गया कि आज ये आधिकारिक रूप से BEML लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। फिर भी BEML का ऐतिहासिक विस्तार भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ही माना जाता है।
1: दादू, इसका इतिहास कितना पुराना है और इस संस्थान की स्थापना कब हुई, ये मैं आपसे विस्तार से जानना चाहती हूँ।
2: हाँ हाँ बेटा, BEML की स्थापना 11 मई 1964 को हुई थी। उस समय भारत एक युवा राष्ट्र था और अपनी औद्योगिक क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा था।
1: दादू, तब देश की सबसे बड़ी जरूरत क्या थी?
2: उस वक्त देश को भारी मशीनों की जरूरत थी बेटा। खदानें बढ़ रही थीं, बड़े बड़े बांध बन रहे थे, उद्योग विकसित हो रहे थे और अधोसंरचना निर्माण को गति मिल रही थी। लेकिन अधिकांश भारी मशीनें विदेशों से आयात करनी पड़ती थी।
1: यानी तब हमारा भारत आत्मनिर्भर नहीं था?
2: पूरी तरह तो नहीं, इसलिए सरकार ने ऐसी संस्था की कल्पना की जो देश में ही भारी निर्माण और खनन उपकरण बना सके।
1: अच्छा, तभी इस सोच के साथ ही BEML की शुरुआत हुई होगी।
2: बिल्कुल।
1: दादू, शुरुआती दिनों में BEML क्या बनाती थी?
2: सबसे पहले खनन और निर्माण क्षेत्र के लिए भारी मशीनें बनाई जाने लगी।
1: किस तरह की भारी मशीनें दादू, और ये भारी मशीनें काम क्या करती थी?
2: देखो बेटा, बुलडोजर, डंप ट्रक, एक्सकेवेटर, ग्रेडर और अनेक प्रकार के अर्थ मूविंग उपकरण।
1: दादू, ये भला कैसा नाम हुआ, अर्थ मूविंग उपकरण?
2: अरे बुद्धू, मतलब ऐसी मशीनें जो मिट्टी, पत्थर, भारी सामग्री को हटाने, खोदने या स्थानांतरित करने का काम करती हैं।
1: तभी तो इसका नाम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड रखा गया होगा।
2: बिल्कुल सही समझा
1: दादू। खदानों में इन मशीनों की क्या भूमिका होती है?
2: देखो बेटा, कल्पना करो, किसी कोयला खदान से लाखों टन मिट्टी हटानी है, क्या ये काम मजदूरों के हाथों से संभव होगा?
1: अरे ना बाबा, उसमें तो जाने कितने साल लग जाएंगे दादाजी।
2: बस यही कारण है कि इसके लिए विशाल डंप ट्रक और एक्सकेवेटर काम में आते हैं। ये मशीनें कुछ ही समय में वो काम कर सकती हैं जिसके लिए सैकड़ों लोगों को कई दिन लग जाएं।
1: मतलब दादू, हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक उद्योगों की रीढ़ यही मशीनें हैं।
2: हाँ बेटा, यदि खदानें ना चलें तो कोयला, लौह अयस्क और अनेक खनिज तत्व और पदार्थ देश के उद्योगों तक नहीं पहुँच पाएंगे।
1: और सड़क निर्माण में BEML का क्या योगदान होता है?
2: वहाँ भी इनका महत्व कम नहीं है बेटा। पहाड़ काटकर सड़क बनानी हो, सुरंग निर्माण करना हो या बड़े औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हो, हर जगह भारी मशीनों की जरूरत तो होती है
1: दादू। तो जब भी हम किसी नए राजमार्ग पर चलते हैं, तब उसके पीछे भी ऐसी ही संस्थाओं का योगदान होता है।
2: बिल्कुल, विकास केवल दिखाई देने वाली सड़क का नाम नहीं है बेटा, उसके पीछे वर्षों की योजना, तकनीक और मशीनों की मेहनत होती है।
1: अच्छा दादू, आप ये बताइए ना कि आज BEML का नाम किस क्षेत्र में ज्यादा सुनाई देता है?
2: रक्षा के क्षेत्र में बेटा, क्योंकि समय के साथ इसकी जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। देश को रक्षा क्षेत्र में भी स्वदेशी समाधान चाहिए थे।
1: दादू, आपने बताया था कि शुरुआत में BEML खनन और निर्माण कार्यों के लिए मशीनें बनाती थी, फिर इसका रक्षा क्षेत्र में जुड़ाव कैसे हुआ?
2: बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। जैसे जैसे भारत अपनी रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ा, वैसे वैसे सेना के लिए खास तरह के वाहनों और उपकरणों की जरूरत महसूस हुई। तब BEML ने भी रक्षा क्षेत्र में कदम रखा।
1: विशेष वाहन और उपकरण किस तरह के दादू?
2: देखो बेटा, सेना को ऐसे वाहन चाहिए होते हैं जो केवल सामान्य सड़कों पर ही नहीं, बल्कि रेगिस्तान की तपती रेत, हिमालय की बर्फीली चोटियों, दलदली इलाकों और घने जंगलों में भी आसानी से चल सके। कई बार उन्हें भारी तोपें, टैंक, मिसाइलें और अन्य सैनिक सामग्री भी ढोनी पड़ती है।
1: यानी सेना के वाहन साधारण ट्रकों जैसे नहीं होते दादाजी?
2: बिल्कुल नहीं बेटा, उन्हें बेहद मजबूत, भरोसेमंद और कठिन परिस्थितियों में काम करने योग्य बनाना पड़ता है। BEML ने ऐसे अनेक विशेष सैन्य वाहनों और सहायक उपकरणों के निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य किया है।
1: दादू, ये तो बहुत चुनौतीपूर्ण होगा।
2: निश्चित रूप से, एक सामान्य वाहन और सैन्य वाहन में बहुत अंतर होता है बेटा।
1: दादू, सेना के वाहनों को सामान्य वाहनों से इतना अलग क्यों बनाया जाता है?
2: क्योंकि बेटी, सेना का काम केवल शहरों की सड़कों पर चलना नहीं होता। कभी उन्हें बर्फ से ढके पहाड़ों पर जाना पड़ता है, कभी तपते रेगिस्तान में, कभी घने जंगलों के बीच।
1: मतलब जहाँ सामान्य वाहन शायद काम ही ना कर पाए।
2: हाँ बेटा, कई बार तो सड़कें भी नहीं होती, फिर भी सैनिकों तक रसद, हथियार और आवश्यक सामग्री पहुंचानी होती है। इसीलिए सैन्य वाहनों को अधिक शक्तिशाली, मजबूत और भरोसेमंद बनाया जाता है।
1: तो BEML ऐसे ही विशेष वाहन बनाती होगी दादाजी?
2: हाँ बेटा, BEML सेना की आवश्यकताओं के अनुरूप कई प्रकार के विशेष वाहनों, भारी परिवहन प्रणालियों और सहायक रक्षा उपकरणों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है।
1: यानी देश की सुरक्षा में भारत के संस्थान इस तरह अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
2: बिल्कुल बेटा, इन संस्थानों की उन्नत तकनीकों से बने स्वदेशी उपकरण और वाहन राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं।
1: दादू, आपने एक बार एयरक्राफ्ट टोइंग ट्रैक्टर का नाम लिया था।
2: हाँ हाँ बेटा, जब कोई विमान हवाई अड्डे पर खड़ा होता है तो उसे सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए विशेष वाहन की आवश्यकता होती है।
1: दादू, क्या ये विमान खुद से नहीं जा सकता?
2: कुछ परिस्थितियों में नहीं, लेकिन तब ऐसे ट्रैक्टर उपयोग में लाए जाते हैं बेटा।
1: और वे भी BEML ही बनाती है?
2: हाँ, ये संस्था कई प्रकार की विशेष प्रयोजन मशीनें बनाती रही है।
1: दादू, BEML मेट्रो से भी जुड़ी है?
2: हाँ बेटा, जब भारत में आधुनिक मेट्रो प्रणालियों का विस्तार शुरू हुआ तब मेट्रो कोच निर्माण की आवश्यकता तेजी से बढ़ी।
1: फिर
2: BEML ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया और मेट्रो कोच निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: यानी केवल खदानों की मशीनें ही नहीं, यात्रियों को ले जाने वाले कोच भी।
2: यही तो BEML की सबसे बड़ी विशेषता है बेटी। एक और ये खनन और निर्माण कार्यों के लिए भारी मशीनें बनाती है, तो दूसरी ओर रक्षा क्षेत्र के लिए विशेष वाहन और रेल तथा मेट्रो के लिए कोच भी तैयार करती है।
1: दादू, सच कहूँ ना तो अब तो मैं भी सोच रही हूँ कि कितना विश्वसनीय है। आखिर एक संस्था इतने अलग अलग क्षेत्र में काम कैसे कर सकती है दादाजी?
2: इसका उत्तर है इंजीनियरिंग क्षमता।
1: मतलब?
2: जब किसी संस्था के पास डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण की मजबूत व्यवस्था हो तो वो अलग अलग क्षेत्रों में भी सफल हो सकती है।
1: तो BEML केवल उत्पाद नहीं बनाती बल्कि तकनीकी ज्ञान भी विकसित करती है।
2: बिल्कुल बेटा, किसी मशीन को बनाना ही पर्याप्त नहीं होता, उसके पीछे वर्षों का अध्ययन, अनुसंधान और परीक्षण छिपा हुआ होता है।
1: मतलब पहले उसकी योजना बनाई जाती होगी दादाजी?
2: हाँ, सबसे पहले इंजीनियर मशीन की आवश्यकता को समझते हैं, फिर उसका डिजाइन तैयार करते हैं, उसके बाद मॉडल बनाया जाता है और अनेक प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मशीन कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी तरह काम करेगी।
1: यानी हर मशीन के पीछे बहुत सारी वैज्ञानिक सोच होती है।
2: हाँ बेटा, BEML के विशेषज्ञ लगातार नई तकनीकों पर काम करते रहे हैं। वे मशीनों को अधिक सुरक्षित, अधिक शक्तिशाली और अधिक ईंधन कुशल बनाने का प्रयास करते रहते हैं।
1: तो इसका लाभ देश को भी मिलता होगा?
2: निश्चित रूप से बेटा, जब तकनीक देश में विकसित होती है तो विदेशी निर्भरता कम होती है, लागत घटती है और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप बेहतर समाधान तैयार किए जा सकते हैं।
1: अब समझ में आया दादू कि किसी संस्था की असली ताकत केवल उसके कारखानों में नहीं बल्कि उसके ज्ञान और नवाचार में भी होती है।
2: बिल्कुल सही कहा बेटा, यही ज्ञान और नवाचार किसी संस्था को समय के साथ आगे बढ़ाते हैं और राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करते हैं।
1: अच्छा दादू, क्या इनके पास इनका अपना रिसर्च सेंटर भी है?
2: हाँ हाँ बेटा, नई तकनीकों के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ किसी भी आधुनिक संस्था का आधार होती हैं।
1: और वहाँ किस तरह की रिसर्च और निर्माण होता होगा?
2: वहाँ पे बेटा नई मशीनों के मॉडल तैयार किए जाते हैं, पुराने डिजाइन सुधारे जाते हैं, ईंधन दक्षता बढ़ाने पर बहुत काम होता है और भारतीय परिस्थितियों के अनुसार तकनीक विकसित की जाती है।
1: यानी प्रयोगशाला में जन्म लेने वाला विचार बाद में वास्तविक मशीन बन जाता है दादाजी।
2: ठीक कहा बेटा, एकदम ठीक।
1: दादू, आज की कहानी से मुझे एक बात समझ में आ रही है।
2: और वो क्या है?
1: वो बात ये है कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी सेना से नहीं बल्कि उसके उद्योगों और तकनीकी संस्थानों से भी तय होती है।
2: एकदम सही कहा बेटा तुमने। यदि मशीनें, उपकरण और तकनीक अपने देश में विकसित हों तो राष्ट्र अधिक आत्मनिर्भर बनता है।
1: और BEML उसी आत्मनिर्भरता की कहानी का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।
2: बिल्कुल बेटा।
1: दादू, बातें करते करते पता ही नहीं चला कितना लंबा सफर तय हो गया।
2: हाँ बेटा, और देखो बाहर का नजारा भी लगातार बदल रहा है।
1: अरे दादू, उधर देखिए कितनी बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही है, लगता है कोई सड़क या पुल बनाया जा रहा है।
2: हाँ हाँ बेटा। देश के विकास की कहानी केवल लक्ष्यों और योजनाओं में नहीं लिखी जाती बल्कि ऐसी मशीनों के पहियों और इंजनों की शक्ति से भी आगे बढ़ती है।
1: दादू, तो क्या ऐसी परियोजनाओं में भी BEML की मशीनें उपयोग होती हैं?
2: हाँ बेटा, सड़क निर्माण, खनन, औद्योगिक परियोजनाएं और अनेक बड़े निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले भारी उपकरणों के निर्माण में BEML ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: दादू, मतलब जब हम कोई नया राजमार्ग, सुरंग या औद्योगिक क्षेत्र बनते हुए देखते हैं तो उसके पीछे कहीं न कहीं ऐसी ही संस्थाओं की मेहनत भी होती है।
2: बिल्कुल सही बेटा।
1: उधर तो देखिए,
2: हाँ।
1: दूसरी पटरी पर एक बहुत लंबी मालगाड़ी जा रही है।
2: हाँ हाँ, और ध्यान से देखो उसके डिब्बो पर क्या रखा है, देखो। हाँ हाँ, अभी कुछ देर पहले हम इसी के बारे में बात कर रहे थे ना।
1: अरे हाँ दादू, ये तो बहुत बड़े बड़े वाहन लग रहे हैं, कुछ तो सेना के वाहनों जैसे दिखाई दे रहे हैं दादाजी।
2: तुम्हारी नजर तेज होती जा रही है बेटा।
1: सो तो है दादू। अच्छा ये बताइए ना, क्या ऐसे भारी सैन्य वाहनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेल के माध्यम से ही पहुँचाया जाता है?
2: हाँ हाँ, अक्सर जब सेना को बड़ी संख्या में वाहन, उपकरण या कोई अन्य सामग्री दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचानी होती है, तब रेल परिवहन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: दादू, मुझे तो सोचकर ही बहुत रोमांच हो रहा है कि किसी वाहन की यात्रा कारखाने से शुरू होकर देश की सीमाओं तक कैसे पहुंचती होगी,
2: और उस यात्रा के पीछे हजारों लोगों का परिश्रम छिपा होता है बेटा। ये मत भूलना, डिजाइनर, इंजीनियर, तकनीशियन, परीक्षण विशेषज्ञ और उत्पादन कर्मी।
1: ये तो है दादाजी। अच्छा दादू, जब कोई नया सैन्य वाहन बनाया जाता है तो क्या उसे सीधे सेना को सौंप दिया जाता है?
2: नहीं नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता।
1: तो फिर?
2: देखो, सबसे पहले इसकी जरूरत को समझा जाता है। सेना बताती है कि उसे किस प्रकार का वाहन चाहिए, कहाँ उपयोग होना है, कितना भार उठाएगा, किस परिस्थितियों में कितना काम करेगा।
1: पर दादू, ऐसा तो जहाज बनाने के पहले भी किया जाता है ना?
2: हाँ हाँ, किसी भी वाहन या तकनीकी उपकरण के पहले उसकी जरूरत क्यों होगी, कैसे उसका उपयोग होगा, ये जानना जरूरी होता है बच्चे।
1: फिर इंजीनियर उसका डिजाइन तैयार करते होंगे।
2: हाँ, उसके बाद मॉडल तैयार होता है, फिर परीक्षणों का लंबा दौर चलता है।
1: परीक्षण? कैसे परीक्षण दादू?
2: देखो बेटा, कभी उबड़ खाबड़ रास्तों पर, कभी गर्म इलाकों में, कभी भारी वजन के साथ, और कभी लगातार कई घंटों तक चलाकर।
1: ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वाहन हर परिस्थिति में काम करेगा।
2: हाँ, रक्षा क्षेत्र में विश्वसनीयता सबसे बड़ी आवश्यकता होती है बच्चे।
1: दादू, आपने गौर किया, जब भी हम किसी बड़े संस्थान के बारे में बात करते हैं ना, तो एक बात बार बार सामने आती है।
2: क्या बात सामने आती है बेटा?
1: गुणवत्ता दादाजी।
2: क्योंकि गुणवत्ता के बिना तकनीक अधूरी है।
1: और केवल मशीन बना लेना ही पर्याप्त नहीं है।
2: बिल्कुल नहीं है, मशीन सुरक्षित हो, टिकाऊ हो और लंबे समय तक भरोसेमंद ढंग से काम करे, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
1: तभी तो सेना और रेलवे जैसी संस्थाएं किसी उपकरण पर भरोसा कर पाती हैं दादाजी।
2: एकदम सही कहा बेटा।
1: दादू, BEML का योगदान केवल रेलवे तक ही सीमित नहीं है।
2: हाँ बेटा, भारत में रेल परिवहन के आधुनिकीकरण की यात्रा में भी ऐसी संस्थाओं का योगदान रहा है। विशेष रूप से मेट्रो रेल परियोजनाओं में BEML ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।
1: दादू, मुझे याद है जब पहली बार मैं मेट्रो में बैठी थी ना, तो उसकी गति और सफाई देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी।
2: और सोचो, उस आधुनिक अनुभव के पीछे कितनी इंजीनियरिंग, कितनी योजना और कितना उत्पादन कार्य करता होगा।
1: सचमुच दादू, यात्रियों को तो केवल आरामदायक सफर ही दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत दिखाई नहीं देती। दादू, एक बात बताइए ना, अगर BEML जैसी संस्थाएं ना होती तो देश में विकास कैसे होता? क्या तब हमें हर भारी मशीन विदेशों से खरीदनी पड़ती दादाजी?
2: काफी हद तक हाँ, और इससे लागत भी बढ़ती, समय भी अधिक लगता और तकनीकी निर्भरता भी बढ़ती।
1: मतलब आत्मनिर्भरता केवल एक नारा नहीं है दादाजी, बल्कि आज की जरूरत है।
2: जब देश अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मशीनें, वाहन और तकनीक स्वयं विकसित करता है, तब उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और क्षमता भी बढ़ती है।
1: अब समझ में आ रहा है कि आत्मनिर्भर भारत की चर्चा में ऐसे संस्थानों का नाम क्यों लिया जाता है।
2: क्योंकि ये संस्थान केवल उत्पाद नहीं बनाते बेटा, बल्कि राष्ट्र की क्षमता का निर्माण करते हैं।
1: दादू, आपने BEML के वर्तमान के बारे में तो बहुत कुछ बताया मुझे, लेकिन क्या ये संस्था भविष्य की तकनीकों पर भी काम कर रही है?
2: अरे बेटी, यही तो सबसे रोचक हिस्सा है। आने वाले वर्षों में परिवहन, रक्षा और निर्माण की दुनिया बहुत तेजी से बदलने वाली है।
1: मतलब BEML की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दादाजी?
2: बिल्कुल नहीं बेटा, BEML की कहानी तो अभी शुरू हुई है। क्योंकि अब बात होगी भविष्य की नई तकनीकों की, आधुनिक निर्माण की और आत्मनिर्भर भारत के अगले कदमों की।
1: दादू, क्या तकनीक सचमुच इतनी तेजी से बदल रही है?
2: हाँ बेटा, आज से कुछ दशक पहले जिन मशीनों को अत्याधुनिक माना जाता था, आज उनसे कहीं अधिक उन्नत प्रणालियां विकसित हो चुकी हैं। अब मशीनों में केवल शक्ति ही नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता भी जोड़ी जा रही है।
1: बुद्धिमत्ता मशीनों में?
2: हाँ, आज कई आधुनिक मशीनों में ऐसे यंत्र तंत्र लगाए जा रहे हैं जो उनके प्रदर्शन पर लगातार नजर रखते हैं। किसी खराबी की संभावना हो तो पहले ही संकेत दे देते हैं।
1: यानी समस्या आने से पहले ही उसका पता चल सकता है।
2: बिल्कुल, इससे समय भी बचता है और कार्यक्षमता भी बढ़ती है।
1: तो क्या दादाजी, भविष्य में रक्षा क्षेत्र के वाहन भी और अधिक आधुनिक हो जाएंगे?
2: निश्चित रूप से, दुनिया भर में ऐसे वाहनों पर काम हो रहा है जो कठिन परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन कर सके, कम रखरखाव मांगे और अधिक सुरक्षित हो।
1: और दादाजी, भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है।
2: हाँ हाँ बेटा, आत्मनिर्भर भारत का अर्थ ही है कि हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी तकनीक विकसित करें और लगातार उसे बेहतर बनाते रहें।
1: मतलब केवल विदेशी तकनीक खरीदना ही समाधान नहीं है?
2: बिल्कुल नहीं, वास्तविक शक्ति तब आती है जब तकनीक का ज्ञान भी अपने देश में विकसित हो रहा हो। बेटा
1: दादू, जब भी हम किसी संस्थान की कहानी सुनते हैं, वहाँ हजारों लोग काम करते दिखाई देते हैं।
2: और यही किसी भी बड़े संस्थान की सबसे बड़ी पूंजी होती है, उसके लोग,
1: यानी इंजीनियर, तकनीशियन, डिजाइनर और वैज्ञानिक।
2: कोई नई मशीन की रूपरेखा तैयार करता है तो कोई उसके पुर्जे बनाता है, कोई परीक्षण करता है तो कोई गुणवत्ता की जांच करता है।
1: एक मशीन के पीछे सैकड़ों हाथ और हजारों घंटों की मेहनत छिपी होती है दादाजी।
2: शाबाश मेरी बच्ची, एकदम सही कहा तुमने।
1: दादू, अगर कोई स्टूडेंट आज का ये कार्यक्रम सुन रहा हो और भविष्य में ऐसे संस्थान में काम करना चाहे तो उसे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, जरा ये भी बता दीजिए।
2: देखो बेटा, सबसे पहले उसे जिज्ञासु बनना होगा।
1: जिज्ञासु? वो भला कैसे?
2: जैसे कि मेरी प्यारी पोती रुचि है, है ना? उसे तुम्हारी तरह ही हर मशीन को देखकर ये पूछना होगा कि ये कैसे काम करती है, हर नई तकनीक को समझने की कोशिश करना, विज्ञान और गणित से दोस्ती करना।
1: क्या दादू, और मेहनत?
2: वो तो सबसे जरूरी है बेटा, बड़े सपनों को साकार करने के लिए निरंतर सीखना पड़ता है।
1: तभी तो कोई इंजीनियर, वैज्ञानिक या तकनीकी विशेषज्ञ बनेगा ना।
2: हाँ बिल्कुल।
1: दादू, एक बात सोचकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है।
2: किस बात का आश्चर्य बेटा?
1: वो ये कि जब हम किसी मेट्रो में सफर करते हैं ना दादाजी, या किसी नई सड़क पर चलते हैं, या समाचारों में सेना के आधुनिक वाहनों को देखते हैं, तब हम शायद ही कभी सोचते होंगे कि इनके पीछे कितनी संस्थाओं और कितने लोगों की मेहनत छिपी होती है।
2: वास्तव में देश के लिए निर्माण का कार्य विशाल यज्ञ की तरह होता है। उसमें कोई वैज्ञानिक अपना ज्ञान देता है, कोई इंजीनियर अपनी कल्पना, कोई तकनीशियन अपना कौशल और कोई श्रमिक अपना परिश्रम,
1: और तभी कोई बड़ा काम पूरा हो पाता है दादाजी।
2: हाँ बेटा, सोचो यदि खदानों से खनिज ना निकले तो कारखाने कैसे चलेंगे? यदि भारी मशीनें ना हो तो बड़े पुल, सड़कें और सुरंगें कैसे बनेंगी?
1: सो तो है।
2: और यदि रक्षा उपकरणों की आवाजाही के लिए उपयुक्त वाहन ना हो तो सेना की तैयारी कैसे मजबूत होगी?
1: दादाजी, यानी विकास और सुरक्षा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
2: हाँ बेटा, और BEML जैसी संस्थाएं इन दोनों को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करती है।
1: दादू, क्या BEML के कर्मचारियों को ये एहसास होता होगा कि उनका काम देश के लिए इतना महत्वपूर्ण है?
2: मुझे पूरा विश्वास है बेटा कि अवश्य होता होगा, क्योंकि जब कोई इंजीनियर किसी मशीन का डिजाइन बनाता है तब वो केवल एक उत्पाद नहीं बना रहा होता बल्कि देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहा होता है।
1: और जब कोई तकनीशियन किसी पुर्जे को सावधानी से तैयार करता है
2: तब वो भी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है।
1: वाह दादाजी, इसका मतलब हर छोटा काम भी महत्वपूर्ण होता है।
2: यही तो सबसे बड़ी सीख है बेटा, कोई योगदान छोटा नहीं होता, बड़ी उपलब्धियां हजारों छोटे छोटे प्रयासों से मिलकर बनती हैं।
1: दादू, आप अक्सर कहते हैं ना कि भारत युवाओं का देश है।
2: हाँ हाँ, मैं आज भी कहता हूँ और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।
1: तो क्या आने वाले समय में ऐसे संस्थानों की जिम्मेदारी भी युवाओं के कंधों पर होगी?
2: निश्चित रूप से बेटा, आने वाले वर्षों में नई तकनीकें विकसित होंगी, नई चुनौतियां सामने आएंगी और नए समाधान भी खोजने होंगे। इसके लिए जिज्ञासु, मेहनती और नवाचार करने वाले युवाओं की आवश्यकता होगी।
1: यानी आज का विद्यार्थी ही कल का वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ बनेगा।
2: बिल्कुल, और हो सकता है कि आज ये कार्यक्रम सुनने वाला कोई बच्चा भविष्य में ऐसी ही किसी संस्था का नेतृत्व करे।
1: दादाजी, मुझे तो सोचकर बड़ा ही रोमांच हो रहा है।
2: देखो बेटा, किसी भी संस्थान की सफलता केवल उसकी मशीनों से नहीं मापी जाती है, उसकी सफलता इस बात से मापी जाती है कि उसने देश और समाज को कितना मजबूत बनाया।
1: और BEML ने ये काम कई दशकों से किया है।
2: हाँ, बदलते समय के साथ उसने स्वयं को बदला, नई तकनीकों को अपनाया और देश की आवश्यकताओं के अनुसार आगे बढ़ती रही।
1: यानी यही किसी जीवंत संस्था की पहचान है।
2: बिल्कुल बेटा, जो सीखना बंद कर दे वो आगे बढ़ना भी बंद कर देता है,
1: और जो निरंतर सीखता रहे वही भविष्य का निर्माण करता है।
2: शाबाश बेटा, शाबाश। लगता है आज की यात्रा सचमुच सफल रही।
1: दादू, आज हमने जाना कि किसी भी संस्थान की कहानी केवल उसकी इमारतों या मशीनों की कहानी नहीं होती।
2: तो फिर क्या होती है?
1: ये उन लोगों की कहानी होती है दादाजी, जो अपने ज्ञान, परिश्रम और संकल्प से देश को आगे बढ़ाते हैं।
2: वाह बेटा वाह, लगता है इस यात्रा ने वाकई तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया।
1: और आपने भी तो बहुत कुछ सिखाया दादू।
2: मैं तो तुम्हारा दादू हूँ, सिखाऊंगा ही बेटा। याद रखो बेटा, किसी भी संस्थान की सबसे बड़ी पहचान उसकी मशीनें नहीं होती, बल्कि वो विश्वास होता है जो वो देश के लोगों में पैदा करता है। BEML ने दशकों से यही विश्वास मजबूत किया है। भारत की अपनी जरूरतों के अनुरूप तकनीक विकसित कर सकता है, बड़े सपने देख सकता है और उन्हें साकार भी कर सकता है।
1: यानी ये केवल मशीनें बनाने की कहानी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास जगाने की कहानी भी है दादाजी।
2: हाँ, एकदम सही कहा बेटा तुमने। जब किसी देश के युवा सीखने, शोध करने और नवाचार करने का संकल्प लेते हैं, तब ऐसे संस्थान उस संकल्प को शक्ति देने का काम करते हैं।
1: समझ गए दादू, आज के आत्मनिर्भर भारत की नींव केवल देश के कारखानों से मजबूत नहीं है, बल्कि देश के उन संस्थानों में काम कर रहे लाखों लोगों के ज्ञान, कौशल और परिश्रम से है।
2: शाबाश बेटा, मुझे तुम पर गर्व है और यही आज की यात्रा की सबसे बड़ी सीख भी है।
1: दादू चलिए, जरा संभल कर उठिएगा।
2: हाँ हाँ बेटा,
1: बैग में लेती हूँ।
2: हाँ।
1: श्रोताओं, आज आपने सुनी BEML की स्थापना, उसके शुरुआती कार्यों और रक्षा अधोसंरचना क्षेत्र में बढ़ती भूमिका की कहानी। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है। अगले भाग में दादू और रुचि आपको बताएंगे देश के और भी कई संस्थानों के बारे में, साथ ही आत्मनिर्भर भारत में इन संस्थानों की भूमिका और भविष्य की योजनाएं क्या क्या है। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, लेखन था स्वाति गिरी का। मैं थी आपके साथ भगवती सक्सेना,
2: और मैं आपका रेडियो मित्र दीपक नेमा।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: देश के संस्थान। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
0: नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आजाद हिंद।

स्वाधीन। संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जनगर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जनगर्जे।

0: आजाद हिंद के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मेरा नाम है इतिहास और मैं उन व्यक्तित्वों को कभी भुलाई नहीं भूल पाता जिन्होंने गुलामी के दौर में यह विश्वास हमेशा बनाए रखा कि हम हमेशा गुलाम नहीं रहेंगे और जो सोचा वो कर भी दिखाया।
1: ये तारीख भी सभी श्रोताओं का स्वागत करती है। मैंने हमेशा उन यादों को तारीख के साथ इतिहास के पन्नों में उतारा है जो ये समझकर शहीद हुए थे कि ईश्वर ने हमें केवल देश को आजाद करने की ही जिम्मेदारी दी है।
0: तारीख, आज हम बात करेंगे क्रांतिकारी युग की प्रथम शहीद महिला की, जो मुक्ति संग्राम में आत्मविसर्जन के लिए हमेशा भयानक विष पोटेशियम साइनाइड लेकर के साथ चलती थी।
1: जी हाँ इतिहास, हम बात कर रहे हैं प्रीति लता वादेदार की।
0: आजादी की लड़ाई के इतिहास में प्रथम शहीद

0: उनके पिता कहते थे, मेरी यह बिटिया एक दिन चटगांव की सरोजनी नायडू बनेगी, और उन्होंने कर भी दिखाया।
1: किंतु जलियांवाला बाग की कहानी सुनकर प्रीति लता के मन में भी बंगाल के अन्य युवाओं की तरह ये भावना घर कर गई थी कि सशस्त्र संग्राम ही स्वाधीनता प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है। इसलिए जब 1928 में प्रीति लता ने प्रवेशिका परीक्षा पास कर ढाका के ईडन कॉलेज में प्रवेश लिया, तो बंगाल के क्रांतिकारी दल श्री संघ की नेत्री लीला राय के दल में शामिल हो गई बिना किसी भय के और कहा,

0: प्रीति लता के साथ उसकी प्रिय सहेली कल्पना दत्त भी कलकत्ता से चटगांव आकर के महिला सम्मेलन में शामिल हो गई। उन दिनों चटगांव क्रांतिकारी दल का संचालन महानायक मास्टर दा यानी सूर्य सेन कर रहे थे। प्रीति लता और उसकी सहेली की दिली इच्छा उनके दल में शामिल होने की थी, पर उस समय क्रांतिकारियों के दल में महिलाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता था, अतः उनके प्रयत्न सफल नहीं हो पाए। इसी बीच प्रीति लता ने ढाका विश्वविद्यालय से आईए पास करके कलकत्ता के बैथुन कॉलेज में बीए में प्रवेश ले लिया।
1: ठीक उसी समय 18 अप्रैल 1930 की रात इंडियन रिपब्लिक आर्मी ने जिले के सभी शस्त्रागारों पर कब्जा कर मास्टर दास सूर्यसेन के नेतृत्व में भारत की प्रथम गणतांत्रिक सरकार की घोषणा कर दी और सभी नर नारियों छात्र छात्राओं का देश की आजादी के लिए काम करने का आह्वान किया।

0: उसके बाद की घटनाओं ने युवक युवतियों को गहरे से प्रभावित किया। इस समय प्रीति लता और कल्पना दत्त का प्रभावित होना भी स्वाभाविक ही था। जलालाबाद का पहाड़ युद्ध, अमरेंद्र के आत्म उत्सर्ग, कालारपुर के खंड युद्ध, चंदन नगर की लड़ाई, ढाका में लोमेन की हत्या, चांदपुर में तारणी मुखर्जी हत्याकांड आदि घटनाओं ने उनके मन में भी क्रांतिकारियों के गोरिल्ला युद्ध का हिस्सा बनने की ललक तीव्र हो उठी।
1: उस समय चटगांव के क्रांतिकारी दलों के स्थानीय छात्र नेता मनोरंजन राय कलकत्ता में थे। उन्हें कलकत्ता से काफी मात्रा में एसिड चटगांव पहुंचाने का काम सौंपा गया था। इस काम के लिए उन्हें लड़कियों की जरूरत थी, क्योंकि खुफिया पुलिस पुरुषों पर नजर रखती थी, लड़कियों पर नहीं। प्रीति लता और कल्पना दत्त ने इस अवसर को भुना लिया और उनके दल में शामिल हो गईं। अब उन्हें मातृभूमि के लिए काम करने का रास्ता मिल गया था।
0: इसी दौरान प्रीति लता की भेंट क्रांतिकारियों की मददगार गुनु बुआ से हुई, जिनकी सहायता से उसकी भेंट चटगांव में क्रांतिकारी और मृत्यु दंड से दंडित रामकृष्ण विश्वास से जेल में हुई। रामकृष्ण विश्वास को 4 अगस्त 1931 को अलीपुर जेल में फांसी दी गई। फांसी से पहले 40 बार प्रीति लता और उनकी मुलाकात हुई थी। विश्वास ने प्रीति लता की क्षमता पहचान कर उससे कहा था, जितनी जल्दी हो सके मृत्यु शपथ लेकर के किसी काम में लग जाओ। और प्रीति लता ने प्रतिउत्तर में कहा था, मैं आज ही आपकी शपथ लेकर कहती हूँ, मैं काम करते करते अपने कार्य क्षेत्र में ही अपने आप को उत्सर्ग कर दूंगी। क्या हुआ अगर मर गए वतन के वास्ते।

0: सन 1931 में ही प्रीतिलता और कल्पना दत्त को मास्टर दा, निर्मल दा, तारकेश्वर दस्तीदार, शैलेश्वर चक्रवर्ती और काली किंकर के दल में शामिल कर लिया गया। इसी वर्ष बीए पास करने के बाद 1932 में प्रीतिलता चटगांव के नंदन कानन उच्च बालिका विद्यालय में प्रधान अध्यापिका हो गई। साथ ही क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेती रही। शीघ्र ही उसे सशस्त्र संग्राम का अनुभव भी मिल गया, जिसमें कैप्टन कैमरून मारा गया। साथ ही भारी गोलाबारी के दौरान प्रीतिलता के साथी निर्मलदा और अपूर्व सेन शहीद हो गए।
1: सन 1932 की जुलाई में उन्हें यह खबर मिली कि चटगांव के सभी उच्च अधिकारी यूरोपियन क्लब में इकट्ठे होकर के मदिरा पी रहे हैं और नशे में नाच रहे हैं। बस फिर क्या था, योजना बनाई गई कि सभी को वहीं ढेर कर दिया जाए। क्रांतिकारी शैलेश्वर चक्रवर्ती के नेतृत्व में 10 अगस्त 1932 को आक्रमण की योजना बनी, पर वह सफल नहीं हो पाई। शैलेश्वर ने असफल होने पर विष खाकर के आत्मसर्ग कर लिया।
0: आखिर इस योजना को सफल बनाने का दायित्व प्रीतिलता के नेतृत्व में महिला प्रभाग को सौंपा गया। 24 सितंबर 1932 को आक्रमण का दिन निश्चित हुआ। प्रीतिलता के नेतृत्व में आक्रमण सफल हुआ। सारा इलाका घायलों की चीख पुकार से दहल उठा। गोलाबारी में प्रीतिलता भी घायल हुई थी, किंतु उन्होंने अपनी परवाह ना करते हुए अपने सभी साथियों को निश्चित स्थान पर मिलने का कह जाने का आदेश दे दिया। घायल प्रीतिलता के साथ केवल कालीदा थे। 500 गज चलने के बाद प्रीतिलता की हिम्मत जवाब दे गई।
1: तब उन्होंने कालीदा से कहा कि इससे पहले कि अंग्रेज सिपाही आ पहुंचे, आप अपना साइनाइड मेरे मुंह में डाल दीजिए, और वे बेहोश होकर के गिर पड़ी। कालीदा ने प्रीतिलता की आज्ञा के अनुसार साइनाइड उसके मुंह में डाल दिया और प्रीतिलता ने शपथ के अनुसार आत्म आहुति दे दी, जैसे कह रही हो, विदा करो माँ, अब तो हम जाते हैं।

0: स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: श्रोताओं, हमारी आजाद जमी, आजाद आसमां की दास्तां, हमारे तन और हमारे मन की स्वतंत्रता की कहानी अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद में।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। लीजिए प्रस्तुत है नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता सिंह। परिक्रमा के आज के सफर पर चलिए मेरे साथ।

श्रोताओं, यामिनी कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी के 3 दिवसीय 8वीं रंग फुलवारी नाट्य महोत्सव की शुरुआत बुधवार को मुंशी प्रेमचंद की चर्चित कहानी सदगति के मंचन से हुई। रविन्द्र मोरे के निर्देशन में करीब 1.5 घंटे के नाटक में 13 कलाकारों ने सामाजिक असमानता, जातिगत भेदभाव और शोषण की कहानी को मंच पर उतारा। कहानी गरीब दलित व्यक्ति दुखी और गांव के पंडित घासीराम के इर्द गिर्द घूमती है। बेटी की शादी का मुहूर्त निकलवाने के लिए दुखी पंडित के घर पहुंचता है। बदले में उससे बिना मजदूरी के घर का काम करवाया जाता है। भूखे प्यासे और कमजोर होने के बावजूद वो काम करता रहता है। पंडित उसे लकड़ी की भारी गांठ चीरने को भी कहता है। लगातार मेहनत और भूख के बीच पंडित के आंगन में ही दुखी की मौत हो जाती है। मौत के बाद भी भेदभाव उसका पीछा नहीं छोड़ता। कोई उसका शव उठाने को तैयार नहीं होता। अंत में पंडित घासीराम उसके पैर रस्सी से बांधकर शव गांव के बाहर घसीट ले आता है और लौटकर गंगा जल से घर को शुद्ध करता है। सदगति के जरिए प्रेमचंद ने उस सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग किया है जिसमें मेहनत करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी सम्मान नहीं मिलता है।

ये पहला मौका है जब मैं किसी दीक्षांत समारोह में स्पीच दे रहा हूँ। इस मौके पर मैं आपको एक ही सक्सेस फॉर्मूला दूंगा, जो भी करें फील्ड चुनें, उसमें अपना 110% दें। अपनी फील्ड में काम करना, एंजॉय करना सीखें। जब तक आप अपने काम को एंजॉय नहीं करेंगे, तब तक आउटकम अच्छा नहीं मिलेगा। फिर अगर अवार्ड नहीं मिलता है तो हार्डवर्क और मैनिफेस्टेशन बढ़ा देना होता है। मुझे अपनी ज़िंदगी में काम मिला क्योंकि मैंने करियर की शुरुआत से ही खुद को द बेस्ट प्लेयर बनाने का काम किया। हर दिन खुद से बेस्ट। ये बात भारतीय क्रिकेटर और RCB के कप्तान रजत पाटीदार ने बुधवार को मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चौथे दीक्षांत समारोह में कही। इस मौके पर मानसरोवर डेंटल कॉलेज, मानसरोवर समूह के आयुर्वेदिक शिक्षण संस्थानों की ग्रेजुएशन डे सेरेमनी का भी आयोजन किया गया। इसमें करीब 250 विद्यार्थियों को डिग्री दी गई। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर यानी मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में क्रिकेटर रजत पाटीदार के साथ भजन गायक अनूप जलोटा को भी मानद उपाधि प्रदान की गई। भजन गायक अनूप जलोटा ने सफलता से जुड़ा अपने पिता का एक किस्सा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि मैंने एक बार पिताजी से पूछा कि आपने संगीत की शिक्षा तो दे दी, मगर अब हम सफल कैसे होंगे। तब उन्होंने कहा कि हमारा व्यवहार हमारी प्रतिभा से ज़्यादा सुंदर होना चाहिए, तभी हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और MPPURC के अध्यक्ष खेम सिंह डहेरिया मौजूद थे। यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर डॉक्टर गौरव तिवारी ने स्टूडेंट से कहा कि वे प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा के साथ समाज को कुछ बेहतर देने की दिशा में आगे बढ़ें। खेम सिंह डहेरिया ने कहा कि मानसरोवर से मिली व्यक्तिगत विकास और चरित्र निर्माण की जो शिक्षा है, उसे अपने व्यवहार में शामिल करें। कार्यक्रम में कुलगुरु डॉक्टर SS यादव, प्रोफेसर चांसलर डॉक्टर अरुण कुमार पांडे आदि मौजूद थे।

फिल्म के आइडिया को मजबूत स्क्रीन प्ले में बदलने की प्रक्रिया सिखाने के लिए सिनेमा सर्कल भोपाल और अलायंस फ्रांसिस की ओर से 25 सितंबर से 4 अक्टूबर तक 10 दिवसीय द स्क्रीन राइटर्स लैब आयोजित की जाएगी। रोज शाम 6 से 9 बजे तक होने वाली वर्कशॉप में राइटिंग एक्सरसाइज, फिल्मों का विश्लेषण, पीयर फीडबैक, रीराइटिंग और पिचिंग कराई जाएगी। प्रतिभागी अपने कच्चे आइडिया को डेवलप कर स्क्रीन प्ले का रूप देंगे। फोकस्ड राइटिंग ग्रुप में कहानी पर फीडबैक और बदलाव का मौका भी मिलेगा। इसमें एस्पायरिंग स्क्रीन राइटर्स, फिल्म मेकर, अभिनेता, स्टूडेंट्स और सिनेमा में रुचि रखने वाले लोग हिस्सा ले सकते हैं।

स्टेज पर अच्छा बोलने के लिए सिर्फ कॉन्फिडेंट और प्रैक्टिस काफ़ी नहीं, ऑडियंस का अटेंशन कैसे लें, उनसे कनेक्ट कैसे करें, ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं। इन्हीं कम्युनिकेशन स्किल्स पर फोकस करते हुए यंग थिंकर्स फोरम ने बुधवार को स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी में बियॉन्ड वर्ड्स द आर्ट ऑफ मीनिंगफुल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया था, जिसमें स्किल स्टूडियो मुंबई की कॉरपोरेट ट्रेनर, कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी कोच प्रिया राठौर ने स्टेज प्रेजेंस से लेकर ऑडियंस एंगेजमेंट तक की तकनीकें साझा की। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। इसके साथ ही परिक्रमा का आज का ये अंक अभी संपन्न होता है। इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद।

स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि स्वामी जी के दार्जिलिंग में रहते समय जब सर्वप्रथम उनकी ज्ञात ज्योति को लेकर अशोभनीय वाद विवाद आरंभ हुआ, तब वे इसके विषय में कुछ भी नहीं जानते थे। और जानते भी कैसे, वे तो दक्षिणेश्वर के मंदिर में जाकर मां काली का दर्शन कराए थे। वहां मंदिर के कर्मचारियों तथा विश्वास महाशय के पुत्रों ने उनके साथ प्रीति एवं श्रद्धापूर्ण व्यवहार ही किया था, अतएव उन्हें कैसे आन हो सकता था कि इसके बाद ही शत्रुगण एक काल्पनिक घटना रचकर कहेंगे कि समुद्र यात्रा के फलस्वरूप जातिच्युत हो जाने के कारण उन्हें मंदिर से निकाल दिया गया था।
1: और यदि सचमुच ही ऐसा हो जाता तो क्या इसमें स्वामी जी के कार्य में कोई स्थायी बाधा उत्पन्न हो जाती, या फिर क्या स्वामी जी का हृदय इससे कांप जाता? उनके परवर्ती काल के एक पत्र से पता चलता है कि वे इस प्रकार की अवज्ञा को किस प्रकार उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। स्टडी के कुछ मिथ्या आरोपों के उत्तर देते हुए उन्होंने 14 सितंबर 1899 ईस्वी को लिखा था,
2: भारत में अनेक लोगों ने यूरोपीय लोगों के साथ भोजन करने पर भी आपत्ति दिखाई है। मैं यूरोपियन लोगों के साथ खाता हूँ, इसलिए मुझे एक पारिवारिक देवालय से निकाल दिया गया था। मैं तो ऐसा नमनीय हो जाना चाहता हूँ कि हर कोई अपनी इच्छानुसार मुझे मोड़ सके, परंतु दुर्भाग्यवश आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति मेरे देखने में नहीं आया जो सबको संतुष्ट कर पाया हो।
0: इस पत्र को पढ़ने से बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि स्वामी जी ने स्टडी को उल्टा जवाब देने के लिए तर्क के रूप में ही त्रैलोक्यनाथ विश्वास का काल्पनिक विवरण स्वीकार करते हुए लिखा था कि उन्हें एक पारिवारिक देवालय अर्थात रानी रासमणि के दक्षिणेश्वर स्थित कालीबाड़ी से निकाल दिया गया था। परंतु इसके बाद 1898 ईस्वी में श्री रामकृष्ण के जन्मोत्सव के समय उन्हें सचमुच ही उस मंदिर में प्रवेशाधिकार से वंचित कर दिया गया था। उत्सव के पूर्व ही विश्वास परिसर की यह मनसा जानकर 15 नवंबर 1897 ईस्वी को स्वामी जी ने लिखा था, इस बार महोत्सव होना तक असंभव है, क्योंकि रासमणि के मंदिर उद्यान के मालिक मेरे विदेश हो जाने के कारण मुझे उद्यान में जाने नहीं देंगे।
1: स्वदेश और विदेश में इस प्रकार के विरोध और युक्तिहीन लोक निंदा की बातें सुनकर भी स्वामी जी ने निर्भीक हृदय के साथ मैरी को 9 जुलाई 1897 को लिखा था,
2: प्रिय मैरी, मेरे लिए भय बिल्कुल मत करना। कुछ भी हो, मैंने जितना कार्य किया है उसी से मैं संतुष्ट हूँ। मैंने कभी मंसूबा बांधकर कुछ नहीं किया। चीजें जैसे जैसे सामने आती गईं, उन्हें मैं वैसे वैसे स्वीकार करता गया। केवल एक ही चिंता मेरे मस्तिष्क में दहक रही थी, और वो ये कि भारतीय जनता को उन्नत करने वाले एक यंत्र को चालू कर दूं। इस कार्य में मुझे कुछ हद तक सफलता मिली है। तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंद से प्रफुल्लित हो जाता कि किस प्रकार मेरे लड़के अकाल, रोग तथा दुख दर्द के बीच कार्य कर रहे हैं। हैजे से पीड़ित पैरिया की चटाई के पास बैठे उसकी सेवा कर रहे हैं, भूखे चंडाल के मुख में अन्न दे रही हैं, प्रभु मेरी तथा उन सब की सहायता कर रही हैं। लोग क्या कहते हैं इसकी मुझे क्या परवाह? क्यों? क्योंकि मैं तो परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका हूं और समस्त सांसारिक प्रपंचों की असारता जान चुका हूं। क्या मैं बच्चों की तोतली बोली सुनकर अपने मार्ग से हट जाऊंगा? मुझे देखकर क्या ऐसा ही लगता है?
0: स्वामी विवेकानंद का संन्यास ग्रहण करने के उपरांत हिंदू धर्म का प्रचारक होने का दावा करना, समुद्र यात्रा तथा विदेशियों का आहार ग्रहण करना आदि को केंद्र बनाकर देश विदेश में जो वाद प्रतिवाद अथवा शत्रु पीड़न का जो उत्साह दिख पड़ा था, उसी की चरम परिणति मिलती है कि प्रेमदास मित्र को लिखित स्वामी जी के 30 मई 1897 के पत्र में मेरी को लिखित पत्र में उत्तर है, उदासीनता है और विरोचित आत्मतुष्टि का भाव है। परंतु वे सब बातें प्रधानतः अमरीकी समाज को ध्यान में रखकर लिखी गई थी। प्रेमदास बाबू को लिखित पत्र भारतीय परिवेश में एक सुशिक्षित पुरातन पंथी पुराने मित्र को उपदेश देने के निमित्त लिखा गया था। प्रेमदास बाबू को लिखा यही उनका अंतिम पत्र है, और इसी पत्र में हम ये भी देखते हैं कि जटिल प्राचीन समाज बातों में तो कट्टरता प्रदर्शित करता है, तदापि अंतर में पश्चिम की वाहवाही पाने को लालायित रहता है और व्यवहार में दुर्बल एवं दरिद्रों के शोषण में लगा रहता है। इस विषय में उन्होंने स्पष्ट भाषा में अपना मनोभाव व्यक्त करते हुए सब प्रकार से समझौता करके चलने की नीति पर मोटा पर्दा डाल दिया। उस पथ की इतिश्री हो गई। प्रमदा बाबू को लिखे उस पत्र के उल्लेखनीय अंश ये हैं।
2: सुनने में आया कि हिंदू धर्म के गोरे मिशनरियों के आप विशेष मित्र हैं और दुष्ट काले भारतवासी आपकी घृणा के पात्र हैं। जो मिल जाए सो खाता हूं, वो भी जिस तिस के साथ और सबके सामने, चाहे देश हो या परदेश। उपनिषद और गीता सच्चे शास्त्र हैं और राम कृष्ण बुद्ध चैतन्य नानक कबीर आदि सच्चे अवतार हैं, क्योंकि उनके हृदय आकाश के समान अनंत थे। और भी एक विसंगति है, दिन पर दिन मेरी ये दृढ़ धारणा होती जा रही है कि जाति बोध ही सर्वाधिक भेद उत्पन्न करने वाला और माया का मूल है। चाहे जन्मगत हो या गुणगत, हर प्रकार का बाहर का जाति भेद बंधन ही है। कोई कोई मित्र सुझाते हैं कि वो मन में रहे, पर बाहर के व्यवहारिक जगत में तो जाति आदि को बनाए रखना होगा। मन नहीं, मन अभेद, बुद्धि और बाहर पिशाच का नृत्य, अत्याचार, उत्पीड़न और गरीबों के लिए साक्षात यम, जाति आदि पागलपन के विचार केवल पुरोहितों द्वारा लिखित ग्रंथों में ही पाए जाते हैं, ईश्वर प्रणीत ग्रंथों में नहीं। पुरोहितों के पूर्वजों के कर्मों का फल पुरोहित ही भोगें। मैं तो ईश्वर की वाणी का अनुसरण करता हूं, उसी से मेरा कल्याण होगा। एक और बात मेरी समझ में आई है कि परोपकार ही धर्म है और बाकी याग यज्ञ इत्यादि सब पागलपन है। अपनी मुक्ति की इच्छा भी अनुचित है। जिसने दूसरों के लिए अपना सर्वस्व दे दिया है वही मुक्त होता है, और जो लोग मेरी मुक्ति रटते हुए दिन रात सिर खपाते हैं वे इतो नष्ट स्ततो भ्रष्टः बनकर भटकते रहती हैं। ऐसा भी अनेकों बार मेरे देखने में आया है।
1: सभी दृष्टियों से एक सुंदर उत्तर है। शास्त्र दर्शन युक्त व्यवहारिकता और नवीन युग दर्शन, इसमें सब कुछ है। और मजे की बात तो ये है कि प्रतिपक्ष की ओर से जो लोग शूद्र नरेंद्र नाथ को धराशायी कर सच्चे धर्म की विजय पताका को उड़ते देखने को ठान कर युद्ध क्षेत्र में उतरे थे, योगेंद्र नाथ बसु, त्रैलोक्यनाथ विश्वास, प्रमदा दास मित्र, बैरोज, वे सभी अब्राह्मण थे। वैसे तो ये पत्र जन साधारण के लिए प्रकाशित होने की संभावना न थी, फिर भी परवर्ती युग के भारतीय परिदृश्य में स्वामी जी को समझने के लिए ये अमूल्य है। पश्चिम में भी ठीक

0: उन सुप्रचारित स्वागत सूचक पत्रों का बिल्कुल भी उल्लेख न करते तो अच्छा होता, जिनमें स्वामी जी ने हिंदू से अनुरोध किया था कि डॉक्टर पैरोस का हिंदू धर्म अथवा उनके अपने धर्म के बारे में चाहे जो भी अभिमत हो उन पर विचार न कर उपयुक्त सद्भाव पूर्ण ढंग से उनका वैसा ही स्वागत किया जाए जैसा कि डॉक्टर बैरोस और श्री बोनी ने शिकागो में एकत्र प्राच्य प्रतिनिधियों के प्रति सदैव व्यवहार किया था, जिस समय समग्र राष्ट्र अभूतपूर्व आंतरिकता एवं उत्साह के साथ स्वामी का स्वागत करने को तैयार हो रहा था। उस समय उनके प्रचारित पत्रों के साथ जब हम स्वदेश लौटकर कैलिफोर्निया में ठियाखाए डॉक्टर पैरोस के विवेकानंद संबंधी व्यक्तित्व की तुलना करते हैं तो उनमें कैसा विपरीत भाव दिखाई देता है। भारतीय जनता के मूल्यांकन करने के लिए दोनों व्यक्तियों का कैसा विपरीत चित्र उपस्थित करता है।
1: श्रीमती बुल ने डॉक्टर जेन्स को खेद जताते हुए बहुत लंबा खत लिखा था, जिसमें स्वामी जी के प्रति लगाए गए आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। इस प्रसंग के अंत में हम स्वामी जी के 3 मार्च 1898 के एक पत्र का अंश भी उद्धृत करना चाहेंगे कि जिसमें यह स्पष्ट होता है क्यों वे बैरोज साहब से बिना मिले ही मद्रास चले गए थे और उस समय वे कितना अस्वस्थ थे। उन्होंने लिखा था,
2: लंदन से लौटकर जब मैं दक्षिण भारत में था तो शरीर में शक्ति का पूर्ण हास तथा चरम अवसाद आ गया और मुझे तुरंत मद्रास छोड़कर अपेक्षाकृत ठंडे उत्तरांचल में जाना पड़ा। एक दिन भी विलंब करने का अर्थ होता उस भीषण गर्मी में और भी एक सप्ताह जहाज के लिए प्रतीक्षा करना। खैर, मुझे बाद में पता चला कि अगले दिन श्री बैरोज मद्रास पहुंचे और अपनी अपेक्षा के अनुसार मुझे वहां ना पाकर बड़े नाराज हुए। वैसे मैंने वहां उनके स्वागत तथा आवास का प्रबंध कर दिया था। उन बेचारे को क्या मालूम कि उस समय मैं यमलोक के द्वार पर था।
3: बैरोज के लिए लिखे गए अभिनंदन पत्र पर स्वामी जी का भी हस्ताक्षर था और उनका नाम देखकर और भी अनेक हिंदू सज्जनों ने उस पर दस्तखत किए थे।
1: एक वर्ग के लोगों ने जातिवाद के आधार पर स्वामी जी को नीचा दिखाने का प्रयास किया था, तथापि उन्होंने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। परंतु संपूर्ण देश में और विशेषतः त्रावणकोर राज्य में उच्च जातियों के द्वारा निम्न जातियों के लोग जिस प्रकार पीड़ित किए जा रहे थे उससे वे विचलित हुए थे और उसे दूर करने का प्रयास भी उन्होंने किया था। इसलिए हम देखते हैं कि 3 अप्रैल 1897 को वे निवेदिता के नाम पर पत्र में लिखते हैं,
2: भारत की पीड़ित जनता के लिए तुम कर सको ऐसे एक महत्वपूर्ण कार्य का मुझे अभी अभी पता चला है। जिन सज्जन को तुमसे परिचित कराने का दायित्व मैंने अपने ऊपर लिया है वे मालाबार केरल के एक देशी राज्य तिया जाति के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड में हैं। तिया लोग एक निम्न जाति के हैं। तुम्हें इन सज्जन से पता चलेगा कि केवल जाति के कारण ये बेचारे गरीब लोग कैसे सताए जाते हैं। देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की अपनी नीति के कारण भारत की अंग्रेज सरकार कुछ करने को राजी नहीं है। एकमात्र ब्रिटिश पार्लियामेंट ही उनकी आशा है। इस बात को ब्रिटेन के जनसमाज के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार तुम जो भी कर सको करो।
1: इसी समय एक दिन स्वामी जी माताजी तपस्विनी के आमंत्रण पर शिष्य शरद बाबू को लेकर महाकाली पाठशाला के निरीक्षण के लिए गए। विद्यालय की शिक्षा प्रणाली देख स्वामी जी संतुष्ट हुए। लौटते समय वार्तालाप के सिलसिले में उन्होंने कहा कि पुरुषों के लिए मठों की स्थापना करने के साथ ही साथ नारी मठ स्थापित करने की भी इच्छा है। वहां पर ब्रह्मचारिणी व सन्यासिनी सुशिक्षित बनकर नारी जाति की उन्नति व शिक्षा के लिए प्रयत्न करेंगी।
3: उन्होंने और भी कहा था कि विजातीय आदर्श के अनुसार जीवन जीने की कोशिश न करते हुए भारतीय स्त्रियों को अभी से जातीय भाव में शिक्षा देना ही कर्तव्य है। वे शिक्षित होकर अपने भले बुरे को स्वयं ही समझ लेंगी। इसके लिए पुरुषों को माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है और कर्म क्षेत्र में नारी की स्वाभाविक दक्षता स्वतंत्र रूप में यदि राष्ट्र की उन्नति के लिए नियुक्त हो तो कल्याण होगा। इन दिनों स्वामी जी के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आती जा रही थी। अल्मोड़ा जाने से पहले उन्होंने 28 अप्रैल को मैरी को लिखा था,
2: मेरे गुच्छे के गुच्छे बाल सफेद हो रही हैं, मुख पर चारों ओर झुर्रियां पड़ गई हैं, और शरीर का मांस घट जाने से मेरी आयु और भी 20 वर्ष बढ़ गई प्रतीत होती है। अब मैं दिन पर दिन तेजी से दुबला होता जा रहा हूं। उसका कारण ये कि मुझे केवल मांस खाकर रहना पड़ रहा है, रोटी नहीं, भात नहीं, आलू नहीं, इतना ही क्या, अब मैं एक बड़ी दाढ़ी रख रहा हूं जिसके बाल भी सफेद होने लगे हैं। हे सफेद दाढ़ी, तुम कितनी ही चीजें छुपा सकती हो, धन्य हो तुम।
3: अल्मोड़ा जाने से एक दिन पहले यानी 5 मई को स्वामी जी ने श्रीमती बुल को लिखा था,
2: अपने बिगड़े स्वास्थ्य को सुधारने के लिए मैं एक महीना दार्जिलिंग में था, अब मैं काफी अच्छा हो गया हूँ। दार्जिलिंग में रोग पूरी तौर से भाग गया। स्वास्थ्य को पूरा ठीक करने के लिए कल मैं अल्मोड़ा नामक एक अन्य पहाड़ी स्थान में जा रहा हूँ।
1: दोनों पत्रों को एक साथ पढ़ने से पाठकों को सहज ही प्रतीत होगा कि स्वामी जी ने यद्यपि अपने स्वस्थ हो जाने की बात लिखी है, परंतु वास्तव में बात ऐसी नहीं थी। उनका स्वभाव ही ऐसा था कि वे रोग, शोक, आपत्ति, विपत्ति आदि की विशेष परवाह नहीं करते थे। अतः भयानक रोग को भी कुछ नहीं कहकर उड़ा देना उनके लिए असंभव न था। वस्तुतः इसी आयु में बालों का पक जाना और आटा, चावल, आलू तथा मीठी चीजों का निषिद्ध हो जाना अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। यद्यपि उन्होंने दार्जिलिंग में रोग मुक्त होने तथा अल्मोड़ा में पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने की बात लिखी थी, तथापि चिकित्सकों के उनके सहमत न होने के यथेष्ट कारण थे। उन लोगों ने स्वामी जी को ग्रीष्मकाल में समतल में न रहकर पहाड़ों में बिताने की सलाह दी थी।
3: 6 मई को उन्होंने अल्मोड़ा की ओर प्रस्थान किया। कुमारी मूलर पहले ही भारत पहुंच चुकी थी और स्वामी जी की यात्रा के पूर्व ही वे गुडविन के साथ देहरादून होते हुए अल्मोड़ा पहुंच चुकी थी। स्वामी जी के आगमन की संभावना जानकर अल्मोड़ा वासियों ने इसमें विशेष उत्सुकता दिखाई और आग्रह पूर्वक उन्हें आमंत्रित किया।
1: अल्मोड़ा जाते समय लखनऊ में उनके अनुरागी मित्रों तथा भक्तों ने उनका सादर स्वागत किया और उन्होंने भी एक दिन वहां ठहरकर विश्राम किया। लखनऊ से ट्रेन में यात्रा कर हिमालय के द्वार पर स्थित काठ गोदाम स्टेशन 9 मई पहुंचने पर पता चला कि उन्हें साथ ले जाने को अल्मोड़ा से गुडविन आए हुए हैं। आलम बाजार मठ से स्वामी जी योगानंद भी स्वामी जी के साथ आए हुए थे।
3: अल्मोड़ा के निकट लोदिया नामक स्थान में 11 मई को पहुंचने पर एक विशाल जनसमूह ने जय ध्वनि के साथ स्वामी जी का हार्दिक स्वागत किया। ये लोग स्वामी जी के लिए एक सुसज्जित घोड़ा ले आए थे, उसी के पीठ पर उन्हें बैठाकर एक शोभा यात्रा और अविराम जय ध्वनि के साथ लोग उन्हें नगर की ओर ले चले।
1: सभा स्थल में पहुंचने पर देखा गया कि वहां लगभग 5,000 लोग एकत्र हो गए हैं।
3: ऋषि मुनियों की निवास भूमि, आध्यात्मिक संपदा तथा माओं से परिपूर्ण गिरिराज हिमालय के साथ स्वामी जी का बचपन से ही एक तरह का घनिष्ठ लगाव था। अतः इन मान पत्रों का उत्तर देते हुए उन्होंने हिमालय का गुणगान करते हुए वहां एक आश्रम स्थापित करने की अपनी आंतरिक इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा,
2: ये हमारे पूर्वजों के स्वप्न का प्रदेश है। भारत जननी श्री पार्वती की जन्मभूमि है। ये वो पवित्र स्थान है जहां भारत का प्रत्येक सच्चा धर्म पिपासु व्यक्ति अपने जीवन का अंतिम काल बिताने को इच्छुक रहता है। ये वही भूमि है जहां निवास करने की कल्पना मैं अपने बाल्यकाल से ही करता रहा हूं। मेरे मन में इस समय हिमालय में एक केंद्र स्थापित करने का विचार है और संभवतः मैं आप लोगों को भलीभांति ये समझाने में समर्थ हुआ हूं कि क्यों मैंने अन्य स्थानों की तुलना में इसी स्थान को सार्वभौमिक धर्म शिक्षा के एक प्रधान केंद्र के रूप में चुना है। इन पहाड़ों के साथ हमारी जाति की श्रेष्ठतम स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। यदि धार्मिक भारत के इतिहास से हिमालय को निकाल दिया जाए तो उसका थोड़ा ही बचा रहेगा। अतएव यहां एक केंद्र अवश्य होना चाहिए। ये केंद्र केवल कर्म प्रधान न होगा, बल्कि यहां निस्तब्धता, ध्यान तथा शांति की प्रधानता होगी। और मुझे आशा है कि एक न एक दिन मैं इसे रूपायित कर सकूंगा।
1: इन्हीं दिनों स्वामी शिवानंद अल्मोड़ा में तपस्या कर रहे थे। वे भी स्वामी जी के साथ आ मिले। और भी जो गुरु भाई या शिष्य स्वामी जी के साथ अल्मोड़ा आए थे, अथवा बाद में आकर उनसे मिले थे, या फिर कुछ दिनों बाद उनके उत्तर भारत के भ्रमण के दौरान उनके संगी हुए थे, उनके नाम इस प्रकार हैं: स्वामी योगानंद, स्वामी निरंजनानंद, स्वामी अद्वैतानंद तथा स्वामी विज्ञानानंद। ये सभी श्री रामकृष्ण के शिष्य थे। और स्वामी सदानंद, स्वामी सच्चिदानंद, स्वामी शुद्धानंद, ब्रह्मचारी कृष्णलाल तथा श्री जे जे गुडविन, ये सभी स्वामी जी अथवा उनके गुरु भाइयों के शिष्य थे।
3: आर्य समाज के भूतपूर्व प्रचारक स्वामी अच्युतानंद भी कुछ काल तक स्वामी जी के साथ रहे। ये श्री रामकृष्ण संघ के न थे और उपरोक्त किसी भी श्रेणी में नहीं आते। इनमें जब जो लोग अल्मोड़ा में रहते, स्वामी जी दल के साथ आमोद प्रमोद में दिन बिताते। व्यायाम तथा स्वास्थ्य में सुधार के निमित्त वे घोड़े पर चढ़कर दूर दूर तक भ्रमण करते। 29 मई को उन्होंने कलकत्ता के चिकित्सक डॉक्टर शशि भूषण घोष को लिखा था,
2: सुबह शाम घुड़सवारी के रूप में मैंने यथेष्ट व्यायाम प्रारंभ कर दिया है और इसके फलस्वरूप मैं सचमुच ही काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ।
1: अल्मोड़ा पहुंचकर शहर में कुछ दिन बिताने के बाद गर्मी के कारण वे वहीं से 20 मील दूर देवलधार नामक अपेक्षाकृत ठंडे स्थान में स्थित लाला चिरंजी लाल के एक उद्यान में चले गए। वहां प्रचुर मात्रा में फल, विशेषकर खुबानी होने के कारण वे उन्हीं को खाते तथा नैनीताल से अन्य प्रकार के फल भी मंगा लेते। ये सारा संवाद देते हुए उन्होंने डॉक्टर साहब को अंत में लिखा था,
2: इस समय मैं अपने आप को खूब बलवान महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर, आजकल जब मैं बर्फ से ढके पर्वत शिखरों के सम्मुख बैठकर उपनिषद के अंशों का पाठ करता हूँ, उस समय तुम यदि काश एक बार मुझे देख पाते। रामकृष्ण मिशन की कलकत्ते की सभाओं की सफलता की खबरें पाकर मैं अत्यंत आनंदित हुआ हूँ। जो लोग इस महान कार्य में सहायक हो रही हैं, उनका सर्वांगीण कल्याण हो।
1: शारीरिक अस्वस्थता के कारण हिमालय पहाड़ के निर्जन फलोद्यान में दिन बिताने के बावजूद उन्होंने अपना काम जारी रखा। वहां रहकर भी वे इन बातों पर विचार करते और दूसरों को परामर्श भी देते। स्वामी जी ब्रह्मानंद के नाम लिखे पत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख मिल जाता है। उस समय वे कलकत्ते के पास एक स्थायी मठ निर्माण के लिए आवश्यक धन के बारे में सोच रहे थे। कभी मुर्शिदाबाद जिले में चल रहे अकाल राहत कार्य के बारे में सलाह देते, मद्रास में शुरू किया गया केंद्र के लिए असिस्टेंट की बातें सोचते थे। मेरी हेल्बास्टर को लिखे 2 जून के पत्र में लिखा,
2: अल्मोड़ा के एक व्यापारी के एक सुंदर उद्यान में हूँ। परसों रात एक चीता यहाँ धमका और बाग में रखे झुंड में से एक बकरा उठा ले गया। मिस मूलर की तुम्हें याद है ना, कुछ दिन रहने के लिए वे यहाँ आई हुई हैं, परंतु चीते वाली घटना सुनकर डर सी गई हैं।
3: देवलधार के उद्यान में कई सप्ताह बिताने के बाद 19 जून को वे अल्मोड़ा लौट आए। स्वयं को उस समय वे काफी स्वस्थ अनुभव कर रहे थे, तथापि संगीगण उनके स्वास्थ्य में इतना सुधार हुआ नहीं मानते थे। अल्मोड़ा निवास के दौरान वे स्थानीय लोगों के साथ वार्तालाप करते और अनेक देशी विदेशी मित्रों को पत्र लिखकर अपने विभिन्न भावी कार्यों के विस्तार हेतु क्षेत्र तैयार करते। वैसे उस समय भारत में होने के कारण भारतीय कार्य ही प्रधानतः उनके मन पर अधिकार जमाए हुआ था और इस विषय में उनका मत था,
2: कर्म कर्म कर्म, मुझे और किसी चीज की परवाह नहीं है। हृदय और केवल हृदय ही विजय प्राप्त कर सकता है, मस्तिष्क नहीं। पोथी पत्र विद्या, योग ध्यान और ज्ञान प्रेम की तुलना में ये सब धूल के समान है। प्रेम में ही अणिमादि सिद्धियां हैं, प्रेम में ही भक्ति है, प्रेम में ही ज्ञान है और प्रेम में ही मुक्ति है। यही तो पूजा है, मानव रूपधारी ईश्वर की पूजा। ये तो आरंभ मात्र है। इसी प्रकार क्या हम संपूर्ण भारत पृथ्वी भर में नहीं छा जाएंगे?
1: इन्हीं दिनों स्वामी जी की सफलता पर जलते हुए कुछ लोगों ने उन पर चौतरफा आक्रमण चलाया था। स्वामी जी ने इस पर मेरी को पत्र लिखकर कहा था,
2: मैं समझ रहा हूं कि मेरा कार्य समाप्त हो चुका है। जीवन के अधिक से अधिक 3-4 वर्ष बची रही हैं। अपनी मुक्ति की इच्छा अब मुझ में बिल्कुल नहीं है और सांसारिक सुख की कामना तो मैंने कभी की नहीं। मैं अपने यंत्र को खूब सशक्त रूप से शुरू हो गया देखना चाहता हूं और जब मैं निश्चित रूप से समझ लूंगा कि मानव जाति के कल्याणार्थ मैंने एक ऐसा यंत्र अंततः भारत में चालू कर दिया है जिसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती, तब भविष्य की चिंता छोड़कर मैं सो जाऊंगा। मेरी अभिलाषा है कि मैं बारंबार जन्म लेकर हजारों दुख भोगता रहूं ताकि समस्त आत्माओं के समष्टि रूप अपने उस एकमात्र ईश्वर की पूजा कर सकूं जो सचमुच विद्यमान है और जिन पर मुझे विश्वास है। सर्वोपरि सभी जातियों तथा सभी वर्णों के पापी तापी तथा निर्धन रूपी ईश्वर ही मेरे विश्वास तथा उपास्य हैं।
1: अल्मोड़ा में इसी प्रकार कई दिन बिताने के बाद 11 जुलाई को वे पुनः देवलधार गए। सेवियर दंपत्ति उस समय शिमला में थे, मिस मूलर अल्मोड़ा में थी और गुडविन स्वामी के आदेश पर मद्रास चले गए थे।
3: इसी काल में एक अन्य पत्र में स्वामी जी की स्वभाव सुलभ निर्भीक सत्यवादिता का उदाहरण मिलता है। कुमारी मैकलाउड भारत आना चाहती थी। स्वामी जी ने उन्हें इसके लिए सस्नेह आमंत्रित किया था, तथापि अपने 10 जुलाई के पत्र में उन्होंने भारतीय हालात तथा उसके साथ पाश्चात्य जीवनधारा के मापदंड के पूर्ण पार्थक्य के विषय में एक ऐसा सटीक तथा निरावरण चित्र खींचा था जो केवल स्वामी जी के लिए ही संभव था। उन्होंने लिखा था,
2: जैसे भी बने तुम यहाँ आ जाओ, केवल इतना ही स्मरण रखना कि यूरोपीय तथा भारतीय का साथ रहना तेल तथा जल के समान है। नेटिव लोगों के साथ मिलना जुलना यूरोपीय लोगों के लिए एक बड़ी भयानक बात है। सर्वत्र धूल कीचड़ और काले आदमी, परंतु दार्शनिक चर्चा करने वाले लोग भी तुम्हें अनेक मिलेंगे।
1: अनुरागी भक्तों को वे चाहते थे, परंतु मिथ्या आशा के धोखे में रखकर नहीं। निवेदिता के भारत आने के पूर्व उन्होंने उन्हें भी ठीक इसी प्रकार या इससे भी स्पष्ट रूप से सावधान कर दिया था। कहना न होगा कि इस प्रकार जान सुनकर भी इन दो महामना महिलाओं ने यहां आकर भारत की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया था। इन दोनों महान महिलाओं ने भारत के सर्वहारा वर्ग के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया था। उनके चरणों में हमारा कोटिशः प्रणाम।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

युग प्रवर्तक विवेकानंद। अभी आप ये धारावाहिक सुन रहे थे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा में आपके साथ थी मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, अब इस प्रसारण सभा में मैं आपसे विदा लूं उसके पहले आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से आपको परिचित करवाना चाहती हूं। शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम अक्षय निधि। 5:10 पर भक्ति संगीत का प्रसारण होगा। वतन का राग कार्यक्रम में आज शाम 6 बजे हम बात करेंगे भीखाजी रुस्तम जी कामा की। शाम 6:30 बाल सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें आज बच्चे जानेंगे पौराणिक कथाओं का महत्व। हमारी सेना हमारा गर्व, ये कार्यक्रम शाम 7 बजे प्रसारित होगा। इसमें आज सुनिएगा नेवी और एयरफोर्स की कार्यप्रणाली पर जानकारी। शाम 7:30 हमारा विशेष कार्यक्रम होगा। इसमें आप सुनेंगे कविता कृष्णमूर्ति के गायन का पहला भाग। देश के संस्थान कार्यक्रम में रात 8 बजे हम बात करेंगे भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML की। आजाद हिंद कार्यक्रम केंद्रित होगा प्रीति लता वादेदार पर। प्रसारण का समय रात 8:30 और रात 9:30 आप सुनेंगे धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। आप इस प्रसारण सभा से अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने आजादी के।

तराने आजादी के इस कार्यक्रम में आज आपके साथ थी मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब इजाजत दें इस कार्यक्रम से मुझे, नमस्कार। आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम भारत भारती। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित रोनू मजूमदार का बांसुरी वादन।

सिंताल में ट्रेडिशनल बंदिश बहुत सुंदर है, काफ़ी लोगों ने गाया बहुत पुराने समय से। अब कैसे बने मोरी बात सजनी।

0: भारत भारती कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पंडित रोनू मजुमदार का बांसुरी वादन। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अनुमति दें अपनी रेडियो दोस्त सुनीता सिंह को नमस्कार। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती, भारत भारती।

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की इस प्रसारण सभा में आज आपकी हम सफर हूँ मैं सुनीता सिंह। हमारे कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है, बस एक छोटे से अंतराल के बाद प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम सुनो कहानी। इंतजार कीजिएगा बस कुछ पलों का।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। कहानियां जो अपने भीतर समेटे होती हैं, अथाह भाव सागर, अपने समय को जीती, सांस लेती हैं शब्दों में, धड़कती हैं किताबों में। ऐसी कहानियां जो श्रोताओं के मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, वही कहानियां लेकर हम आएंगे इस कार्यक्रम में। शीर्षक है दो बहनें।

0: दोनों बहनें 2 साल के बाद एक तीसरे नातेदार के घर मिली और खूब रो धोकर खुश हुई। बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सिर से पैर तक गहनों से लदी हुई है, कुछ उसका रंग भी खुल गया है, स्वभाव में कुछ गरिमा आ गई है और बातचीत करने में ज्यादा चतुर हो गई है। कीमती बनारसी साड़ी और बेलदार उन्नावी मखमल के जम्पर ने उसके रूप को और भी चमका दिया। वही राम दुलारी लड़कपन में सिर के बाल खोले फूहड़ से इधर उधर खेला करती थी। अंतिम बार रूप कुमारी ने उसे उसके विवाह में देखा था 2 साल पहले। तब भी उसकी शक्ल सूरत में कुछ ज्यादा अंतर न हुआ था। लंबी तो हो गई थी मगर थी उतनी ही दुबली पतली और फूहड़ उतनी ही और साथ में मंदबुद्धि भी, जरा जरा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो हालत कुछ और ही है, जैसे कली खिल गई हो। और ये रूप इसने कहाँ छिपा रखा था? नहीं नहीं, आंखों को धोखा हो रहा है। ये रूप नहीं, केवल आंखों को लुभाने की शक्ति है। रेशम मखमल और सोने के बल पर वो रूपरेखा थोड़ी ही बदल जाएगी, फिर भी आंखों में समाई जाती है। 500 स्त्रियां जमा हैं मगर ये आकर्षण, ये जादू किसी में नहीं। कहीं आईना मिलता तो वो जरा अपनी सूरत भी देखती, इस बार तुलनात्मक दृष्टि से देखेगी। राम दुलारी में ये आकर्षण आखिर आया कहां से, इस रहस्य का पता लगाएगी। उठकर ड्राइंग रूम में गई और कद्दे आदम शीशे में अपनी सूरत देखी। वहां इस वक्त कोई नहीं था। देखा, उसकी मुख छवि निष्कलंक है मगर वो ताजगी, वो मादकता, वो माधुर्य नहीं है। हाँ, नहीं है, वो अपने को धोखे में नहीं डाल सकती। कारण क्या है? यही कि राम दुलारी आज खिली है और उसे खिले जमाना हो गया। लेकिन इस ख्याल से उसका चित्त शांत नहीं होता। वो राम दुलारी से हेठी बनकर नहीं रह सकती है। ये पुरुष भी कितने गावदी होते हैं, किसी में भी सच्चे सौंदर्य की परख नहीं। अरे, असली रूप तो वो है जो समय की परवाह न करे। उसके कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो ये सारा जादू कहाँ उड़ जाता है, चुड़ैल सी नजर आए। फिर सोचने लगी, मगर राम दुलारी के घर वाले तो इतने संपन्न न थे। विवाह में जो जोड़े और गहने आए थे वे भी बहुत निराशाजनक थे। खुशहाली का कोई दूसरा सामान भी न था। इसके ससुर एक रियासत के मुख्तार आम थे और दूल्हा कॉलेज में पढ़ता था। इन 2 साल में कहां से ये हुन बरस गया? कौन जाने गहने भी कहीं से मांग लाई हो, कपड़े भी मांगे हो सकते हैं। कुछ औरतों को अपनी हैसियत बढ़ाकर दिखाने की लत होती है। तो ये स्वांग राम दुलारी को मुबारक हो भाई, मैं तो जैसी हूँ अच्छी हूँ। प्रदर्शन का ये रोग कितना बढ़ता जाता है, घर में रोटियों का ठिकाना नहीं। मर्द 25-30 रुपए पर कलम घिस रहा है, लेकिन देवी जी वो तो निकलेंगी तो इस तरह बन ठन कर मानो कहीं की राजकुमारी हूँ। राम दुलारी ने जरूर किसी से गहने और जेवर मांग लिए होंगे, बेशर्म जो है। उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की लाली दौड़ गई। न सही उसके पास जेवर और कपड़े, उसे किसी के सामने लज्जित तो नहीं होना पड़ता, किसी से मुंह तो नहीं चुराना पड़ता। 1-1 लाख के 2 लड़के हैं उसके, भगवान उन्हें चिरायु करे, वो इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से जीवन का उद्देश्य नहीं पूरा हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं पर उनकी इज्जत तो है, किसी का गला तो नहीं दबाते, अरे किसी का श्राप तो नहीं लेते। इस तरह अपने मन को ढांढस देकर वो फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे उसे दया की आंखों से देखकर कहा, जीजा जी की कुछ तरक्की वरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी भी वही 75 रुपए पर कलम घिस रहे हैं? रूप कुमारी की देह में आग सी लग गई, मानो उसका पति तो लाट ही हो। अकड़कर बोली, तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है। आजकल तो ये भी गनीमत है, नहीं तो अच्छे अच्छे एमए पास को देखती हूँ, कोई टके को नहीं पूछता। वैसे तेरा शौहर तो अब बीए में होगा? राम दुलारी ने नाक सिकोड़ कर कहा, उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया बहन, पढ़कर औकात खराब करना था और क्या। एक कंपनी में एजेंट हो गए हैं, अब 250 रुपए माहवार पाते हैं और कमीशन ऊपर से, 5 रुपए रोज सफर खर्च के मिलते हैं। ये समझ लो 500 का औसत तो पढ़ ही जाता है। 150 माहवार तो उनका निज खर्च हो गया। भाई ऊंचे ओहदे के लिए अच्छी हैसियत भी तो चाहिए ना। 350 बेदाग घर को दे देते हैं, इसमें से 100 रुपए मुझे मिलते हैं और 250 में घर का खर्च खुशफैली से चल जाता है। एमए पास करके क्या करते?
1: रूप कुमारी इस कथन को शेख चिल्ली की दास्तान से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहती, मगर रामदुलारी के लहजे में इतनी विश्वासोत्पादकता है कि वो अपनी निम्न चेतना में उससे प्रभावित हो रही है और उसके मुख पर पराजय की खिन्नता साफ झलक रही है। इस कथन की सच्चाई को वो 1/4 तक तो सह सकती है, पर इससे ज्यादा उससे न सहा जाएगा। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है कि कहीं ये कथा पूरी सत्य निकली तो वो रामदुलारी को कैसे मुंह दिखाएगी। उसे भय है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू न निकल पड़े। कहां 75 और कहां 500? इतनी रकम आत्मा की हत्या करके भी क्यों न मिले, फिर भी रूप कुमारी के लिए असह्य है। आत्मा का मूल्य अधिक से अधिक 100 रुपए हो सकता है, 500 तो किसी हालत में भी नहीं। उसने परिहास के भाव से पूछा,
0: जब एजेंटी में इतना वेतन और भत्ता मिलता है तो ये जो सारे कॉलेज हैं ये बंद क्यों नहीं हो जाते? अरे हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं?
1: राम दुलारी बहन के खिसियानेपन का आनंद उठाती हुई बोली,
0: बहन तुम यहाँ भूल कर रही हो, एमए तो सभी पास हो जाते हैं मगर एजेंटी बिरले ही कर पाते हैं। ये तो भाई ईश्वर की देन है, कोई जिंदगी भर पढ़ता रहे मगर ये जरूरी नहीं कि वो अच्छा एजेंट भी हो जाएगा। रुपए पैदा करना दूसरी बात है, आलिम फाजिल हो जाना दूसरी बात।
1: अरे अपने माल की श्रेष्ठता का विश्वास पैदा कर देना, ये दिल में जमा देना कि इससे सस्ता और टिकाऊ माल बाजार में मिल ही नहीं सकता, कोई आसान काम नहीं है।
0: एक से एक घाघों से इनका सामना पड़ता है, अब तो अगले साल तरक्की भी होने वाली है इनकी।
1: रूप कुमारी की धमनियों में रक्त की गति जैसे मंद हुई जा रही थी। निर्दयी आकाश गिर क्यों नहीं पड़ता? पाषाण हृदया धरती फट क्यों नहीं जाती? ये कहां का न्याय है कि रूप कुमारी जो रूपवती है, तमीजदार है, सुघड़ है, पति पर जान देती है, बच्चों को प्राणों से ज्यादा चाहती है, थोड़े में गृहस्थी को इतने अच्छे ढंग से चलाती है, उसकी ये दुर्गति और ये घमंडिन, बदतमीज, विलासिनी, चंचल मुंहफट छोकरी जो अभी तक सिर खोले घूमा करती थी रानी बन जाए। मगर उसे अब कुछ भी आशा बाकी न दिखी। शायद आगे चलकर उसके चित्त की शांति का कोई मार्ग निकल आए। उसी परिहास के स्वर में बोली,
0: तब तो शायद 1000 रुपए मिलने लगे ना। 1000 तो नहीं पर 600 में संदेह नहीं। कोई आंखों का अंधा मालिक ही फंसा होगा। व्यापारी आंखों के अंधे नहीं होते दीदी, उनकी आंखें हमारी तुम्हारी आंखों से कहीं तेज होती हैं। जब तुम उन्हें 6000 कमा कर दो तब कहीं 600 मिले। जो सारी दुनिया को चराए उसे कौन बेवकूफ बनाएगा?
1: परिहास से काम न चलते देखकर रूप कुमारी ने अपमान का अस्त्र निकाला,
0: मैं तो इसे बहुत अच्छा पेशा नहीं समझती। अरे सारे दिन झूठ के तुमार बांधो, ये तो ठग विद्या हुई।
1: राम दुलारी जोर से हंस पड़ी।
0: इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी ठग विद्या करते हैं। अरे दीदी आजकल दुनिया पैसा देखती है। आजकल ही क्यों, हमेशा से धन की ही महिमा रही है। भाई पैसे कैसे आए ये कोई नहीं देखता। जो पैसे वाला है बस उसी की पूजा होती है। जो अभागी हैं, अयोग्य हैं या भीरू हैं, वे आत्मा और सदाचार की दुहाई देकर अपने आंसू पोछते रहते हैं। नहीं आत्मा और सदाचार को कौन पूछता है?
1: रूप कुमारी खामोश हो गई। अब उसे ये सत्य उसकी सारी वेदनाओं के साथ स्वीकार करना पड़ा कि राम दुलारी उससे ज्यादा भाग्यवान है। परिहास या अनादर से वो अपनी तंगदिली का प्रमाण देने के सिवा और क्या कर पाएगी? उसे किसी बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वास्तव में लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो रूप कुमारी अपनी किस्मत ठोंक कर बैठी रहेगी। समझ लेगी कि दुनिया में कहीं भी न्याय नहीं है, कहीं ईमानदारी की पूछ नहीं है। मगर क्या सचमुच उसे इस विचार से संतोष होगा? यहाँ कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी करने का अवसर नहीं है और ना इतनी बुद्धि या मनोबल है कि वो अवसर पैदा कर ले। उसके पति 75 रुपए कमाते हैं, पर क्या 10-20 रुपए ऊपर से मिल जाएं तो वो खुश होकर ले न लेंगे? उनकी ईमानदारी और सत्यवादिता उसी समय तक जब तक अवसर नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला, सारी सत्यवादिता धरी रह जाएगी। और क्या रूप कुमारी में इतना नैतिक बल है कि वो अपने पति को दूसरों का माल हजम करने से रोक दे? रोकना तो दूर की बात, शायद वो प्रसन्न होगी और पतिदेव की पीठ भी ठोकेगी। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी हुई थी। न जाने क्यों उसके सर में दर्द होने लगा था। कोई गाए कोई नाचे, उससे प्रयोजन नहीं। वो तो अभागिन है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात को मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, एक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा, एक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन? मुझे लेने के लिए कार आती होगी। चलो 2-4 दिन मेरे यहाँ रहो, फिर चली जाना। मैं जीजा जी से कहला भेजूंगी, तुम्हारा इंतजार न करें। रूप कुमारी का अंतिम अस्त्र भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर हालचाल की टोह लेने की इच्छा गायब हो गई। बोली, नहीं अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, बच्चे घबरा रहे होंगे, मैं फिर कभी आऊंगी। सहसा राम दुलारी के पति मिस्टर गुरुसेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी सजधज, मुंह में चुरुट, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, जैसे कोई सिविलियन हो। चेहरे से जहानत और शराफत बरस रही थी। वो इतना रूपवान और सजीला है, रूप कुमारी को अनुमान न था। कपड़े जैसे उसकी देह पर खिल रहे थे। आशीर्वाद देकर बोली, आज यहां ना आती तो मुझसे मुलाकात क्यों होती? गुरुसेवक हंसकर बोला, ये तो उल्टी शिकायत, कभी आपने बुलाया और न मैं गया। मैं नहीं जानती थी कि तुम अपनों को मेहमान समझते हो, वो भी तो तुम्हारा ही घर है। राम दुलारी देख रही थी कि मन में उससे ईर्ष्या रखते हुए भी वो कितनी वाणी मधुर, कितनी स्निग्ध, कितनी अनुग्रह प्रार्थनी होती जा रही है। गुरुसेवक ने उदार मन से कहा, हाँ अब मान गया भाभी साहब, बेशक मेरी गलती है, इस दृष्टि से मैंने विचार नहीं किया था, मगर आज तो आप मेरे घर रहिए। नहीं नहीं, आज मुझे बिल्कुल अवकाश नहीं है, फिर कभी आऊंगी ना, लड़के घबरा रहे होंगे। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठ गईं। गुरुसेवक ड्राइव करता हुआ चला, जरा ही देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर बहन से उतरने के लिए आग्रह किया, पर वो न मानी। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और वो ठोस सत्य एक शलाका की भांति उसके कलेजे में चुभ गया। कुछ दूर जाकर गुरुसेवक बोला, भाभी मैं तो अपने लिए अच्छा रास्ता निकाल लिया, अगर 2-4 साल इसी तरह काम करता रहा ना तो आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने सहानुभूति के साथ कहा, राम दुलारी ने मुझसे बताया था, भगवान करे जहां रहो खुश रहो, मगर जरा हाथ पैर संभाल के रहना। मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा भी लेना पाप समझता हूँ भाभी। दौलत का मजा तो तभी है कि ईमान सलामत रहे। ईमान खोकर पैसे मिले तो क्या पैसे, मैं ऐसी दौलत को त्याज्य समझता हूँ। और आंख किसकी बचाऊं, सब सियाह सफेद तो मेरे हाथ में है। मालिक तो रहा नहीं, केवल उसकी बेवा है, उसने सब कुछ मेरे हाथ में ही रख छोड़ा है। मैंने उसका कारोबार संभाल न लिया होता तो सच कहूं सब कुछ चौपट हो जाता। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने ही जिंदा रहे, मगर आदमी को परखना खूब जानते थे। मुझे 100 रुपए पर रखा और 1 महीने में 200 रुपए कर दिया। आप लोगों की दुआ से पहले ही महीने में मैंने 12,000 का काम किया। क्या काम करना पड़ता है? रूप कुमारी ने बिना किसी उद्देश्य के पूछा। वही मशीनों की एजेंटी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना, ठंडा सा जवाब था। रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। द्वार पर लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके पति उमानाथ द्वार पर टहल रहे थे, मगर रूप कुमारी ने गुरुसेवक से उतरने के लिए आग्रह नहीं किया। एक बार शिष्टाचार के नाते कहा जरूर, पर जोर नहीं दिया और उमानाथ तो गुरुसेवक से मुखातिब भी न हुए। रूप कुमारी को आज वो घर कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे फूटा हुआ भाग्य हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले, दो चार टूटी टाटी तिपाहियां, एक लंगड़ी मेज, चार पांच पुरानी खाटें, बस यही उस घर की बिसात थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इसी घर में खुश थी, लेकिन अब ये घर उसे कांटे खा रहा था। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को छिड़क दिया। उसके सिर में दर्द है, वो किसी से न बोलेगी, उसे कोई न छेड़े। अभी घर में खाना भी नहीं पका, पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया है, किंतु उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इसी इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए तो पकाए, पर रूप कुमारी के सिर में दर्द है, मजबूर होकर बाजार से पूरियां लानी पड़ेंगी। रूप कुमारी ने तिरस्कार के स्वर में कहा,
2: तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? मैंने कोई खाना पकाने की नौकरी नहीं लिखा ली है, जो रात वहीं रह जाती तो? आखिर तुम कोई महाराजन क्यों नहीं रख लेते हो? क्या जिंदगी भर मुझको ही पीसते रहोगे?
1: उमानाथ ने उसकी तरफ आहत विस्मय की आंखों से देखा। उसके बिगड़ने का कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। रूप कुमारी से उन्होंने हमेशा निरापद सहयोग पाया है, निरापद ही नहीं, सहानुभूतिपूर्ण भी। उन्होंने कई बार उससे महाराजन रख लेने का प्रस्ताव खुद किया था, पर उसने बराबर यही जवाब दिया कि आखिर घर में बैठे बैठे करूंगी क्या, चार पांच रुपए खर्च बढ़ाने से फायदा ही क्या, ये पैसे तो बच्चों के मक्खन में खर्च होते हैं। और आज वही इतनी निर्ममता से उलाहना दे रही है जैसे गुस्से में भरी हो। अपनी सफाई देते हुए बोले, महाराजिन रखने के लिए तो मैंने खुद तुमसे कई बार कहा।
2: तो लाकर रख क्यों ना दिया? मैं उसे निकाल देती तो कहते।
1: हाँ, ये गलती तो हुई।
2: तुमने कभी सच्चे दिल से कहा ही नहीं, केवल मेरा मन लेने के लिए कहा। अरे मैं ऐसी भोली नहीं हूं कि तुम्हारे मन का रहस्य ना समझूं। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का विचार आया ही नहीं। तुम तो खुश थे कि अच्छी सेविका मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है, महज खाने और कपड़े पर, वो भी जब घर की जरूरतों से बचे तब। 75 रुपलियां लाकर मेरे हाथ में रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है किस तरीके से घर चलाती हूं, क्या पहनूं और क्या ओढूं। तुम्हारे साथ तो जिंदगी खराब हो गई। अरे संसार में ऐसे मर्द भी हैं जो स्त्री के लिए आसमान से तारे तोड़ लाते हैं। दूर क्यों जाते हो, गुरु सेवक को ही देखो। तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में भी तुमसे कम ही है, मगर 500 रुपए महीना लाता है और राम दुलारी रानी बनी बैठी रहती है। तुम्हारे लिए तो बस ये 75 रुपए ही बहुत हैं। जिंदगी नरक हो गई।
1: व्यंग्य बाणों का ये सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और उमानाथ चुपचाप सुनते रहे। अपनी जान में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कभी कोई मौका नहीं दिया। उनका वेतन कम है ये सत्य है, पर ये उनके बस की बात तो नहीं। वो दिल लगाकर अपना काम करते हैं। अगर गुरुसेवक वास्तव में 500 रुपए लाता है तो बेशक वो भाग्य का बली है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता ना। किसी संयोग से उसे ये अवसर मिल गया, मगर हरेक को तो ऐसे अवसर नहीं मिलते। वो इसका पता लगाएंगे कि सचमुच उसे 500 रुपए ही मिलते हैं या ये महज डींग है। और मान लिया कि 500 रुपए मिलते हैं तो क्या इससे रूप कुमारी को यह हक है कि वो उनको ताने दे, जलीकटी सुनाए? अगर इसी तरह वो भी रूप कुमारी से ज्यादा रूपवती और सुशीला रमणी को देखकर रूप कुमारी को कोसना शुरू कर दें तो कैसा हो? फिर भी उन्हें रूप कुमारी से सहानुभूति ही हुई। वो एक उदार प्रकृति के आदमी थे और कल्पनाशील भी। उसकी कटु बातों का कुछ जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन के ठाठ बाट देखकर एक क्षण के लिए रूप कुमारी के मन में ऐसे निराशाजनक, अन्यायपूर्ण, दुखद भावों का उठना बिल्कुल स्वाभाविक था। रूप कुमारी कोई सन्यासिनी नहीं, विरागिनी भी नहीं कि वो हर एक दशा में अविचलित रहे। एक सप्ताह तक रूप कुमारी मानसिक अशांति की दशा में रही, बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, पति को कोसती, अपने नसीब को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता, लेकिन अब इस काम में उसे आनंद ना आता, बेगार सी टालती रहती। बच्चे माँ से बोलते डरते थे, उमानाथ तो उसके साये से भी भागते। जो कुछ सामने थाली में आ जाता उसे पेट में डाल लेते और दफ्तर चले जाते। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरुसेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिनों के बाद परिस्थिति से सहयोग कर लिया था और इस वक्त झाड़न लिए कुर्सियां और तिपाहियां साफ कर रही थी कि अचानक गुरुसेवक ने अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल ही दिल में कट कर रह गई। उमानाथ पर ऐसा क्रोध आया कि उसका मुंह नोच ले। उन्हें लाकर यहां क्यों खड़ा कर दिया, न कहना न सुनना बस बुला लाए। उसे इस दशा में देखकर गुरुसेवक दिल में क्या कहता होगा, मगर इन्हें अक्ल आई ही कब थी। वो अपना पर्दा ढांपती फिरती है और ये इसे खोलते फिरते हैं। फिर भी आशीर्वाद देकर कुशल समाचार पूछा और कुर्सी रख दी। गुरुसेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है, मैं उनकी दावत पर तो ना आता, लेकिन जब उन्होंने कहा कि तुम्हारी भाभी की जिद है तो भाई मुझे समय निकालना पड़ा। रूप कुमारी ने भी बात बनाई और घर का कलह छिपा लिया। गुरुसेवक ने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाकर कहा, इस पिंजरे में तो आप लोगों को काफी तकलीफ होती होगी। कुछ चिढ़कर वो बोली, पिंजरे में? कटघरे में रहने से अच्छा है, पिंजरे में तो निरीह पक्षी रहते हैं। कटघरा तो घातक जंतुओं का ही निवास स्थान है। गुरुसेवक शायद ये संकेत न समझ सका, बोला, मेरा तो इस घर में दम घुट जाए। मैं आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान ठीक करा दूंगा, खूब लंबा चौड़ा, आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा। भाई मकान हमारी मालकिन का है, मैं भी उसी के एक मकान में रहता हूँ। सैकड़ों मकान है उनके पास, सैकड़ों, और सबके सब मेरे अख्तियार में हैं। जिसे जो मकान चाहूं दे दूं, किराया लूं ना लूं, भाई मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सा मकान ठीक करा दूंगा। वो क्या है ना कि मैं आपका बहुत अदब करता हूं। रूप कुमारी समझ गई कि महाशय इस वक्त नशे में हैं, अभी यूं बहक रहे हैं। अब उसने गौर से देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गई थीं, गाल कुछ फूल गए थे। उसे इस हालत में देखकर जैसे घृणा सी होती थी। उसने एक क्षण बाद फिर बहकना शुरू किया, मैं आपका बहुत अदब करता हूँ, आप मेरी बड़ी भाभी हैं, आपके लिए तो मेरी जान हाजिर है, आपके लिए एक मकान नहीं सौ सौ मकान तैयार हैं। मैं मिसेस लोहिया का मुख्तार हूँ भाभी, सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ, मैं जो कह दूं वो आंख बंद करके मंजूर कर लेती हैं। मुझे अपना बेटा समझती हैं, उनकी सारी जायदाद का मालिक मैं ही हूं। मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपए पर रखा, 20 रुपए पर, बड़ा मालदार आदमी था, मगर किसी को नहीं मालूम कि उसकी दौलत कहां से आती थी। बस मुझे पता था, पता है वो खुफिया फरोश था, वो नशीली चीजें बेचकर पैसे कमाता था, वही व्यापार मैं करता हूं। मजाल है कोई मुझे गिरफ्तार कर ले। अरे बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है, उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूंस ठूंस कर उनकी आवाज बंद कर देता हूं, कोई चू नहीं करता। दिन दहाड़े बेचता हूं सब। और हिसाब में लिखता हूं 1000 रिश्वत दी, देता हूं 500, बाकी यारों का मजे हैं। बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है, 70 चूहे खा के अब हज को चली है, कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं है भाभी। जेबों से नोटों का बंडल निकालकर वो उसकी चरणों की भेंट करता है और कहता है, मुझे दुआ दीजिए कि इसी शान से जिंदगी कट जाए। जो आत्मा और सदाचार के उपासक हैं उन्हें कुबेर लातें मारता है, लक्ष्मी तो उनको पकड़ती है जो उसके लिए अपना दीन और ईमान सब कुछ छोड़ने को तैयार है। मुझे बुरा ना कहिए, मैं कौन मालदार हूं, जितने धनी हैं वे सब के सब लुटेरे हैं,
2: पक्के लुटेरे, डाकू हैं डाकू। कल मेरे पास रुपए हो जाएं, तो मैं भी एक धर्मशाला बनवा दूं। फिर देखिए मेरी कितनी वाह वाह होती है। अरे कौन पूछता है कि मुझे दौलत कहां से मिली? जिस महात्मा को कहिए बुलाकर उससे प्रशंसा करवा लूं। मिस्टर लोहिया को महात्माओं ने धर्म भूषण की उपाधि दी। इन स्वार्थी पेट के बंदरों ने यह किया, उस बुढ़े को जिससे बड़ा कुकर्मी इस संसार में कोई नहीं था। तो भाई मैं भी वही करता हूं जो दूसरे करते हैं। जीवन का उद्देश्य है ऐसा करना। खूब लूटूंगा, खूब ऐश करूंगा। और बुढ़ापे में खूब खैरात करूंगा और एक दिन लीडर बन जाऊंगा भाभी। सहसा उमानाथ ने आकर कहा, मिस्टर गुरुसेवक क्या कर रहे हो? चाय पी लो, चाय ठंडी हो रही है। गुरुसेवक ऐसा हड़बड़ा उठा मानो अपने सचेत रहने का प्रमाण देना चाहता हो, मगर पांव लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ा। फिर संभल कर उठा और झूमता झूमता ठोकरें खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आजादी की सांस ली। वहीं बैठे बैठे उसे हॉल दिल सा हो रहा था। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी। जो प्रेरणाएं कई दिन से अच्छे अच्छे मनोहर रूप भरकर उसके मन में आ रही थीं, आज उसे उनका असली विभत्स और घिनावना रूप नजर आया। उसने सोचा वो अपने हाल में खुश है। राम दुलारी पर उसे दया आई, जो भोग विलास की धुन और अमीर कहलाने के मोह में अपनी आत्मा का सर्वनाश कर रही है। मगर वो बेचारी भी क्या करे, और गुरुसेवक का भी क्या दोष है? जिस समाज में दौलत पूजती है, जहां मनुष्य का मोल उसके बैंक अकाउंट और टीम टाम से आंका जाता है, जहां पग पग पर प्रलोभनों का जाल बिछा हुआ है और समाज में कुव्यवस्था, आदमी में ईर्ष्या, द्वेष, अपहरण और नीचता के भावों को उकसाती और उभारती रहती है, गुरुसेवक और राम दुलारी उस जाल में फंस जाएं, उस प्रवाह में बह जाएं, तो कोई अचरज नहीं है। उसी वक्त उमानाथ ने आकर कहा, ये गुरुसेवक यहां बैठा बैठा क्या कह रहा था? मैंने तो उसे विदा कर दिया। जी डरता था कहीं पुलिस उसके पीछे न लगी हो, नहीं तो मैं भी गेहूं के साथ घुन की तरह पिस जाऊं। रूप कुमारी ने क्षमा प्रार्थी नेत्रों से उन्हें देखकर जवाब दिया। वही अपनी खुफिया फरोशी की डिंग मार रहा था। अच्छा, मुझे भी मिसेस लोहिया से मिलने को कह गया? जी नहीं, आप अपनी क्लर्की किए जाइए, इसी में हमारा कल्याण है। मगर क्लर्की में वो ऐश कहाँ? क्यों ना साल भर की छुट्टी लेकर जरा उस दुनिया की भी सैर करूं? मुझे अब उस ऐश का मोह नहीं रहा। जी दिल से कहती हो? सच्चे दिल से। उमानाथ एक मिनट तक चुप रहने के बाद फिर बोले, सुनो, मैं आकर तुमसे ये वृत्तांत कहता तो तुम्हें विश्वास आता या नहीं? सच कहना। कभी नहीं, मैं तो कल्पना नहीं कर सकती थी कि अपने स्वार्थ के लिए कोई आदमी दुनिया को विष खिला सकता है। मुझे सारा हाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया था। मैं चाहता था वो अपने मुंह से तुमसे कहे, इसलिए नशे की हालत में उसे यहां ले आया। जानता था वो सब कुछ उगल देगा। ललचाता तो तुम्हारा भी जी था। हाँ, ललचाता तो था और अब भी ललच रहा है, मगर ऐश करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है वो कहां से लाऊंगा? ईश्वर ना करे वो हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आती है। मालूम नहीं खैरियत से घर पहुंच गया या नहीं। उसकी कार थी, कोई चिंता नहीं। रूप कुमारी एक क्षण जमीन की तरफ ताकती रही, फिर बोली, सुनो, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो। अभी शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। जिस बाग की वो सैर कर रही है उसके चारों ओर निशाचर घात लगाए बैठे हैं, शायद मैं उसे बचा सकूं। उमानाथ ने देखा रूप कुमारी की छवि कितनी दया पुलकित हो उठी है। तो श्रोताओं, ये थी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी दो बहनें। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।
1: इस कार्यक्रम के अगले अंक में एक नई कहानी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।
0: रेडियो आजाद हिंद से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो कहानी। हमारी इस प्रसारण सभा में आगे बहुत कुछ है खास आपके लिए। बने रहिए हमारे साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगा हर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: ये रेडियो आजाद हिंद है, आइए सुनते हैं काव्य नाटक कर्ण कुंती संवाद। इस बंगला नाटक का हिंदी अनुवाद डॉक्टर पापिया दास गुप्ता ने किया है। लीजिए, प्रस्तुत है नाटक कर्ण कुंती संवाद।

भगस्तवष्टा पूषार्कः सविता रविः गभस्तिमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः पृथ्वी व्यापश्च तेजश्च रवम वायुश्च परायण सोमो बृहस्पति शुक्रो बुधोऽङ्गधारक एव च इन्द्रो विवस्वान्दी दीपांशु च शुचि शौरि शनेश्चर ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कंदो वैष्णवो यम ओम आदित्याय नमः ओम सुः।

0: पुण्य जाह्नवी के किनारे। संध्या सूर्य की वंदना में लीन मैं अधिरथ सूत पुत्र, राधा है मेरी मां, कर्ण नाम है मेरा, तुम कौन हो देवी?
1: वत्स, मैं वही हूं जिसने सबसे पहले परिचय करवाया था विश्व से तुम्हारा। आई हूं त्याग सब लाज तुझे देने अपना परिचय आज।
0: देवी, तेरी नेत्र ज्योति से चित्त मेरा पिघल रहा, सूर्य किरण से पिघलती हिमशिला जैसे। तेरी वाणी जैसे पूर्व जन्म से बहकर आई हो, कानों में जगाने अपूर्व वेदना। कहो मुझसे, मेरा जन्म किस रहस्य डोर से बधा है तुम्हारे साथ, हे अपरिचिता?
1: धैर्य रखो वत्स, देव दिवाकर सूर्य को हो जाने दो अस्त, घिर आने दो संध्या तिमिर। मैं हूं कुंती।
0: कुंती? अर्जुन जननी?
1: हां, अर्जुन जननी। पर्वत, इस बात का द्वेष न रखो मन में, आज भी याद हो आता है वो दिन हस्तिनापुर में अस्त्र परीक्षण के लिए तुम आए, तरुण कुमार, धीरे धीरे रंगस्थली में, उषा काल में, नक्षत्रों से भरे आकाश में, नवोदित सूर्य की तरह। नेपथ्य में बैठी नारियों में कौन थी वो अभागिन निर्वाक, जिसके जर्जर वक्ष को अतृप्त स्नेह की सहस्त्र नागिन डस रही थी? किसके नैनों से बरसा था तुम्हारे लिए आशीष चुंबन? अर्जुन जननी ही थी वो। जब कृपाचार्य ने पूछा तुम्हारा पितृ परिचय, जब कहा उन्होंने जो राजकुल में जन्मा न हो उसे अधिकार नहीं अर्जुन से प्रतिस्पर्धा करने का, तुम खड़े रहे सर झुकाकर निरुत्तर। तुम्हारी लज्जा, तुम्हारी ग्लानी ने झुलसा दिया था हृदय जिसका, कौन थी वो अभागिन? अर्जुन जननी थी वो। पुत्र दुर्योधन धन्य है, उसी क्षण तुम्हें बनाया अंगराज। मेरी दोनों आंखों से बही थी अश्रुधारा, आंसुओं से किया था मैंने तुम्हारा राज्याभिषेक। अधिरथ आए आनंदित होकर तुमने राजवेश पहन राज्याभिषेक का तिलक मस्तक पर धारण किए सर झुकाया था उनके चरणों में। पिता कहा था उन्हें, पांडव और उनके हितैषी हंस रहे थे, कर रहे थे व्यंग। उस क्षण गर्व से भरकर तुम्हें आशीर्वाद दिया था जिसने परम वीर कहकर, मैं हूं वही अर्जुन जननी।
0: राजमाता, मैं हूं कुरु सेनापति, तुम्हें प्रणाम, परंतु इस रणभूमि में अकेली थी।
1: पुत्र, भिक्षा मांगने आई हूं, मुझे विफल न लौटाना।
0: भिक्षा मेरे पास? धर्म और पौरुष को छोड़ और जो भी मांगो अर्पण करूंगा तुम्हारे चरणों।
1: तुझे लेने आई हूं।
0: कहां ले जाना चाहती हो?
1: प्यासे हृदय के बीच, माँ की गोद में।

0: न जाए बाहुबल से, वो तो दैवी धन है।
1: उसी दैवी धन का अधिकार लिए इसी गोद में आया था तू एक दिन, उसी अधिकार के लिए सगौरव वापस आ जा। आ, निसंकोच हो, सब भाइयों के बीच माता की गोद में बना ले अपना स्थान।
0: स्वप्न लोक से आती तुम्हारी वाणी, अंधेरा छा रहा है चारों ओर, ओझल हो रहा है चतुर्दिक, निःशब्द बहती भगीरथी, मुझे तुम ले चली किस माया लोक में, विस्मृति के पार, चेतना की भोर में, उषा काल में, मेरे मन को मुग्ध सम्मोहित करती वाणी तेरी, कोई पुराना, बहुत पुराना सच जैसे हो रहा है उद्घाटित, अस्फुट शैशव मेरा मात्र गर्भ के निश्छिद्र अंधेरे में है घिर रहा। राजमाता, स्वप्न हो तुम या सत्य हो, आओ स्नेही, अपना दक्षिण हस्त रखो मेरे मस्तक ललाट पर, रखो क्षण भर। सुना है लोगों से मात्र परित्यक्त हूं मैं, कितनी बार देखा है सपना, माता आई है मेरे पास धीरे धीरे मुझे देखने, रोकर कहा है उनसे गुंठन खोलो, देख लेने दो मुझे मुख तुम्हारा, उसी क्षण खो जाती थी मां मेरे सपनों को छिन्न भिन्न कर, आज क्या वही स्वप्न, पांडव जननी का रूप धर आया इस संध्या काल रणक्षेत्र में भागीरथी तट पर। देखो देवी, उस पार पांडव शिविर में जल उठी है दीपमाला, इस पार कौरव शिविर अश्व पदचाप से हो रहा मुखरित, कल प्रातः प्रारंभ होगा महारण।

0: आज रात अर्जुन जननी के कंठ से क्यों सुना मैंने अपनी माता का स्नेह स्वर, उनके मुख में मेरा नाम संगीत लहर सा क्यों गूंजा, मेरा मन अचानक क्यों बहा पांडवों की ओर भाई कहकर।
1: आ आ बस आ।
0: हाँ चला आऊंगा मैं, कुछ ना सोचूंगा, कुछ ना कहूंगा, कोई संशय कोई चिंता नहीं, तुम हो मेरी माता, तुम्हारी पुकार ने जगाया है मेरी अंतरात्मा को, मेरे कान ना सुने युद्ध भेरी, जय शंख ध्वनि, आज मिथ्या प्रतीत होता है सब, रण हिंसा वीर ख्याति जय पराजय, चलो कहां ले चलना है मुझे, ले चलो।
1: उस पार के रेतीले तट पर जहां जल रहे हैं दीप, उस पार वहां
0: वहां मिलेगी क्या मां मातृहीन को चिरदिन, वहां तुम्हारी आंखें क्या जागती रहेंगी मेरे संग रात भर ध्रुव तारे की तरह, देवी कहो एक बार फिर मैं हूं पुत्र तेरा,
1: पुत्र मेरे,
0: फिर क्यों छोड़ दिया था मुझे दूर, क्यों कुलहीन मानहीन मात्र नेत्रहीन अंधाज्ञात इस विश्व विशाल में, क्यों अब अज्ञात स्रोत में पहाया था मुझे, क्यों दिया था निर्वासन भाइयों से दूर, क्यों कर रखा था विच्छिन्न अर्जुन को मेरे से, तभी तो शैशव से ही दोनों खिंचे चले जा रहे हैं अदृश्य हिंसा के तीव्र आकर्षण से, माता क्यों हो निरुत्तर, तुम्हारी लज्जा इस अंधकार को भेद कर मुझे स्पर्श कर रही है, आंखें मूंद रही है मेरी,
1: मैं
0: रहने दो रहने दो मां, मत कहो क्यों त्यागा था मुझे, भाग्य का सर्वप्रथम दान है मात्र स्नेह, क्यों चुराया था वही धन अपनी ही संतान से, मत कहो तुम, केवल इतना कहो माता, आज क्यों आई हो मुझे लौट कर ले जाने के लिए अपनी गोद में, क्यों।
1: हे वत्स, तेरा धिक्कार शत वज्र समान मेरे हृदय को मथ रहा है, खंडित कर रहा है हजारों खंडों में, तुझे त्यागा था उसी अभिशाप से पांच पुत्रों की जननी में, मेरा हृदय पुत्रहीन, हाथ पसारे घूमू मैं पूरे विश्व में तुझे ही ढूंढते हुए, उसी वंचित पुत्र के लिए मेरा हृदय प्रतिपल जल रहा है, अपने आप को कर स्वाहा आरती करती रहती हूं विश्वदेव की, आज मैं भाग्यवती हूं तुझसे मिली हूं, वाकहीन शिशु के प्रति कठोर अपराध किया था मैंने, वत्स क्षमा करो मुझे, क्षमा की आग से निर्मल कर दो मेरे पश्चाताप करते हृदय को।
0: माता पांव छू लेने दो मुझे, छू लेने दो, अश्रु से धुल जाएंगे,
1: तुझे हृदय से लगाने की आस से केवल नहीं आई हूं यहां वत्स, तुझे ले जाने आई हूं तेरे अपने अधिकार के स्थान पर, सूत पुत्र नहीं हो तुम, राजा की संतान हो, दूर कर दो ये सारे अपमान, सारे अपमानों से दूर आ वत्स, अपने पांच भाइयों के बीच आ।
0: नहीं माता, सूत पुत्र हूं मैं, राधा है मेरी माता, इससे अधिक गौरव और क्या है मेरे लिए, पांडव पांडव ही रहें, कौरव कौरव, मैं किसी से न जलूं।
1: अपने बाहुबल से संभालो वत्स राज अपना। युधिष्ठिर झेलेंगे श्वेत पंख, भीम होंगे छत्रधारी, अर्जुन तेरे सारथी होंगे, वेद मंत्रों का पाठ होगा। तुम रहना अखंड प्रताप से बंधुओं के बीच शत्रुजीत बन रत्न सिंहासन पर।
0: सिंहासन? जिसने लौटाया मात्र स्नेह, उसे तुम देती राज्य का प्रलोभन? जिस संपदा से तुमने मुझे किया था वंचित, वो वापस करना अब तेरे लिए संभव कहां? मेरी माता, मेरे भ्राता, मेरा राजकुल उसी जन्म क्षण में ही तुमने किया था निर्मूल।
1: पुत्र, एक बार मां कहकर पुकारो।
0: सूत जननी को छल कर आज यदि राजमाता को मां पुकारूं, कौरवों के साथ जिस बंधन में बंधा हूं उसे अगर तोड़कर राज सिंहासन को स्वीकारूं तो धिक्कार है मुझे माता।
1: वीर पुत्र मेरे, धन्य हो। हाय धर्म, क्या ही कठोर दंड है ये तेरा। त्यागा था जिस शिशु को मैंने, वही आज इतना बलवान है कि माता की गोद में आई संतान की निर्मम हत्या करे वो, अस्त्राघात कर छीन ले पुत्र को मुझसे। हाय, ये किसका अभिशाप है?
0: ठहरो, बताओ तुम क्या चाहती हो? दुर्योधन का पक्ष न छोड़ते हुए मैं तुम्हारे लिए क्या करूं?
1: मेरे पांच पुत्रों को अभय दो, मुझे बस इतना दान दो।
0: दिया, कर्ण तुम्हें देता है अभय। युद्ध में अर्जुन के सिवा नहीं करूंगा किसी का वध। अगर अर्जुन मारा गया तो मेरे समेत तेरे पांच पुत्र जीवित रहेंगे, और अगर मारा गया मैं तो तेरे पांच पुत्र ज्यों के त्यों जीवित रहेंगे। अगर मेरी मृत्यु की नींव पर ही पांडवों का जीवन टिक सकता है तो नींव का पत्थर बनना मैं स्वीकार करता हूं। समय ही करेगा ये निर्णय कि तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ पुत्र कौन है।
1: धन्य हो वत्स, निश्चय ही तुम सर्वश्रेष्ठ हो। कर्ण, एक बार मेरी बाहों में आ जा, एक बार, बस एक बार मां कहो मुझे।
0: नहीं, ये अधिकार केवल राधा माता को है। मां, माता, मां, अपने अपने इस कर्ण को कर दो क्षमा। आज तुम्हारा प्रथम पुत्र तुम्हें पुत्र रूप में पहली बार वंदन करता है। मां, कदाचित अंतिम भी।
1: उठो उठो वत्स।
0: माता, हो निर्भय, विजयी होंगे पांडव। आज इस अंधेरे में नक्षत्रों के बीच आकाश लोक में दिखा मुझे युद्ध फल। इस शांत क्षण में अनंत से आती ध्वनि पराजय के संगीत की, भाषाविहीन युद्ध, परिणामहीन, हारे हुए पक्ष को त्यागने मत बोल मां, मत बुला मुझे। पांडव जयी हो, राजा हो, मैं हूं निष्फल हताशों की टोली में। जन्म की रात जैसे त्यागा था नामहीन ग्रहहीन शिशु को, आज भी त्यागो मुझे वैसे ही निर्मम होकर माता, दीप्तिहीन कीर्तिहीन पराजय के प्रांगण में केवल यही आशीर्वाद दे जाओ मुझे माता, जय लोभ से यश लोभ से और राज्य लोभ से परे वीरों की सदगति प्राप्त हो मुझे।

0: अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित काव्य नाटक कर्ण कुंती संवाद का हिंदी रूपांतरण। रूपांतरण किया डॉक्टर पापियादास गुप्ता ने और पात्रों को प्रस्तुत कर रहे थे पापियादास गुप्ता और आलोक चटर्जी। संकलन और ध्वनि मुद्रण अमित कुंदानी का रहा। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार आदाब, मैं हूँ पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने आजादी के।

गुनगुने आजादी के इस कार्यक्रम में आज आपके साथ थी मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब इजाजत दें इस कार्यक्रम से मुझे, नमस्कार। आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती, भारत भारती

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम भारत भारती। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित रोनू मजूमदार का बांसुरी वादन।

ताल में ट्रेडिशनल बंदिश बहुत सुंदर है, काफ़ी लोगों ने गाया बहुत पुराने समय से। अब कैसे बने मोरी बात सजनी।

0: भारत भारती कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पंडित रोनू मजुमदार का बांसुरी वादन। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अनुमति दें अपनी रेडियो दोस्त सुनीता सिंह को नमस्कार। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती भारत

नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: शुभ संध्या। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सांध्यकालीन प्रसारण सेवा लेकर मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो मित्र डॉक्टर रानी रैकवार भारती। शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक रहेगा अब आपका और हमारा साथ। आप हमारा प्रसारण ऑनलाइन लाइव ब्रॉडकास्ट सुन सकते हैं मिक्सलर ऐप पर, रेडियो गार्डन पर, पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पर, एप्पल पॉडकास्ट पर, अमेजॉन पॉडकास्ट और साथ ही यूट्यूब पॉडकास्ट पर भी। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सांध्यकालीन प्रसारण सेवा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी हम आपको दे दें। बस कुछ ही देर में सुनेंगे कार्यक्रम आप अक्षय निधि, जिसमें आप मंडल 2 के सूक्त 26 का वाचन सुनेंगे। भगवत आराधना के भक्तिमय संगीत स्वर सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत में 5:10 पर। वतन का राग कार्यक्रम पेश किया जाएगा शाम 6 बजे, भिकाजी रुस्तम जी कामा पर आधारित है। बाल सभा पौराणिक कथाओं का महत्व पर आप सुनेंगे कार्यक्रम 6:30 पर। हमारी सेना हमारा गर्व, नेवी और एयरफोर्स की कार्यप्रणाली पर आप भाग 4 सुन सकते हैं 7 बजे शाम को। 7:30 पर सुनिए हमारा विशेष कार्यक्रम कविता कृष्णमूर्ति पर आधारित है। देश के संस्थान कार्यक्रम में आप सुनेंगे भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड पर आधारित कार्यक्रम 8 बजे। 8:30 पर सुनिए कार्यक्रम आजाद हिंद प्रीतिलता वाद्यदार की शहादत पर आधारित है। 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद के भाग 53 का प्रसारण। तो ये थी हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सेवा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए, अपने रेडियो मित्र डॉक्टर रानी रैकवार भारती के साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। वेद, पुराण, आख्यान, ये हमारी भारतीय संस्कृति की विरासत हैं, धरोहर हैं, और इसी पर आधारित है हमारा विशेष कार्यक्रम अक्षय निधि। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 26 से वाचन। ऋषि हैं ग्रत्समत एवं भार्गव शौनक, देवता ब्रह्मणस्पति, छंद जगती।
1: ऋजु ऋच्छंसो वनवद वनुष्यतो देवयन निदेवयन्तमभ्यसत् सुप्रावीरिद् वनवत्पृत्सु दुष्टरं यजवेद यज्योर्वि भजाति भोजनम्। ब्रह्मणस्पतिदेव की स्तुति करने वाले सज्जन स्तोता ही देवगणों का पूजन करते हैं तथा देवगणों को न मानने वालों एवं हिंसकों का संहार करते हैं। उत्तम संरक्षण प्रदान करने वाले वे ब्रह्मणस्पति देव युद्ध में दुर्धर्ष शत्रुओं को मारते हैं। याज्ञिक ही यज्ञ न करने वाले व्यक्तियों के ऐश्वर्य का उपभोग करते हैं। यजस्व वीर प्रविहि मनायतो भद्रम मनः कृष्पुष्व वृततूर्ये हविष्कृष्णुष्व सुभगो यथा ससि ब्रह्मणस्पतेरेव आवृणी महे। हे मनुष्यो, यज्ञ के द्वारा अहंकारी शत्रुओं का विनाश करो। विघ्नों को नष्ट करने के लिए मंगलमय विचारों से जुड़कर ब्रह्मणस्पति देव के संरक्षण की कामना से हविष्यान्न तैयार करो जिससे सौभाग्यशाली बन सको। स इज्जनेन स विषा स जन्मना स पुत्रैर्वाजम भरते धना नृभिः देवानां यः पितर माविवासति श्रद्धा मना हविषा ब्रह्मणस्पतिम्। जो याजक श्रद्धा भावना से देवों के पालन करता ब्रह्मणस्पति देव को हव्य समर्पित करता है वह व्यक्तियों द्वारा समाज द्वारा तथा संतति द्वारा ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है और मनुष्य मात्र का सहयोग पाता है। यो अस्मै हव्यैर् घृत वद्भिर् विधत्प्र तं प्राचा नयति ब्रह्मणस्पतिः उरुष्यति महसो रक्षति रिंशो होशिश्च दस्मा उरु चक्रिरद्भुतः। जो याजक यज्ञ में ब्रह्मणस्पति देव के निमित्त घृतयुक्त हव्य से आहुतियां समर्पित करता है उसे ब्रह्मणस्पति देव उत्तम संरक्षण प्रदान करते हैं, पाप से बचाते हैं, दारिद्र्य आदि कष्ट से रक्षा करते हैं और देवत्व के मार्ग में बढ़ाते हुए अद्भुत महान बना देते हैं।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 26 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिंब त्रिपाठी।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ये मेरा इंडिया। देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं कहने को, फिर भी हम कह रहे हैं कि हम हैं लल्लन जी। अरे लापता गंजे वाले, पीडब्ल्यूडी में काम करते, पीडब्ल्यूडी में कौन ऐसे वैसे आदमी नहीं बता दे रहे। हाँ नहीं तो, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के प्रसारण के साथ। मैं हूं आपकी रेडियो मित्र भारती। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम भक्ति संगीत सुनने का। भगवत आराधना के सुमधुर स्वर सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत में। एक समय में सभी को खुश रखने का प्रयास मत कीजिए। जो काम हाथ में है केवल उसके ऊपर लक्ष्य रखिए, बाकी सब समय के हाथ में छोड़ दीजिए।

फूलों की खुशबू हवा के विपरीत दिशा में नहीं फैलती, लेकिन सद्गुणों की कीर्ति दसों दिशाओं में फैलती रहती है।

श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर विश्वास, जो तमाम विपत्तियों से घिर जाने पर भी विचलित नहीं होता, वही सच्चा श्रद्धावान है।

हमारी वजह से कोई रोए तो हम व्यर्थ हैं, हमारे लिए कोई रोए तो समझ लो हमारे जीवन का बहुत अर्थ है।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम वतन का राग।

ये घटना 18 अगस्त 1907 की है। जर्मनी में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में एक ऐसी भारतीय महिला को भी आमंत्रित किया गया जिसने स्वयं को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित कर दिया था, और वो महिला थी भिकाई कस्तम कामा, जिनका परिचय सभा मंच से देते हुए सम्मेलन के नेता जीन गौरस ने उन्हें हम सफर प्रतिनिधि कहकर ससम्मान बुलाया, और ये सुनकर वे आवेश और उत्तेजना से इतनी भर गईं कि उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उसे भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक ध्वज स्वरूप बड़े गर्व से वहां लहरा दिया। सारा पंडाल तालियों से गूंज उठा और आवाज आई, भारतवासियों उठो और अत्याचार के विरुद्ध सीना तान कर खड़े हो जाओ। ये छोटी सी कहानी है तिरंगे के जन्म की।

कामा बंबई के संपन्न पारसी परिवार में 24 सितंबर 1861 को पैदा हुई। उनके पिता ने उन्हें पश्चिमी सभ्यता के संस्कारों के अनुरूप लालन पालन की व्यवस्था की, लेकिन इसके विपरीत बुद्धिमान जन्मजात प्रतिभा संपन्न और संवेदनशील इस तरुणी से भारतवासियों के साथ अंग्रेज हुकूमत के अत्याचार, शोषण और उनकी दयनीय दशा देखी नहीं गई। ये वो जमाना था जब स्त्रियों का घर से बाहर निकलना काबिले एतराज हुआ करता था, जबकि कामा तो बड़े घर की बेटी थी और वे समाज सेवा करना चाहती थी। फिर भी घर के कड़े विरोध के बावजूद वे स्वयं को रोक नहीं पाई और अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए जी जान से जुट गईं। सन 1885 में एक अधिवेशन में नेताओं के ओजस्वी भाषणों और अपील से वे बड़ी प्रभावित हुईं और तभी से एक सक्रिय निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में समाज सेवा के लिए मैदान में कूद पड़ी। जात पात धर्म संप्रदाय के भेदभाव से परे उन्होंने ही सबसे पहले महिलाओं को संगठित किया, महिला संस्थाओं की स्थापना की और समाज कल्याण और राजनीतिक दोनों ही क्षेत्रों में सक्रिय रहते हुए नारी उत्थान और देश प्रेम के प्रति उन्हें प्रेरित किया। भीकाजी कामा के क्रांतिकारी विचारों और ब्रिटिश हुकूमत विरोधी गतिविधियों से तंग आकर उनके पिता ने सन 1885 में उनका विवाह रुस्तम जी कामा से करा दिया, जिससे कि वे अपने घर परिवार को संभालें और बाहरी गतिविधियों से दूर हो जाएं। लेकिन अपने पक्के इरादे के कारण ये विवाह उनकी राजनीतिक गतिविधियों में कोई रुकावट नहीं बन सका। वे अक्सर कहती थीं कि मेरा विवाह तो मेरे ध्येय के साथ हो चुका है। उनकी इसी जिद के चलते उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय नहीं रहा। इसी दौरान जब वे अस्वस्थ हुई तो उनके पति ने उन्हें इलाज के लिए इंग्लैंड भेज दिया, ताकि देश से बाहर जाकर वे राजनीति से दूर हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके पहले कि वे स्वस्थ होकर भारत लौटती, उनकी भेंट प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी श्याम वर्मा से हुई और उन्होंने भारत लौटने के बजाय इंग्लैंड में ही रहते हुए वहां भारत की आजादी के लिए संग्राम छेड़ दिया। श्याम वर्मा के साथ वे हाइड पार्क में खड़े होकर अपने ओजस्वी भाषणों से आजादी का नारा बुलंद करने लगी। इससे इंडिया ऑफिस के अधिकारी उनसे क्रुद्ध हो गए और उन्होंने कामा को इंग्लैंड से निष्कासित कर देने की धमकी दी।

0: आखिरकार कामा इंग्लिश चैनल के रास्ते इंग्लैंड छोड़कर फ्रांस जा पहुंची और पेरिस को अपनी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना दिया। पेरिस में उनका आवास क्रांतिकारियों का मुख्य अड्डा बन गया। यहाँ भारत, फ्रांस और रूस के सभी भूमिगत क्रांतिकारी शरण लेते थे। ब्रिटिश अधिकारियों ने उनकी गतिविधियों से घबराकर उनके भारत प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया और इस कारण वे करीब 35 सालों तक फ्रांस में रहीं। अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें फ्रांस सरकार से पाने की कई बार कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। 35 वर्षों तक भारत से निष्कासित रहते हुए भी वे निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती रहीं और अपनी गतिविधियों को जारी रखा। इस निर्भीक महिला में अपनी वृद्धावस्था में स्वदेश लौटने की इच्छा और उत्कंठा ऐसी बलवती हुई कि उन्हें ब्रिटिश सरकार को राजनीति में हिस्सा न लेने का वादा करना पड़ा। अंग्रेज अधिकारियों ने ये मानते हुए कि अब ये कमजोर महिला यहाँ कुछ कर भी नहीं सकेगी, कामा को भारत आने की अनुमति दे दी। बम्बई पहुंचने पर उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर सीधे अस्पताल पहुंचाया गया और वहां पर 8 माह के बाद 13 अगस्त 1936 को उनका निधन हो गया। उनकी भारत लौटने की इच्छा का उद्देश्य मातृभूमि की गोद पाना था। आज जब भी हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा लहराता है, इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की याद ताजा हो जाती है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: यह है रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz और आप ध्रुव संगारी बिलाल चिश्ती को इस पे सुन रहे हैं। रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz देश का चैनल देश के लिए।
1: ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है 90.8 MHz पर देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा।
2: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है बच्चों के लिए पौराणिक कथाओं का महत्व।
3: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी, हाजिर हूं लेकर आपके लिए आपका फेवरेट कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में हम बात करते हैं कि आजकल आपके साथ साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और उस दिन को, उस सप्ताह को, उस महीने को और आपकी जीवन के हर दिन को कैसे सुंदर बनाया जाए, क्या बातें की जाएं जिससे आपका जीवन उस खूबसूरत फुलवारी की तरह महकने लगे जहाँ तरह तरह के फूल होते हैं। और बच्चों जब हम फुलवारी की बात करते हैं तब हम बात करते हैं कि जहाँ फूल होते हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ फूल नहीं होते, कुछ कांटे भी होते हैं, कुछ बड़े बड़े पौधे वृक्ष भी होते हैं और कुछ नन्ही नन्ही सी भी हम देखते हैं क्यारी में पत्तियाँ उगाती हैं, है ना। एक तरफ बड़ी बड़ी लताएँ दीवार छूने को तैयार रहती हैं और दूसरी तरफ छोटी छोटी सी घास होती है जिसके ऊपर से हम सब चलकर जाते हैं। फुलवारी और जीवन एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे है जैसे जब हम आईने में खुद का चेहरा देखते हैं ना, तो हम देखते हैं कि अरे मैं ऐसा दिखता हूँ। तो बस जीवन में आपका जीवन बिल्कुल फुलवारी की तरह है। कभी जैसे बहुत तेज बारिश आ जाती है तो कुछ छोटे पौधे एकदम झुक जाते हैं और कुछ तने खड़े रहते हैं, है ना। तो जीवन में भी ऐसा ही है, तरह तरह की बातें हैं, अच्छे दोस्त हैं, कई गलत सलाह देने वाले भी हैं बच्चों। ऐसे ही फुलवारी की तरह कुछ बहुत खूबसूरत फूलों जैसे दिन हैं और कुछ कांटे की तरह भी दिन हैं, है ना। जब आपको वो चुभने वाले कांटों की तरह कोई दिन लगता है ना, जैसे कोई एग्जाम अच्छा नहीं गया, कोई छोटी सी भी ऐसी बात हो गई, मान लीजिए कि आपकी किसी अच्छे दोस्त से कुट्टी हो गई, कुट्टी तो समझते होंगे, है ना, मतलब थोड़ी बहस हो गई, थोड़ी नाराजगी हो गई और आप दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की, तब भी तो आपको अच्छा नहीं लगता। तो उन सब दिनों में ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो हमको संभाले रखती हैं? बच्चों सबसे अच्छी चीज पता है क्या है इन सब दिनों में? सबसे अच्छी बात होती है आपके भीतर का धैर्य, आपकी समझदारी, आपकी अनुशासन प्रियता, आपकी शालीनता, आपकी भाषा, आपका बात करने का तरीका। ये अच्छे से अच्छे दिनों को और अच्छा बना देता है और इनफैक्ट बुरे दिनों को भी थोड़ा बेहतर बना देता है। अब लेकिन ये सब हम सीखें कैसे? उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम अच्छी कहानियाँ पढ़ें, अपने बुजुर्गों के साथ बैठें, उनसे उनके अच्छे बुरे दिनों के जीवन के अनुभव लें, है ना। और बच्चों एक और चीज़ होती है बहुत हमारी संस्कृति में, आपने भी सुना होगा, दादी नानियाँ अक्सर कभी राम की कहानियाँ सुनाती हैं, कभी कृष्ण की सुनाती हैं, कभी बहुत पौराणिक कथाएँ हमें सुनने को मिलती हैं जब हम जाते हैं कहीं बुजुर्गों के बीच बैठते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ बैठते हैं। तो वो कहानी, वो कथाएँ क्यों सुनाई जाती हैं, कभी सोचा है आपने? कुछ बच्चे तो बहुत ध्यान से सुनते हैं, है ना, और कुछ बच्चे एकदम से ऐसे हो जाते हैं कि अरे बोरियत हो रही है। पर नहीं बच्चों, आपको ऐसी कहानी, ऐसी कथाएं ज़रूर सुननी है क्योंकि यही वो कहानियां और यही वो कथाएं हैं जो आपको कठिन दिनों में भी संबल देती हैं और बेहतर चरित्र और बेहतर नागरिक बनने की दिशा में भी ये कहानी, ये कथाएँ बहुत बड़ा काम करती हैं, बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। तो चलिए आज हम चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जहाँ मिट्टी की खुशबू भी है, गायों की घंटियाँ भी हैं, जमुना का किनारा है, गोकुल की गलियाँ हैं, दोस्तों की टोली है और एक नन्हा सा बालक है जिसकी शरारतों से पूरा गोकुल महकता और चहकता रहता है। तो उसी पर अपना प्यार भी लुटाता है और उसी पे नाराजगी भी जताता है। अब आपको याद आ गया होगा कि पिछली बाल सभा में हमने श्री कृष्ण जी की कुछ बाल लीलाओं की बात की थी, उनकी शरारतों की, उनकी चंचलता की, उनके बचपन से जुड़े कुछ रोचक प्रसंग हमने आपको बताए थे। फिर से आज वहीं लौट रहे हैं और आज की बाल सभा में केवल कहानियाँ नहीं होंगी, हम कहानियों को डीकोड भी करेंगे बच्चों, है ना, क्योंकि हर कहानी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो बच्चों के बाल मन को समझ में नहीं आता लेकिन समझाना पड़ता है। तो चलिए, कंस अपने दानवी दांव चल ही रहे थे, अब क्या होता है आगे बताती हूँ। कंस ने कृष्ण को समाप्त करने के अपने प्रयास जारी रखे। इस काम के लिए उसने विकट दानवी दांव का प्रयोग किया। वत्सासुर नामक छली दानव एक बछड़े का रूप धारण करके कृष्ण बलराम के बछड़ों में जा मिला। कृष्ण ने बलराम के कान में कहा, दाऊ, वो बछड़ा तो हमारा नहीं, लेकिन ये बछड़ा हम पर घात क्यों लगा रहा है? कृष्ण ने अकस्मात ही उस बछड़े को पिछली टांगों से पकड़कर इस प्रकार फेंका कि वो एक कटीले तने वाले पेड़ से टकराकर नीचे आ गया और निष्प्राण हो गया। पूतना का भाई वकासुर भी बदला लेने एक विशाल बगुला बनकर आया और उसने कृष्ण को अपनी चोंच में पकड़कर उठा लिया। कृष्ण तुरंत अपने शरीर का ताप बढ़ाकर आग का गोला बन गए। बगुले ने कृष्ण को चोंच से छोड़ दिया तो उन्होंने उसकी चोंच चीर कर उसे यमलोक भेजा। तो बच्चों, ये जो कहानी थी, अब अगर कोई बच्चा आप में से ये कहे कि दीदी आपने कहा था आप कहानी को डीकोड करेंगी, तो बताइए इस कहानी को डीकोड करके कि हम इसके क्या अर्थ समझें। इस कहानी का अर्थ मैं एक और कहानी आपको सुनाऊंगी, फिर बताऊंगी। कंस लगातार चालें चल रहे थे और एक ना एक असुर को, एक ना एक दानव को भेज रहे थे। वृंदावन में आने वाला अगला दानव था व्योमासुर। बच्चों, वो एक चरवाहे बालक का वेश धारण करके आया। तब कृष्ण तथा उनके साथियों ने चरवाहे और भेड़ चोर नामक खेल खेल रहे थे। दो दर्जन ग्वाले भेड़ बन गए थे, साथ उनके चरवाहे और संयोगवश व्योमासुर को भेड़ चोर बनाया गया था। खेल खेल में कई भेड़ बने ग्वालों तथा कुछ चरवाहे बालकों को चुरा कर वो दूर एक गुफा में कैद कराया। उसने कई बार ऐसा किया तो कृष्ण ने देखा कि उनके साथी ग्वाले चरवाहे गायब हो रहे हैं, केवल 5-6 ही बचे हैं। अंतिम बार कृष्ण ने उनका पीछा किया और उसके दानवी खेल का रहस्य जान गए। कृष्ण ने व्योमासुर को ललकारा, तब दानव ने असली रूप में आकर कृष्ण पर आक्रमण किया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और कृष्ण ने एक शक्तिशाली वार कर दानव की जीवन लीला को समाप्त कर दिया और अपने साथियों को गुफा के कैद से मुक्त करा लिया। सभी गोप और मित्र कृष्ण का पराक्रम देखकर दंग रह गए, है ना बच्चों। अव्योमासुर की मृत्यु का प्रतिशोध भी लेना था, तो उसी दिन उसका भ्राता अघासुर भी आ पहुंचा। वो एक विशाल अजगर के रूप में आया और पगडंडी पर बैठ गया, जिस पर से ग्वाले चरवाहे अपने पशुओं के साथ आया जाया करते थे। उसने अपना आकार इतना बढ़ा लिया कि उसका मुंह एक गुफा मार्ग जैसा लगने लगा। ग्वाले सकरी घाटी समझकर उसके मुंह में अपने साथ साथ बछड़े और भेड़ बकरियों को भी ले गए। कृष्ण ने पीछे से चिल्लाकर चेतावनी दी, परंतु ग्वाले चरवाहे उनकी बात नहीं सुन पाए। तब कृष्ण वहां दौड़कर पहुंचे और अघासुर के मुंह में कूद गए और अपना शरीर इतना बढ़ाया कि अघासुर ने अपना मुंह बंद करना चाहा, तब भी बंद नहीं कर पाया। अब क्या हुआ कि जब कृष्ण अपने शरीर को बढ़ाते गए तो अजगर की सांस रुक गई और एक बार पुनः अघासुर भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो बच्चों, जो सबसे बड़ी बात है वो आती है अब इन कथाओं को डीकोड करने की, है ना। तो बताऊं आपको या आप लोग खुद ही समझ गए हैं इस कहानी को? अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको लग रहा है कि आज के जीवन में इस कहानी को हम कैसे इसे प्रासंगिक माने, क्योंकि आज असुर दानव ये तो देखने को नहीं मिलते। तो चलिए अब कृष्ण की इस लीला को थोड़ा सा डीकोड करते हैं। अब देखिए, कंस लगातार दानव भेज रहा है, कृष्ण लगातार उनको मृत्यु के दरवाजे तक ले जा रहे हैं। इस बात में छुपी है एक बात बच्चों, कि लगातार आपके साथ कोई बुराई करना चाहे तब भी आप चाहो तो उसको परास्त कर सकते हो, लेकिन उसके पीछे आपको क्या चाहिए, आपका फोकस चाहिए कि नहीं चाहिए। उनके दोस्त गुफा समझकर अंदर चले गए, लेकिन कृष्ण को समझ में आ गया कि यहाँ कोई चाल है। और कृष्ण ने क्या किया, अपना शरीर बढ़ाकर उस राक्षस के शरीर में जा घुसे और अपने शरीर को इतना विराट रूप में दिखाया कि उसकी सांस लेना मुश्किल हो गया। अब दूसरी बात बच्चों ये है कि जब हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे इस कहानी में आपने सुना कि कैसे सारी भेड़ें गायब हो रही हैं, लौट नहीं रही हैं, है ना, कृष्ण को अचानक याद आया कि ये तो कोई चाल है। अब आपके साथ, मेरे साथ, हम सबके साथ ऐसा कभी कुछ हो ही सकता है कि हम ये दिमाग लगाएं कि जो सामान्य नहीं है

कोई भी डेली रूटीन की कोई भी बात जो आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, वो अपने माता पिता को ज़रूर बताएं, है ना। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि माता पिता को धरती पर ईश्वर ने आपकी रक्षा, आपका ध्यान, आपकी हर बात सुनने के लिए भेजा है। बच्चों, कहते हैं ना, धरती पे भगवान रोज दिखे ना दिखे, लेकिन माता पिता का रूप भगवान का ही रूप होता है। इसलिए पहले तो उनका बहुत सम्मान कीजिए और फिर दूसरी बात, उनसे कुछ मत छुपाइए। एक बार की बात है, जब द्रौपदी चीरहरण के वक्त कहती हैं, ये मैंने एक प्रसंग सुना था एक कथा में, बड़ा अच्छा प्रसंग है बच्चों, आपको बता रही हूँ क्योंकि ये भी कृष्ण जी से ही जुड़ा प्रसंग है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि द्रौपदी कह रही हैं कि कृष्ण, जब ये सब कुछ हो रहा था तब तुम कहाँ थे? तब कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जब दुर्योधन ने ये ऐलान किया कि पासा मेरा मामा फेंकेगा, तब तुम्हारे पति

0: फायदा। और फिर आप चलिए कुछ हो भी गया बच्चों तो उसका भी हल है, लेकिन पहले अगर बता देते हैं कोई भी बात तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, इसी बाल सभा में हमने उन बच्चों से भी आपकी बात कराई थी जो बच्चों को नशे की लत लग गई थी, याद आ रहा है आपको? ऐसे भी बच्चे स्टूडियो में आए थे, लेकिन उनके जीवन में वो घटना घट चुकी थी। पर अब जब बाल सभा से आप ऐसी बातें सुन रहे हैं, बाल सभा में हम लोग आपके लिए ऐसे प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं, ऐसी बातें आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो आपको पहले ही मार्गदर्शन दे सकती हैं, तब हमें क्या करना है? तब हमें इन बातों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसी बाल सभा में एक बच्चे ने आपको बताया था कि नशे के कारण उसका एक दोस्त अंत में इस जीवन से चला गया। वो बच गया क्योंकि उसको कुछ बहुत अच्छी दीदियां मिल गई, उसके माता पिता ने उसका साथ दिया। लेकिन अब जब हम ये बात सुन रहे हैं बच्चों, तब हम ये बात जान सकते हैं कि नहीं, हमें उस रास्ते पे जाना ही नहीं है। अगर आपका कोई दोस्त, अगर आपका कोई रिश्तेदार आपसे बड़े भाई की तरह या कुछ आपको गलत संगत में लाना चाह रहा है या कोई गलत बात सिखा रहा है, तब वहीं हमको इस बात का ध्यान रखना है कि ये बात सामान्य नहीं है, ये बात असामान्य है। तो सबसे पहले किसे बताना है? अपने माता पिता को। यही है कहानी को आज जो डिकोड किया मैंने आपके लिए वो। और याद रखिए बच्चों, कई बार लोग जो कहते हैं ना वो बहुत सही बात कहते हैं कि कुछ बच्चे ये सुनकर सीख जाते हैं कि बिजली में करंट आता है उसे हाथ नहीं लगाना, लेकिन कुछ बच्चे करंट खाकर सीखते हैं कि इस तार में करंट है। हमें तार क्यों छूना बच्चों? जब हमें पता है कि वहां पर करंट है तो हमें उसे क्यों छूना है? क्योंकि अगर छू लिया हो सकता है कि वो करंट हल्का हो, आपका हाथ झनझन आ जाए, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो बहुत तीव्र करंट हो और आप बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाएं। तो हमें क्यों नहीं माननी अच्छी बातें? क्यों हमें सब कुछ करके ही उसके अंजाम को देखकर ही मानना है कि ये चीज गलत है? कई बार अपने बड़ों की बातें बच्चों मान लेनी चाहिए। अब आगे की कहानी सुनाऊं आपको? अब क्या होता है कि कृष्ण, बलराम और पूरा गोपदल वन में लुका छिपी के अतिरिक्त और भी कई तरह के खेल खेलते थे। रोज नए नए खेल सुझाए और खेले जाते थे। पक्षियों, दूसरे जीवों पर कीटों की बोलियों की नकल उतारना सबको भाता था। जंगली जीवों के नन्हे बच्चों की तरह फुदकना, कुलाचे भरना, कूदना, फांदना, सब कुछ बहुत अच्छे से इन बच्चों को भाता था। एक बार वन में आग भड़क गई। लपटों ने घास और पेड़ पौधों को लीलना आरंभ कर दिया। जंगली जीवों और चरगाहों में चरते पालतू पक्षियों का जीवन भी खतरे में पड़ गया। गोपो ने कृष्ण से कुछ उपाय करने की गुहार लगाई तो कृष्ण ने उन्हें आंख बंद करने के लिए कहा। जब उन्होंने आंख बंद कर ली तब श्री कृष्ण ने मुंह द्वारा एक लंबी सांस भरी और सारी लपटें अपने भीतर खींच ली। जब गोपो ने अपनी आंख खोली तो अग्नि का कहीं नामो निशान न पाकर घोर आश्चर्य से दांतों तले उंगलियां दबा ली और प्रशंसा भाव से अपने सखा कृष्ण की ओर देखने लगे। अच्छी है ना ये कहानी? इसके बाद की कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी, अपनी दादी नानी, मामा मौसी, किसी ना किसी से जरूर सुनी होगी कि वृंदावन के निकट यमुना नदी के पानी में एक दैत्याकार काला नाग रहता था जिसके एक सौर लहराते हुए फन थे और उसका नाम था कालिया। वो अपना घातक विष पानी में घोलता और जो भी पशु वो पानी पीता तुरंत मर जाता। तत्पश्चात कालिया उन्हें खा जाता। मृत्यु के भय के कारण कोई वहां का जल पी नहीं पा रहा था। यमुना जी के इस इलाके पर कालिया का एक छत्र राज्य था। एक दिन कृष्ण ने कालिया को सबक सिखाने का निर्णय ले लिया। कृष्ण अपने गोप सखाओं को खेलने के लिए नदी तट पर ले गए। जब उनकी गेंद पानी में गिरी तो उसे लाने के लिए कृष्ण पानी में कूद पड़े। क्रोध से फुफकारते कालिया ने कृष्ण को अपनी लपेट में ले लिया और लगा कुंडली कसने। उत्तर में कृष्ण ने अपना शरीर फुलाना आरंभ किया। उनके शरीर का फुलाव इतना शक्तिशाली था कि कालिया की हड्डियां चटकने और टूटने लगीं। कालिया ने तुरंत कुंडली खोल दी। जब आशंका में डूबे नंद बाबा, यशोदा और दूसरे लोग तट की ओर दौड़े तो उन्होंने बालक कृष्ण को पराजित कालिया के फन पर बांसुरी बजाते और नृत्य करते पाया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब बच्चों, इन दो कहानियों को डीकोड करने से पहले मुझे लगता है हमको तीसरी कहानी भी सुन लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी कहानी है। गोवर्धन पूजा होती है कई लोगों के, सुना होगा आपने, है ना। दीपावली के दूसरे दिन वर्षा के देवता इंद्र की पूजा की परंपरा थी, ताकि समय पर बरसात हो। कृष्ण ने लोगों से कहा, इंद्र की पूजा करने के स्थान पर क्यों ना गायों की पूजा की जाए जो हमें दूध देती हैं, अथवा क्यों ना गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाए जो हमारे पशुओं के लिए घास उगाता है। लोगों ने कृष्ण की बात मान ली और इंद्र की पूजा उस दिन ना करके किसकी की, पर्वत की। इंद्र ने कुपित होकर मूसलाधार बारिश आरंभ कर दी। जल थल एक हो गया, चारों ओर त्राही त्राही मच गई। कृष्ण सभी को पशुधन सहित गोवर्धन की तलहटी पर ले गए और गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर धारण करके खड़े हो गए। वृंदावन वासियों एवं उनके पशुओं ने उसके नीचे आश्रय ले लिया। सात दिन पानी बरसा, कृष्ण उसी मुद्रा में खड़े रहे। अंत में इंद्र ने पराजय स्वीकार की और कृष्ण से क्षमा याचना की। तभी से दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की प्रथा आरंभ हुई। अब इन तीन कहानियों को ना एक साथ डीकोड करते हैं बच्चों। पहली कहानी क्या थी, याद आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा, मैं याद दिलाऊं। एक कहानी तो थी कालिया नाग की, उससे पहली कहानी थी जब जंगल जल रहे थे तब उनके दोस्तों ने कहा कि ये तो बड़ा खराब है कि सारे कीट पतंगे सब जल जाएंगे। अब इस कहानी को हम डीकोड करते हैं। तीनों कहानियां प्रकृति के करीब की कहानियां हैं। ये तीनों कहानियां हमसे कहती हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमें इंसानों का साथ नहीं देना है, कभी कभी हमें अपनी नजर उस तरफ भी दौड़ानी है जो खुद बोल नहीं सकते, जैसे पौधे, जैसे पेड़, जैसे कीट पतंगों की भाषा। चिड़िया चहकती तो रोज है, लेकिन कितने लोग समझ पाते हैं कि वो आपके दरवाजे पर आकर क्या बोल रही है? कुछ लोग तो गर्मी में उसके लिए कटोरे में, सकोरे में पानी रख देते हैं क्या, लेकिन सब लोग रखते हैं? नहीं। कृष्ण की तरह ये लीला हम तो नहीं कर सकते कि हम पूरी आग को लील कर उस आग को एक चुटकी में समाप्त कर दें, लेकिन हम इस कहानी से बच्चों सीख लेकर ये जरूर कर सकते हैं कि जब भी कभी जंगलों में जाएं या उसके आसपास जाएं, तो कोई भी ऐसा सामान जो आग को बढ़ावा दे सकता है, ज्वलनशील पदार्थ जिन्हें बोलते हैं, उनसे बचें। ठीक। दूसरी चीज बच्चों, गोधन। इसमें एक शब्द आया ना, गोधन, गाय जो हमें दूध देती हैं। हाँ, हमारा कितना सारा अन्न हमें खेती से मिलता है, कृषि से मिलता है, क्यों ना हम अपने खेतों की, उस पर्वत की जहाँ घास है और जिसे पशु खाते हैं। कितनी बड़ी बात है, मतलब प्रकृति की सुरक्षा का संदेश देती है ये कहानियाँ। अब आसान भाषा में आपको समझ आया कि गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठा लिया, ये भी कृष्ण की लीला है, लेकिन इसके पीछे छुपी हुई वो बात है जो हम सबको करनी है। क्या? आसपास पहले तो देखिए कि आपकी हरियाली हो। दूसरी बात, आपके आसपास अगर आप कहीं गए हैं, पर्वत श्रृंखला है कोई, अगर आप ऐसी जगह कहीं गए हैं जहां प्रकृति के खूबसूरत नजारे हैं, तो वो बने रहें। इसके लिए प्रकृति का संरक्षण बहुत जरूरी है बच्चों। जैसे कई बार मैंने देखा है लोग नदी के तट पर जाते हैं और खूब सारी कचरा गंदगी छोड़ कर आते हैं। क्यों? क्यों? यही तो ये कहानियां सिखा रही हमको कि प्रकृति का संरक्षण, संवर्धन और उनका स्वास्थ्य। अब आप कहोगे नदी का भी कोई स्वास्थ्य होता है? मैं कहूंगी हाँ, बिल्कुल होता है। नदी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ये पूरे मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कौन है? नर्मदा नदी। अब हम उसको कैसे संरक्षित और सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं बच्चों? सबसे पहली बात, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना के बराबर कीजिए, क्योंकि जो प्लास्टिक नदियों में जाती है वो जलीय जीव को नुकसान पहुंचाती है, उनका जीवन खतरे में पड़ता है। और आप देख रहे हैं कृष्ण जी कैसे अपनी गायों को बचाने के लिए क्या क्या कर जाते हैं, कीट पतंगों के लिए पूरी आग को अपने मुंह में ले लेते हैं। तो क्यों नहीं हम छोटे छोटे से बच्चे जो हमें सुन रहे हैं वो ये प्रयास करें कि अब की बार जब कहीं जाएंगे तो ये चिप्स के पैकेट्स, ये प्लास्टिक की बॉटल, ये सब कचरा जो भी आपके कारण वहां हो रहा है उसे वापस अपने साथ लेकर आएंगे, है ना? लेके आएंगे कि नहीं? अगर आप लेकर आएंगे तो नदी थोड़ा सा अच्छी अच्छी लहर उठाकर आपको थैंक यू बोलेगी। तो चलिए अब समय आ गया है कि हम संकल्प ले लें। तो एक बार पुनः अपनी आंखें बंद कर लीजिए, शांति की मुद्रा में बैठ जाइए, दिमाग को बिल्कुल शांत कर लीजिए। जो ख्याल आपके मन में बच्चों आ रहे हैं उसे आने दीजिए, बस शांत रहिए। आज की जो कहानियां हमने सुनी हैं उनको सुनकर हमारा पहला संकल्प है कि हम कभी भी कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होंगे। हमारा दूसरा संकल्प है हम स्वयं के साथ साथ बेजुबान जीवों का भी ख्याल रखेंगे और उन्हें नुकसान नहीं होने देंगे। तीसरी बात, यदि हमें कुछ भी अपनी जिंदगी में असामान्य लग रहा है, सबसे पहले अपने माता पिता को बताएंगे। और अब आज का आखिरी संकल्प, प्रकृति की रक्षा, प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति का स्वास्थ्य, इन सब का ख्याल हम बच्चों को जरूर रखना है, क्योंकि प्रकृति की जिम्मेदारी में ही समझदारी है। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को रगड़िए, धीरे से आंख पे लगाइए और बच्चों बहुत धीमे से आंखें खोल लीजिए। अब जब आंखें खोल ली हैं तो मुझे बहुत प्यार से जाने की अनुमति दीजिए, क्योंकि आज की बाल सभा में हमने जो बातें की हैं वो बातें यही थी कि पौराणिक कथाएं जो हमारे घर में हमारे दादी बाबा, नाना नानी, मम्मी पापा सुनाते हैं, उन सब कथाओं का, उन सब कहानियों का कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर होता है। तो उनको न सिर्फ सुनना है बल्कि समझ में नहीं आ रहा है तो मम्मी पापा से उसको डिकोड भी करवाना है। अब चलो, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बहुत सारे बच्चों के, तो प्लीज़ बहुत मेहनत से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है? चलती हूँ, अगली बाल सभा में फिर कुछ अच्छी बातें करने के लिए लौटूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम और मैं थी आपके साथ आपकी मित्र मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: बाल सभा।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
4: ये मेरा इंडिया।
3: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

यह है रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज और आप ध्रुव संगारी बिलाल चिश्ती को इस पे सुन रहे हैं। रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज, देश का चैनल, देश के लिए।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। भारतीय सेना की आन बान और शान पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत है, हमारी सेना हमारा गर्व।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
2: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, सेवानिवृत्त। कर्नल भामा ने लगभग 2 दशकों से अधिक समय तक भारतीय थल सेना में अपनी सेवाएं प्रदान की, जिसमें उन्होंने राजस्थान से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक भारत की सीमा पर महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में योगदान दिया। इंडियन आर्मी में आपकी कमिश्निंग, वर्ष 1988 में इन्फेंट्री ऑफिसर के तौर पर 6वीं बटालियन मद्रास रेजिमेंट में हुई। आपने सियाचिन ग्लेशियर, करगिल, सिक्किम, पंजाब, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में कई महत्वपूर्ण काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस क्रियान्वित किए। भारतीय थलसेना से सेवानिवृत्ति के पश्चात आपने कुछ समय तक डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर भी कार्य किया। आप डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के अलावा भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद के पूर्व छात्र रहे हैं। कर्नल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद अदिति।
2: अगर हम बात करें तो दो अन्य मुख्य सशस्त्र सेनाएं भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जल सेना है और वायु सेना है। तो इंडियन आर्मी के अलावा अगर आप हमें बता सकें इंडियन नेवी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस तरह का रहता है और एयरफोर्स का किस तरह का रहता है।
3: ओके अदिति, हम इंडियन नेवी के बारे में बात करते हैं।
2: जी,
3: वदित है कि हमारे पास जो कोस्टल लाइन है
2: जी,
3: 7500 किलोमीटर की हमारी कोस्टल लाइन है।
2: कर्नल साहब, ये वो 15000 किलोमीटर की जो आपने सीमा बताई थी वो आपने लैंड बॉर्डर की बात की, और अब आप जल की बात कर रहे हैं।
3: हमारा देश तीन तरफ से जो है जल से घिरा हुआ है,
2: पेनिनसुला है,
3: पेनिनसुला है। और इसके अलावा हमारे देश में, जैसे आपको मालूम है कि बे ऑफ बंगाल में तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर मेन लैंड से 572 आइलैंड्स का एक ग्रुप है, जिसको हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहते हैं। 572, मतलब छोटे मोटे नहीं होते, काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं। इसी तरह से हमारे जो अरेबियन सी में जो है तकरीबन 300 से 400 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप आइलैंड्स का 36 आइलैंड्स का ग्रुप है। तो अगर आप इन सबको देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि इन सब की सुरक्षा
2: भी बहुत महत्वपूर्ण है और जटिल है।
3: और जटिल है
2: जी,
3: इसकी इनकी सुरक्षा करना बहुत ही जटिल कार्य है। और हमारे पास 7500 किलोमीटर की कोस्टल लाइन के अलावा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जिसपे कि हमारे देश का अधिकार होता है, उसके उसको कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है सी में।
2: तो
3: और जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो 97% ऑफ जो ट्रेड होता है हमारे देश का व्यापार है वो सी रूट से होता है।
2: करण साहब, मैं बस एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूँगी कि क्या इकोनॉमिक जोन, जिसके बारे में आपने भी बात की, उसकी रक्षा का दायित्व भी इंडियन नेवी का रहता है?
3: हाँ जी, बिल्कुल रहता है, क्योंकि जिस चीज़ पे भी हमारा हक है तो उसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना जो है
2: हमारी जिम्मेदारी,
3: हमारी जिम्मेवारी होती जी। है तो दूसरा ये है कि जैसे मैंने भी बोला कि 97% ऑफ हमारा जो ट्रेड है वो सी रूट से होता है। तो ये जो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, स्लॉक जो है, इसकी देखभाल करना, इसकी सुरक्षा करना जो है, ये भी नेवी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। इंडिया में हमारे पास जो है 12 मेजर पोर्ट्स हैं और तकरीबन 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, मतलब बड़े पोर्ट्स हैं। और इन पोर्ट्स में जो है हमारा 95% जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, जो हमारी देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। नेवी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देश की सुरक्षा, सी की तरफ से आने वाले किसी भी बाहरी हमले से अपने देश की सुरक्षा करे, अपना जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसकी देखभाल करे, सुरक्षा करे, जो हमारे पोर्ट्स हैं और जो हमारा ट्रेड है वो स्मूथली काम कर सकें, ये एक उनकी बहुत बड़ी
2: यानी इंडियन नेवी जो है वो सैन्य सुरक्षा के अलावा आर्थिक सुरक्षा करने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान करती है।
3: बिल्कुल योगदान करती है, बिल्कुल करती है। और हमारी जो नेवी है वो इसको हम बोलते हैं कि इट्स अ थ्री डायमेंशनल फोर्स। थ्री डायमेंशनल फोर्स कैसे होती है कि आपने देखा होगा नेवी जो है उसके पास अपने एयरक्राफ्ट हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, देश को हवाई सुरक्षा भी देते हैं, उसके अलावा शिप सरफेस के ऊपर जो है शिप्स चलते हैं सी में, और सबमरीन्स होती हैं जो कि अंडर वाटर भी ऑपरेट करती हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो थ्री डायमेंशनल जो है प्रोटेक्शन फोर्स है। नेवल हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है, इनका जो नेतृत्व करते हैं उनको चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कहा जाता है, वो भी जनरल साहब के रैंक के बराबर हुए रहते हैं। और नेवी की तीन जो है कमांड्स हैं,
2: जैसे आर्मी की आपने बताई थी सात हैं, इस तरह से नेवी की तीन हैं।
3: नेवी की तीन कमांड हैं, तो एक वेस्टर्न नेवल कमांड है
2: जी,
3: और एक ईस्टर्न नेवल कमांड है। ये जो दोनों कमांड हैं ये ऑपरेशनल कमांड कहलाती हैं। वेस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर मुंबई में है और ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। तो जैसे आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल साहब कमांड को का नेतृत्व करते हैं, इसमें जो है वाइस एडमिरल जो है वो इसको हेड करते हैं। और तीसरी जो इनकी कमांड है वो है सदर्न नेवल कमांड है, जो कि ट्रेनिंग कमांड है, वो कोची में इसका हेडक्वार्टर है। और बेसिकली जितना भी ट्रेनिंग का इनके इंस्टीट्यूट हैं, जो भी इनका ट्रेनिंग का कार्य है, मतलब रिक्रूटमेंट लेके ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लेके, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेनिंग कमांड की रहती है। जो नेवी है, जिस तरह से हमने बात करी थी कमांड के अंडर में कोर होती हैं, ठीक है, इसी तरह से नेवी में देखा जाए तो फ्लीट्स होती हैं। तो अच्छा। दोनों जो फ्लीट्स हैं, वेस्टर्न फ्लीट और जो है वो मुंबई में बेस्ड है, और ईस्टर्न फ्लीट जो है वो वहीं विशाखापट्टनम में बेस्ड है। फ्लीट क्या होता है, जब मैं बोल रहा हूँ फ्लीट, जो शिप्स होती है ना
2: जी,
3: उसका एक ग्रुप होता है।
2: अच्छा।
3: जो एक अथॉरिटी के अंडर में काम कर रहा होता है उसको हम फ्लीट बोलते हैं
2: जी।
3: तो ये जो फ्लीट्स हैं इसके अंडर में देन उसके नीचे क्या है, फ्लोटिला बोलते हैं, ठीक है, वो आती हैं, जो कि मतलब अगेन सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं, जैसे हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके नीचे फिर छोटी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, ताकि आप जैसे हमने आर्मी में देखा था कि कमांड है, कोर है, कोर के नीचे डिवीजन है, तो ऐसे ऐसे से मतलब जो है नीचे फ्लोटिलास होती हैं, ये जो होते हैं अगेन ग्रुप ऑफ शिप्स होती हैं, और ये अलग अलग जगह पे जो है बेस्ड होती हैं, जैसे पोर्ट ब्लेयर में है, उसके बाद जो है विशाखापट्टनम में है, ताकि उनको एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल क्लियर कट डिवाइड हो सके। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का द्वीप समूह है
2: जी,
3: उसका जो कमांड एंड कंट्रोल है या उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक ट्राई सर्विस कमांड होती है
2: जी।
3: ट्राई सर्विस कमांड का मतलब तीनों जो आर्मी नेवी एयरफोर्स हैं तीनों मिलके जो हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को देखती हैं।
2: अच्छा, इनका संयुक्त जिम्मेदारी रहती है।
3: ये हमारे देश में एक कमांड है जो कि तीनों मिलके देखते हैं।
2: जाहिर सी बात है क्योंकि आपने बताया 572 आइलैंड्स का समूह है
3: जी,
2: तो
3: उसमें हमें तीनों चीजें चाहिए होती हैं। उसमें हमें आर्मी भी चाहिए देखभाल करने के लिए, नेवी भी चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, और हमें एयरफोर्स भी चाहिए। तो इसमें जो है तीनों जो होती हैं, तीनों मिलके जो है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की देखभाल करते हैं। इसको हम अंडमान एंड निकोबार कमांड बोलते हैं।
2: आपने हमें बताया कि तीन कमांड रहती है, ईस्टर्न कमांड और वेस्टर्न कमांड, और एक ट्रेनिंग कमांड जो रहती है, ये इससे इतर है कि ये इसी में सम्मिलित है?
3: बिल्कुल इससे अलग है, ये इससे अलग है। तीन तो जो कोस्ट लाइन को देखती है मेन लाइन, जिसमें से कि दो मतलब देख रही हैं, एक दो ऑपरेशनल कमांड है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कमांड जो देख रही हैं, और इसके अलावा जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक अलग कमांड है,
2: और क्योंकि इसमें तीनों का संयुक्त
3: योगदान है। तो उनके जो कमांडर होते हैं, जो कमांड को जो लीड करते हैं, वो भी तीनों में बारी बारी से बनते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड का जो है वो वेस्टर्न फ्लीट है, वही उसकी देखभाल करता है। लक्षद्वीप आइलैंड थोड़ा छोटा है, 36 आइलैंड्स का ग्रुप है, वेरस वो 572 है, तो काफी बड़ा है, तो उसके लिए जो है इस तरह से जरूरत पड़ती है। एक तरह से हमारी जो नेवल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि देश की पूरी सी की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है करते हैं।
2: कर्नल साहब, एक छोटा सा प्रश्न है, आपने बताया था कि आर्मी में सबसे जो छोटी इकाई होती है वो सेक्शन होती है, इसी तरह से नेवी में कौन सी इकाई होती है जो सबसे छोटी मानी जा सकती
3: होती है?
2: शिप।
3: अब शिप में, लेकिन शिप अलग अलग होती है, शिप बहुत बड़ी भी होती है। INS विक्रांत वो तो मतलब अपने आप में शहर है पूरा का पूरा।
2: जी पूरी बड़ी रोचक जानकारी है, इसीलिए मैंने पूछा था जी।
3: और जो उससे भी छोटे से छोटे शिप भी होते हैं जो कि बहुत फास्ट मूविंग शिप्स होते हैं
2: जी।
3: इकाई के नाम पे जैसे हम इन्फेंट्री से डायरेक्टली इसको एप्पल टू एप्पल कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन शिप को आप कह सकते हैं कि होता है। नेवी में जो है शिप का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि इनकी जो शिप्स होती हैं वो बहुत अलग अलग रोल के लिए अलग अलग तरह की शिप्स होती हैं। अगर हम उसमें जाएंगे तो वो काफी ज्यादा डिटेल्स हैं। अलग अलग तरह की शिप्स होती हैं कि वेट्स के हिसाब से होता है, उनकी रिस्पांसिबिलिटी के हिसाब से, उसमें जो गन्स लगी होती हैं, उनकी फायर पावर होती है, उनकी स्पीड होती है, उसके हिसाब से जो है उनका क्लासिफिकेशन होते हैं, तो वो बहुत ही अलग अलग होता है।
2: तीन सशस्त्र सेनाएं जो हैं उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत भले एक सा हो सकता है, लेकिन जहाँ ऑपरेशनल स्ट्रक्चर की बात आती है, ऑपरेशंस की बात आती है, वो किस तरह का संचालन करते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें बहुत मतलब पर्टिकुलर हो जाती हैं, कस्टमाइज हो जाती हैं। नेवी का अपनी तरह का काम करने का तरीका रहता है, आर्मी का अपना रहता है, फोर्स का अपना संगठन और अपना वो रहता है। जैसा कि आपने बताया शिप होती है इनकी सबसे छोटी इकाई, जिसको हम आर्मी से नहीं मिला सकते, आपने कहा कि डिट्टो वैसा का वैसा कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। आगे की कड़ी में हम ज़रूर पूछना चाहेंगे कि एयरफोर्स का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस तरह का रहता है।
3: ये तीनों जो अंग हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स, चाहे इनकी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन जो इनका इंटीग्रेशन है
2: जी,
3: वो बहुत ही स्ट्रांग है
2: जी।
3: जैसे हमारी काफ़ी एक्सरसाइजेस होती हैं जो हम लोग मिलके करते हैं, एम्फीबियस एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें नेवी के साथ आर्मी जाती है, एयरफोर्स के साथ हम एक्सरसाइजेस करते हैं, तो इसमें ये एक ऐसी बात होती है कि जैसे हमारा जो इंटीग्रेशन होता है, आपस में जो तालमेल है, कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि एक के बगैर दूसरा काम नहीं कर सकता है,
2: जाहिर सी बात है।
3: तो ये जो है इस ऑर्गेनाइजेशन की खासियत है। जो बेस है हमारा स्टार्टिंग है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, वही तीनों के तीनों अंगों के जो ऑफिसर्स को ट्रेन करता है। उसके बाद जैसे जो है डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज आता है, उसमें भी जो है तीनों अंगों के ऑफिसर्स आते हैं, एक साथ ट्रेनिंग करते हैं। अदिति, जो इंडियन एयरफोर्स है, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे देश को और उसकी एयरस्पेस को किसी भी एयर थ्रेट से बचाना
2: जी,
3: उसका डिफेंस करना। एयरफोर्स जो है इसके अलावा जो भी हमारे ऑपरेशंस इंडियन आर्मी करती है उसमें पूरा सपोर्ट देते हैं, और साथ में इनके पास जो है स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल एयरलिफ्ट कैपेबिलिटीज होती हैं, मतलब इनके पास एयरक्राफ्ट होते हैं जिससे कि ये हमारी सेना को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में पहुंचाने में मदद भी करते हैं
2: जी।
3: इनका सेकेंडरी टास्क जो होता है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को किसी भी आपदा में, नेचुरल कैलामिटीज में, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस में हेल्प करना। जैसे आपने देखा होगा फ्लड में जो है हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएशन होता है, और उसके अलावा जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, किसी तरह से अगर कोई और नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उसमें हेल्प करते हैं। जो इंडियन एयरफोर्स है, ये इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें 7 कमांड हैं, जिसमें से कि 5 ऑपरेशनल कमांड है और 2 फंक्शनल कमांड है। इनका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और जो इनकी कमांड होती हैं, जो उसको एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ विद रैंक ऑफ एयर मार्शल जो है वो कमांड करते हैं। जैसे कि वेस्टर्न कमांड जो है वो न्यू दिल्ली में है, सेंट्रल कमांड जो है वो इलाहाबाद में है, साउथ वेस्टर्न कमांड गांधीनगर में है, और ईस्टर्न एयर कमांड जो है शिलोंग में है, साथ ही सदर्न एयर कमांड जो है इसकी लोकेशन ट्रिवेंड्रम में है। 2 जो फंक्शनल कमांड है, जो कि ट्रेनिंग कमांड बैंगलोर में लोकेटेड है और मेंटेनेंस कमांड नागपुर में है। जो कमांड होती है इनके अंतर्गत जो है विंग्स आते हैं, जो कि जनरली एयर कमांडर कमांड करते हैं, और विंग्स के अंतर्गत जो है स्क्वाड्रन्स आती हैं। हर स्क्वाड्रन जो है इसमें तकरीबन 18 एयरक्राफ्ट होते हैं, और इनको जो है कमांड करते हैं विंग कमांडर्स कमांड करते हैं, और स्क्वाड्रन्स जो होते हैं सब डिवाइडेड होते हैं फ्लाइट्स में, और फ्लाइट्स जो होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं सेक्शंस में। ये मोटे तौर पे मतलब जो है एयरफोर्स की ऑर्गेनाइजेशन है। हर सेक्शन में जो है 3 एयरक्राफ्ट होते हैं, और ये एक तरह से जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इंडियन एयरफोर्स में, और इसको जो है लीड करते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट लीड करते हैं। इंडियन एयरफोर्स के जो ब्रांचेस हैं वो फ्लाइंग ब्रांच, जिसमें कि फ्लाइंग के लिए रहते हैं, टेक्निकल ब्रांच, और ग्राउंड ब्रांच होती है। ग्राउंड ब्रांच में बेसिकली जो लॉजिस्टिक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंट्स, एजुकेशन, मेडिकल और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स आते हैं। टेक्निकल ब्रांच में इंजीनियरिंग के जो लोग होते हैं वो आते हैं।
2: कई देशों से भारतीय नागरिकों को बचाने में भी भारतीय वायुसेना का बड़ा योगदान रहा है।
3: बिल्कुल, अभी यूक्रेन से भी जो बच्चों को लेकर आए गए थे उसमें भी उनका योगदान रहा था। तो ये जो है इस तरह से जो है काफ़ी सपोर्ट इनका रहता है। और इवन जब पीस टाइम में भी अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को जब जरूरत पड़ती है, फ्लड रिलीफ ऑपरेशन ये लोग कैरी आउट करते हैं, नेचुरल कैलामिटीज में भी पूरा सपोर्ट इनका रहता है। इनकी अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो एयरफोर्स का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में स्थित है और इनको जो है हेड करते हैं एयर चीफ मार्शल हेड करते हैं, जो कि 4-star रैंकिंग जनरल के बराबर उनका रैंक होता है, सेम रहता है। और इनके 5 ऑपरेशनल और 2 फंक्शनल कमांड्स हैं।
2: अच्छा,
3: 5 ऑपरेशनल, जैसे हमने आर्मी में देखे थे कमांड्स
2: 7 थे और नेवी में 3 थे।
3: जी, तो वैसे ही 5 इनके पास जो है ऑपरेशनल कमांड है एंड 2 इनके पास जो है फंक्शनल कमांड्स है। अब हर जो कमांड होती है उसको एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, जिनका रैंक एयर मार्शल होता है, वो कमांड करते हैं। इनका जो पर्पस होता है ऑपरेशनल कमांड का, ये क्या करते हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस कैरी आउट करते हैं यूजिंग एयरक्राफ्ट जो इनकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो जो कमांड्स हैं अगर हम देखें तो वेस्टर्न कमांड जो है वो न्यू दिल्ली में है
2: जी,
3: सेंट्रल कमांड जो है वो इलाहाबाद में है
2: जी,
3: साउथ वेस्टर्न कमांड जो है ये गांधीनगर में है, ईस्टर्न एयर कमांड शिलोंग में लोकेटेड है, सदर्न एयर कमांड वो ट्रिवेंड्रम में है
2: जी,
3: तिरुवनंतपुरम में। इसके अलावा इनके पास 2 कमांड और हैं जिनको हम ट्रेनिंग कमांड और मेंटेनेंस कमांड का नाम देते हैं।
2: मेंटेनेंस कमांड सिर्फ एयरफोर्स के पास है, क्योंकि मेंटेनेंस का जिक्र आपने जल सेना और थल सेना में नहीं किया।
3: इसका कारण है कि जो एयरक्राफ्ट हैं उनको आप एक स्पेसिफिक लोकेशन पर ले जाके मेंटेनेंस करना उनका काफी इजी रहता है, बजाय इसके कि आप उसको उनके रिसोर्स को जगह जगह वो करें। दूसरा क्या है, मेंटेनेंस कमांड का ये मतलब नहीं कि एक ही जगह पे है, मतलब उनके जो रिसोर्सेस हैं वो एक चैनल है कमांड कंट्रोल करने का।
2: अच्छा।
3: अब जैसे एक एयरबेस है तो उसमें मेंटेनेंस के लिए एक विंग होता है
2: जी,
3: लेकिन वो विंग जो है उसकी जो जरूरतें हैं वो सब पूरी करने के लिए एक कमांड है
2: जी।
3: अब उसका रीजन भी आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर आप एक एयरक्राफ्ट देखते हैं उसके जो स्पेयर पार्ट्स भी होते हैं और उसमें जो जरूरत होते हैं वो काफी कॉस्टली होते हैं
2: जी,
3: तो उनके लिए जो है काफी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। अब कमांड का जैसे आपने इसी में डायरेक्शनल उसमें देखा है वेस्टर्न कमांड सेंट्रल कमांड, तो हर एक का जो एरिया है इनका एक ग्रिड है। ग्रिड इन द सेंस क्या होता है कि पूरा का पूरा जो कंट्री है उसको ये लोग कवर करते हैं।
2: आपने जैसे आर्मी में टेरेन की बात की थी, इस तरह से इनका ग्रिड है।
3: देखिए ग्रिड तो आर्मी में ग्राउंड पे भी बनाना पड़ता है, क्योंकि आपको एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करनी पड़ती है कि इस लोकेशन से इस लोकेशन तक जो है, इसी तरह से एयर में होता है उनका भी जो है। एक्चुअली स्पीकिंग वो ग्राउंड पे ही, लैंडमार्क तो ग्राउंड पे ही होते हैं
2: जी,
3: ठीक है, जिससे कि डिफाइन होता है कि इस एरिया से इस एरिया तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन क्या है, एयर में ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं, वेरस आर्मी में जैसे 7 कमांड है, 6 ऑपरेशनल कमांड है, तो ये एक थोड़ा सा फर्क आता है। एंड इनकी कैपेबिलिटी, क्योंकि इनका फास्ट मोबिलिटी है, अगर एक तिरुवनंतपुरम से एक एयरक्राफ्ट अगर टेक ऑफ करता है तो उसको मतलब इवन जम्मू पहुंचने में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना हम एक जवान को मतलब क्रॉस करने में लगता है या एक इन्फेंट्री यूनिट को लगेगा। कंपेयर करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं, तो इसलिए इनके लिए वो मायने कम रहते हैं।
2: कर्नल साहब, विशाल देश की जो महत्वपूर्ण सुरक्षा है उसके लिए आप लोग सदैव तत्पर रहते हैं, और ये काफ़ी गौरव की बात है कि आप हमारे साथ आए और हमारे साथ आपने जानकारियां साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू अदिति। जय हिंद श्रोताओं।
4: इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है सुश्री अदिति गौड़ को। ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। अगले कार्यक्रम की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
5: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद। देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

0: पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।
1: कुलकर्ष

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम।

0: ये प्रस्तुति हुई भोपाल के रविंद्र भवन के हंसध्वनि सभागार में।
1: जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पद्मश्री कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का।
2: प्यार भरा नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। ये मेरे सौभाग्य कि आज ऐसे मीठे वाले दिन में मुझे गाने का मौका मिल रहा है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब साल की शुरुआत होती है और 15 अगस्त को मुझे गाने का मौका मिलता है, मुझे लगता है कि ईश्वर ने बहुत मेरे पर कृपा की। और आप जैसे लोग जो भोपाल हम जानते हैं, भोपाल इतना कल्चरली कॉन्शियस है, यहाँ पे शास्त्रीय संगीत की इतना प्रचार है इस स्टेट में और भोपाल में, आज के दिन मैं यहाँ गा रही हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर टुडे। मैं सबसे पहला जो गीत गा रही हूँ ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत निर्देशन में मैं गा रही हूँ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मुझे फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहला गाना दिया था और ये मैंने फिल्म भैरवी के लिए गाया, जिसके शब्द, बहुत सुंदर शब्द अमित खन्ना साहब ने लिखा है। इसी गीत से शुरुआत कर रही हूँ।

थैंक यू सो मच। अभी आपको मैं देवदास फिल्म का गीत सुनाऊंगी। ये गीत मुझे बहुत पसंद है उस फिल्म में।

0: बहुत शुक्रिया।
1: आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति का गायन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने और परिकल्पना थी अदिति गौड़ की। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज।
1: अभी आपने सुना हमारा विशेष कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सड़क।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: उद्योग व्यापार ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं और भारत देश औद्योगिकी में आगे बढ़ रहा है। देश के प्रमुख संस्थानों पर आधारित है हमारा कार्यक्रम देश के संस्थान, तो सुनिए हमारा ये विशेष कार्यक्रम।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML जमीन से रक्षा की गति की कहानी।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान। पिछले एपिसोड्स में दादू और रुचि यात्रा पर गए थे, जहां रुचि ने विशाल युद्ध पोतों, अत्याधुनिक शिपलिफ्ट तकनीक और समुद्री सुरक्षा के बारे में बहुत कुछ सीखा। आज उनकी यात्रा समुद्र से आगे बढ़कर वापस धरती पर आ पहुंची है। आज रुचि जानेगी उस संस्था की कहानी जिसने भारत के विकास, रक्षा और अधोसंरचना निर्माण को नई गति दी। तो चलिए दादू पोती के संवादों के साथ सुनते हैं BEML की प्रेरक गाथा।
1: दादाजी, गोवा की यात्रा बड़ी यादगार थी। बहुत थक गई हूँ, अब घर में आकर बड़ा सुकून लगा है। दादू, मुझे लगता है कि इस यात्रा ने मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न नए तैयार कर दिए हैं।
2: अच्छा बेटा, देखो प्रश्न तो तुम्हारे मन में बहुत तैयार होते रहते हैं। मुझे जरा पहले एक गिलास पानी पी लेने दो।
1: हाँ दादू, ये लीजिए आपका पानी।
2: बेटा, यही तो यात्रा का सबसे बड़ा लाभ होता है। इन यात्राओं से जितना सीखो, कुछ नया सीखने की जिज्ञासा और बढ़ती जाती है।
1: दादू, GSL में हमने देखा कि जहाज बनाना कितना कठिन काम है। हजारों पुर्जे, सैकड़ों इंजीनियर और वर्षों की मेहनत लगती है।
2: बिल्कुल सही, कोई भी जहाज बनाना आसान काम नहीं है।
1: लेकिन दादू, समुद्र के अलावा जमीन पर भी तो देश के दूसरे संस्थानों के सामने ऐसी ही बड़ी बड़ी चुनौतियां होती होंगी।
2: हाँ हाँ बेटा, पहाड़ों में सड़कें बनानी हो, खदानों से खनिज निकालना हो, सेना के लिए भारी वाहन तैयार करने हो या मेट्रो रेल चलानी हो, इन सभी कार्यों के लिए खास संसाधनों की जरूरत होती है।
1: और वो काम करती है BEML। सही कहा ना आपकी रुचि ने।
2: हाँ हाँ बेटा, BEML का नाम सुनने में भले छोटा लगे, लेकिन इसका योगदान बहुत बड़ा है रुचि बेटा। रुचि, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे अब तुम मुझसे इसी विषय पर जानना चाहती हो?
1: दादू, आप तो मेरे मन की बात जानते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। मेरे मन में आज BEML के बारे में जानने की उत्सुकता है, तो अब आप मुझे इसी बारे में विस्तार से बताएंगे।
2: तो सुनो बेटा, जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड रखा गया था, क्योंकि उस समय इसका मुख्य कार्य भारी अर्थ मूविंग मशीनें बनाना था। लेकिन समय के साथ संस्था का कार्य क्षेत्र इतना बढ़ गया कि आज ये आधिकारिक रूप से BEML लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। फिर भी BEML का ऐतिहासिक विस्तार भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ही माना जाता है।
1: दादू, इसका इतिहास कितना पुराना है और इस संस्थान की स्थापना कब हुई, ये मैं आपसे विस्तार से जानना चाहती हूँ।
2: हाँ हाँ बेटा, BEML की स्थापना 11 मई 1964 को हुई थी। उस समय भारत एक युवा राष्ट्र था और अपनी औद्योगिक क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा था।
1: दादू, तब देश की सबसे बड़ी जरूरत क्या थी?
2: उस वक्त देश को भारी मशीनों की जरूरत थी बेटा। खदानें बढ़ रही थीं, बड़े बड़े बांध बन रहे थे, उद्योग विकसित हो रहे थे और अधोसंरचना निर्माण को गति मिल रही थी। लेकिन अधिकांश भारी मशीनें विदेशों से आयात करनी पड़ती थी।
1: यानी तब हमारा भारत आत्मनिर्भर नहीं था?
2: पूरी तरह तो नहीं, इसलिए सरकार ने ऐसी संस्था की कल्पना की जो देश में ही भारी निर्माण और खनन उपकरण बना सके।
1: अच्छा, तभी इस सोच के साथ ही BEML की शुरुआत हुई होगी।
2: बिल्कुल।
1: दादू, शुरुआती दिनों में BEML क्या बनाती थी?
2: सबसे पहले खनन और निर्माण क्षेत्र के लिए भारी मशीनें बनाई जाने लगी।
1: किस तरह की भारी मशीनें दादू, और ये भारी मशीनें काम क्या करती थी?
2: देखो बेटा, बुलडोजर, डंप ट्रक, एक्सकेवेटर, ग्रेडर और अनेक प्रकार के अर्थ मूविंग उपकरण।
1: दादू, ये भला कैसा नाम हुआ, अर्थ मूविंग उपकरण?
2: अरे बुद्धू, मतलब ऐसी मशीनें जो मिट्टी, पत्थर, भारी सामग्री को हटाने, खोदने या स्थानांतरित करने का काम करती हैं।
1: तभी तो इसका नाम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड रखा गया होगा।
2: बिल्कुल सही समझा
1: दादू। खदानों में इन मशीनों की क्या भूमिका होती है?
2: देखो बेटा, कल्पना करो, किसी कोयला खदान से लाखों टन मिट्टी हटानी है, क्या ये काम मजदूरों के हाथों से संभव होगा?
1: अरे ना बाबा, उसमें तो जाने कितने साल लग जाएंगे दादाजी।
2: बस यही कारण है कि इसके लिए विशाल डंप ट्रक और एक्सकेवेटर काम में आते हैं। ये मशीनें कुछ ही समय में वो काम कर सकती हैं जिसके लिए सैकड़ों लोगों को कई दिन लग जाएं।
1: मतलब दादू, हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक उद्योगों की रीढ़ यही मशीनें हैं।
2: हाँ बेटा, यदि खदानें ना चलें तो कोयला, लौह अयस्क और अनेक खनिज तत्व और पदार्थ देश के उद्योगों तक नहीं पहुंच पाएंगे।
1: और सड़क निर्माण में BEML का क्या योगदान होता है?
2: वहाँ भी इनका महत्व कम नहीं है बेटा। पहाड़ काटकर सड़क बनानी हो, सुरंग निर्माण करना हो या बड़े औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हो, हर जगह भारी मशीनों की जरूरत तो होती है
1: दादू। तो जब भी हम किसी नए राजमार्ग पर चलते हैं, तब उसके पीछे भी ऐसी ही संस्थाओं का योगदान होता है।
2: बिल्कुल, विकास केवल दिखाई देने वाली सड़क का नाम नहीं है बेटा, उसके पीछे वर्षों की योजना, तकनीक और मशीनों की मेहनत होती है।
1: अच्छा दादू, आप ये बताइए ना कि आज BEML का नाम किस क्षेत्र में ज्यादा सुनाई देता है?
2: रक्षा के क्षेत्र में बेटा, क्योंकि समय के साथ इसकी जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। देश को रक्षा क्षेत्र में भी स्वदेशी समाधान चाहिए थे।
1: दादू, आपने बताया था कि शुरुआत में BEML खनन और निर्माण कार्यों के लिए मशीनें बनाती थी, फिर इसका रक्षा क्षेत्र में जुड़ाव कैसे हुआ?
2: बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। जैसे जैसे भारत अपनी रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ा, वैसे वैसे सेना के लिए खास तरह के वाहनों और उपकरणों की जरूरत महसूस हुई। तब BEML ने भी रक्षा क्षेत्र में कदम रखा।
1: विशेष वाहन और उपकरण किस तरह के दादू?
2: देखो बेटा, सेना को ऐसे वाहन चाहिए होते हैं जो केवल सामान्य सड़कों पर ही नहीं, बल्कि रेगिस्तान की तपती रेत, हिमालय की बर्फीली चोटियों, दलदली इलाकों और घने जंगलों में भी आसानी से चल सके। कई बार उन्हें भारी तोपें, टैंक, मिसाइलें और अन्य सैनिक सामग्री भी ढोनी पड़ती है।
1: यानी सेना के वाहन साधारण ट्रकों जैसे नहीं होते दादाजी?
2: बिल्कुल नहीं बेटा, उन्हें बेहद मजबूत, भरोसेमंद और कठिन परिस्थितियों में काम करने योग्य बनाना पड़ता है। BEML ने ऐसे अनेक विशेष सैन्य वाहनों और सहायक उपकरणों के निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य किया है।
1: दादू, ये तो बहुत चुनौतीपूर्ण होगा।
2: निश्चित रूप से, एक सामान्य वाहन और सैन्य वाहन में बहुत अंतर होता है बेटा।
1: दादू, सेना के वाहनों को सामान्य वाहनों से इतना अलग क्यों बनाया जाता है?
2: क्योंकि बेटी, सेना का काम केवल शहरों की सड़कों पर चलना नहीं होता। कभी उन्हें बर्फ से ढके पहाड़ों पर जाना पड़ता है, कभी तपते रेगिस्तान में, कभी घने जंगलों के बीच।
1: मतलब जहाँ सामान्य वाहन शायद काम ही ना कर पाए।
2: हाँ बेटा, कई बार तो सड़कें भी नहीं होती, फिर भी सैनिकों तक रसद, हथियार और आवश्यक सामग्री पहुंचानी होती है। इसीलिए सैन्य वाहनों को अधिक शक्तिशाली, मजबूत और भरोसेमंद बनाया जाता है।
1: तो BEML ऐसे ही विशेष वाहन बनाती होगी दादाजी?
2: हाँ बेटा, BEML सेना की आवश्यकताओं के अनुरूप कई प्रकार के विशेष वाहनों, भारी परिवहन प्रणालियों और सहायक रक्षा उपकरणों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है।
1: यानी देश की सुरक्षा में भारत के संस्थान इस तरह अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
2: बिल्कुल बेटा, इन संस्थानों की उन्नत तकनीकों से बने स्वदेशी उपकरण और वाहन राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं।
1: दादू, आपने एक बार एयरक्राफ्ट टोइंग ट्रैक्टर का नाम लिया था।
2: हाँ हाँ बेटा, जब कोई विमान हवाई अड्डे पर खड़ा होता है तो उसे सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए विशेष वाहन की आवश्यकता होती है।
1: दादू, क्या ये विमान खुद से नहीं जा सकता?
2: कुछ परिस्थितियों में नहीं, लेकिन तब ऐसे ट्रैक्टर उपयोग में लाए जाते हैं बेटा।
1: और वे भी BEML ही बनाती है?
2: हाँ, ये संस्था कई प्रकार की विशेष प्रयोजन मशीनें बनाती रही है।
1: दादू, BEML मेट्रो से भी जुड़ी है?
2: हाँ बेटा, जब भारत में आधुनिक मेट्रो प्रणालियों का विस्तार शुरू हुआ तब मेट्रो कोच निर्माण की आवश्यकता तेजी से बढ़ी।
1: फिर
2: BEML ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया और मेट्रो कोच निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: यानी केवल खदानों की मशीनें ही नहीं, यात्रियों को ले जाने वाले कोच भी।
2: यही तो BEML की सबसे बड़ी विशेषता है बेटी। एक और ये खनन और निर्माण कार्यों के लिए भारी मशीनें बनाती है, तो दूसरी ओर रक्षा क्षेत्र के लिए विशेष वाहन और रेल तथा मेट्रो के लिए कोच भी तैयार करती है।
1: दादू, सच कहूँ ना तो अब तो मैं भी सोच रही हूँ कि कितना विश्वसनीय है। आखिर एक संस्था इतने अलग अलग क्षेत्र में काम कैसे कर सकती है दादाजी?
2: इसका उत्तर है इंजीनियरिंग क्षमता।
1: मतलब?
2: जब किसी संस्था के पास डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण की मजबूत व्यवस्था हो तो वो अलग अलग क्षेत्रों में भी सफल हो सकती है।
1: तो BEML केवल उत्पाद नहीं बनाती बल्कि तकनीकी ज्ञान भी विकसित करती है।
2: बिल्कुल बेटा, किसी मशीन को बनाना ही पर्याप्त नहीं होता, उसके पीछे वर्षों का अध्ययन, अनुसंधान और परीक्षण छिपा हुआ होता है।
1: मतलब पहले उसकी योजना बनाई जाती होगी दादाजी?
2: हाँ, सबसे पहले इंजीनियर मशीन की आवश्यकता को समझते हैं, फिर उसका डिजाइन तैयार करते हैं, उसके बाद मॉडल बनाया जाता है और अनेक प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मशीन कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी तरह काम करेगी।
1: यानी हर मशीन के पीछे बहुत सारी वैज्ञानिक सोच होती है।
2: हाँ बेटा, BEML के विशेषज्ञ लगातार नई तकनीकों पर काम करते रहे हैं। वे मशीनों को अधिक सुरक्षित, अधिक शक्तिशाली और अधिक ईंधन कुशल बनाने का प्रयास करते रहते हैं।
1: तो इसका लाभ देश को भी मिलता होगा?
2: निश्चित रूप से बेटा, जब तकनीक देश में विकसित होती है तो विदेशी निर्भरता कम होती है, लागत घटती है और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप बेहतर समाधान तैयार किए जा सकते हैं।
1: अब समझ में आया दादू कि किसी संस्था की असली ताकत केवल उसके कारखानों में नहीं बल्कि उसके ज्ञान और नवाचार में भी होती है।
2: बिल्कुल सही कहा बेटा, यही ज्ञान और नवाचार किसी संस्था को समय के साथ आगे बढ़ाते हैं और राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करते हैं।
1: अच्छा दादू, क्या इनके पास इनका अपना रिसर्च सेंटर भी है?
2: हाँ हाँ बेटा, नई तकनीकों के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ किसी भी आधुनिक संस्था का आधार होती हैं।
1: और वहाँ किस तरह की रिसर्च और निर्माण होता होगा?
2: वहाँ पे बेटा नई मशीनों के मॉडल तैयार किए जाते हैं, पुराने डिजाइन सुधारे जाते हैं, ईंधन दक्षता बढ़ाने पर बहुत काम होता है और भारतीय परिस्थितियों के अनुसार तकनीक विकसित की जाती है।
1: यानी प्रयोगशाला में जन्म लेने वाला विचार बाद में वास्तविक मशीन बन जाता है दादाजी।
2: ठीक कहा बेटा, एकदम ठीक।
1: दादू, आज की कहानी से मुझे एक बात समझ में आ रही है।
2: और वो क्या है?
1: वो बात ये है कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी सेना से नहीं बल्कि उसके उद्योगों और तकनीकी संस्थानों से भी तय होती है।
2: एकदम सही कहा बेटा तुमने। यदि मशीनें, उपकरण और तकनीक अपने देश में विकसित हों तो राष्ट्र अधिक आत्मनिर्भर बनता है।
1: और BEML उसी आत्मनिर्भरता की कहानी का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।
2: बिल्कुल बेटा।
1: दादू, बातें करते करते पता ही नहीं चला कितना लंबा सफर तय हो गया।
2: हाँ बेटा, और देखो बाहर का नजारा भी लगातार बदल रहा है।
1: अरे दादू, उधर देखिए कितनी बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही हैं। लगता है कोई सड़क या पुल बनाया जा रहा है।
2: हाँ हाँ बेटा। देश के विकास की कहानी केवल लक्ष्यों और योजनाओं में नहीं लिखी जाती बल्कि ऐसी मशीनों की पहियों और इंजनों की शक्ति से भी आगे बढ़ती है।
1: दादू, तो क्या ऐसी परियोजनाओं में भी BEML की मशीनें उपयोग होती हैं?
2: हाँ बेटा, सड़क निर्माण, खनन, औद्योगिक परियोजनाएं और अनेक बड़े निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले भारी उपकरणों के निर्माण में BEML ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: दादू, मतलब जब हम कोई नया राजमार्ग, सुरंग या औद्योगिक क्षेत्र बनते हुए देखते हैं, तो उसके पीछे कहीं न कहीं ऐसी ही संस्थाओं की मेहनत भी होती है।
2: बिल्कुल सही बेटा।
1: उधर तो देखिए,
2: हाँ।
1: दूसरी पटरी पर एक बहुत लंबी मालगाड़ी जा रही है।
2: हाँ हाँ, और ध्यान से देखो उसके डिब्बो पर क्या रखा है, देखो। हाँ हाँ, अभी कुछ देर पहले हम इसी के बारे में बात कर रहे थे ना।
1: अरे हाँ दादू, ये तो बहुत बड़े बड़े वाहन लग रहे हैं, कुछ तो सेना के वाहनों जैसे दिखाई दे रहे हैं दादाजी।
2: तुम्हारी नजर तेज होती जा रही है बेटा।
1: वो तो है दादू। अच्छा ये बताइए ना, क्या ऐसे भारी सैन्य वाहनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेल के माध्यम से ही पहुँचाया जाता है?
2: हाँ हाँ, अक्सर जब सेना को बड़ी संख्या में वाहन, उपकरण या कोई अन्य सामग्री दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचानी होती है, तब रेल परिवहन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: दादू, मुझे तो सोच कर ही बहुत रोमांच हो रहा है कि किसी वाहन की यात्रा कारखाने से शुरू होकर देश की सीमाओं तक कैसे पहुंचती होगी,
2: और उस यात्रा के पीछे हजारों लोगों का परिश्रम छिपा होता है बेटा। ये मत भूलना, डिजाइनर, इंजीनियर, तकनीशियन, परीक्षण विशेषज्ञ और उत्पादन कर्मी।
1: ये तो है दादाजी। अच्छा दादू, जब कोई नया सैन्य वाहन बनाया जाता है तो क्या उसे सीधे सेना को सौंप दिया जाता है?
2: नहीं नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता।
1: तो फिर?
2: देखो, सबसे पहले इसकी जरूरत को समझा जाता है। सेना बताती है कि उसे किस प्रकार का वाहन चाहिए, कहाँ उपयोग होना है, कितना भार उठाएगा, किस परिस्थितियों में कितना काम करेगा।
1: पर दादू, ऐसा तो जहाज बनाने के पहले भी किया जाता है ना?
2: हाँ हाँ, किसी भी वाहन या तकनीकी उपकरण के पहले उसकी जरूरत क्यों होगी, कैसे उसका उपयोग होगा, ये जानना जरूरी होता है बच्चे।
1: फिर इंजीनियर उसका डिजाइन तैयार करते होंगे।
2: हाँ, उसके बाद मॉडल तैयार होता है, फिर परीक्षणों का लंबा दौर चलता है।
1: परीक्षण? कैसे परीक्षण दादू?
2: देखो बेटा, कभी उबड़ खाबड़ रास्तों पर, कभी गर्म इलाकों में, कभी भारी वजन के साथ, और कभी लगातार कई घंटों तक चलाकर।
1: ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वाहन हर परिस्थिति में काम करेगा।
2: हाँ, रक्षा क्षेत्र में विश्वसनीयता सबसे बड़ी आवश्यकता होती है बच्चे।
1: दादू, आपने गौर किया, जब भी हम किसी बड़े संस्थान के बारे में बात करते हैं ना, तो एक बात बार बार सामने आती है।
2: क्या बात सामने आती है बेटा?
1: गुणवत्ता दादाजी।
2: क्योंकि गुणवत्ता के बिना तकनीक अधूरी है।
1: और केवल मशीन बना लेना ही पर्याप्त नहीं है।
2: बिल्कुल नहीं है, मशीन सुरक्षित हो, टिकाऊ हो और लंबे समय तक भरोसेमंद ढंग से काम करे, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
1: तभी तो सेना और रेलवे जैसी संस्थाएं किसी उपकरण पर भरोसा कर पाती हैं दादाजी।
2: एकदम सही कहा बेटा।
1: दादू, BEML का योगदान केवल रेलवे तक ही सीमित नहीं है।
2: हाँ बेटा, भारत में रेल परिवहन के आधुनिकीकरण की यात्रा में भी ऐसी संस्थाओं का योगदान रहा है। विशेष रूप से मेट्रो रेल परियोजनाओं में BEML ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।
1: दादू, मुझे याद है जब पहली बार मैं मेट्रो में बैठी थी ना, तो उसकी गति और सफाई देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी।
2: और सोचो, उस आधुनिक अनुभव के पीछे कितनी इंजीनियरिंग, कितनी योजना और कितना उत्पादन कार्यकर्ता होगा।
1: सचमुच दादू, यात्रियों को तो केवल आरामदायक सफर ही दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत दिखाई नहीं देती। दादू, एक बात बताइए ना, अगर BEML जैसी संस्थाएं ना होती तो देश में विकास कैसे होता? क्या तब हमें हर भारी मशीन विदेशों से खरीदनी पड़ती दादाजी?
2: काफी हद तक हाँ, और इससे लागत भी बढ़ती, समय भी अधिक लगता और तकनीकी निर्भरता भी बढ़ती।
1: मतलब आत्मनिर्भरता केवल एक नारा नहीं है दादाजी, बल्कि आज की जरूरत है।
2: जब देश अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मशीनें, वाहन और तकनीक स्वयं विकसित करता है, तब उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और क्षमता भी बढ़ती है।
1: अब समझ में आ रहा है कि आत्मनिर्भर भारत की चर्चा में ऐसे संस्थानों का नाम क्यों लिया जाता है।
2: क्योंकि ये संस्थान केवल उत्पाद नहीं बनाते बेटा, बल्कि राष्ट्र की क्षमता का निर्माण करते हैं।
1: दादू, आपने BEML के वर्तमान के बारे में तो बहुत कुछ बताया मुझे, लेकिन क्या ये संस्था भविष्य की तकनीकों पर भी काम कर रही है?
2: अरे बेटी, यही तो सबसे रोचक हिस्सा है। आने वाले वर्षों में परिवहन, रक्षा और निर्माण की दुनिया बहुत तेजी से बदलने वाली है।
1: मतलब BEML की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दादाजी?
2: बिल्कुल नहीं बेटा, BEML की कहानी तो अभी शुरू हुई है। क्योंकि अब बात होगी भविष्य की नई तकनीकों की, आधुनिक निर्माण की और आत्मनिर्भर भारत के अगले कदमों की।
1: दादू, क्या तकनीक सचमुच इतनी तेजी से बदल रही है?
2: हाँ बेटा, आज से कुछ दशक पहले जिन मशीनों को अत्याधुनिक माना जाता था, आज उनसे कहीं अधिक उन्नत प्रणालियां विकसित हो चुकी हैं। अब मशीनों में केवल शक्ति ही नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता भी जोड़ी जा रही है।
1: बुद्धिमत्ता मशीनों में?
2: हाँ, आज कई आधुनिक मशीनों में ऐसे यंत्र तंत्र लगाए जा रहे हैं जो उनके प्रदर्शन पर लगातार नजर रखते हैं। किसी खराबी की संभावना हो तो पहले ही संकेत दे देते हैं।
1: यानी समस्या आने से पहले ही उसका पता चल सकता है।
2: बिल्कुल, इससे समय भी बचता है और कार्यक्षमता भी बढ़ती है।
1: तो क्या दादाजी, भविष्य में रक्षा क्षेत्र के वाहन भी और अधिक आधुनिक हो जाएंगे?
2: निश्चित रूप से, दुनिया भर में ऐसे वाहनों पर काम हो रहा है जो कठिन परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन कर सके, कम रखरखाव मांगे और अधिक सुरक्षित हो।
1: और दादाजी, भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है।
2: हाँ हाँ बेटा, आत्मनिर्भर भारत का अर्थ ही है कि हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी तकनीक विकसित करें और लगातार उसे बेहतर बनाते रहें।
1: मतलब केवल विदेशी तकनीक खरीदना ही समाधान नहीं है?
2: बिल्कुल नहीं, वास्तविक शक्ति तब आती है जब तकनीक का ज्ञान भी अपने देश में विकसित हो रहा हो। बेटा
1: दादू, जब भी हम किसी संस्थान की कहानी सुनते हैं, वहाँ हजारों लोग काम करते दिखाई देते हैं।
2: और यही किसी भी बड़े संस्थान की सबसे बड़ी पूंजी होती है, उसके लोग,
1: यानी इंजीनियर, तकनीशियन, डिजाइनर और वैज्ञानिक।
2: कोई नई मशीन की रूपरेखा तैयार करता है तो कोई उसके पुर्जे बनाता है, कोई परीक्षण करता है तो कोई गुणवत्ता की जांच करता है।
1: एक मशीन के पीछे सैकड़ों हाथ और हजारों घंटों की मेहनत छिपी होती है दादाजी।
2: शाबाश मेरी बच्ची, एकदम सही कहा तुमने।
1: दादू, अगर कोई स्टूडेंट आज का ये कार्यक्रम सुन रहा हो और भविष्य में ऐसे संस्थान में काम करना चाहे तो उसे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, जरा ये भी बता दीजिए।
2: देखो बेटा, सबसे पहले उसे जिज्ञासु बनना होगा।
1: जिज्ञासु? वो भला कैसे?
2: जैसे कि मेरी प्यारी पोती रुचि है, है ना? उसे तुम्हारी तरह ही हर मशीन को देखकर ये पूछना होगा कि ये कैसे काम करती है, हर नई तकनीक को समझने की कोशिश करना, विज्ञान और गणित से दोस्ती करना।
1: क्या दादू, और मेहनत?
2: वो तो सबसे जरूरी है बेटा, बड़े सपनों को साकार करने के लिए निरंतर सीखना पड़ता है।
1: तभी तो कोई इंजीनियर, वैज्ञानिक या तकनीकी विशेषज्ञ बनेगा ना।
2: हाँ बिल्कुल।
1: दादू, एक बात सोचकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है।
2: किस बात का आश्चर्य बेटा?
1: वो ये कि जब हम किसी मेट्रो में सफर करते हैं ना दादाजी, या किसी नई सड़क पर चलते हैं, या समाचारों में सेना के आधुनिक वाहनों को देखते हैं, तब हम शायद ही कभी सोचते होंगे कि इनके पीछे कितनी संस्थाओं और कितने लोगों की मेहनत छिपी होती है।
2: वास्तव में देश के लिए निर्माण का कार्य विशाल यज्ञ की तरह होता है। उसमें कोई वैज्ञानिक अपना ज्ञान देता है, कोई इंजीनियर अपनी कल्पना, कोई तकनीशियन अपना कौशल और कोई श्रमिक अपना परिश्रम,
1: और तभी कोई बड़ा काम पूरा हो पाता है दादाजी।
2: हाँ बेटा, सोचो यदि खदानों से खनिज ना निकले तो कारखाने कैसे चलेंगे? यदि भारी मशीनें ना हो तो बड़े पुल, सड़कें और सुरंगें कैसे बनेंगी?
1: सो तो है।
2: और यदि रक्षा उपकरणों की आवाजाही के लिए उपयुक्त वाहन ना हो तो सेना की तैयारी कैसे मजबूत होगी?
1: दादाजी, यानी विकास और सुरक्षा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
2: हाँ बेटा, और BEML जैसी संस्थाएं इन दोनों को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करती है।
1: दादू, क्या BEML के कर्मचारियों को ये एहसास होता होगा कि उनका काम देश के लिए इतना महत्वपूर्ण है?
2: मुझे पूरा विश्वास है बेटा कि अवश्य होता होगा, क्योंकि जब कोई इंजीनियर किसी मशीन का डिजाइन बनाता है तब वो केवल एक उत्पाद नहीं बना रहा होता बल्कि देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहा होता है।
1: और जब कोई तकनीशियन किसी पुर्जे को सावधानी से तैयार करता है
2: तब वो भी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है।
1: वाह दादाजी, इसका मतलब हर छोटा काम भी महत्वपूर्ण होता है।
2: यही तो सबसे बड़ी सीख है बेटा, कोई योगदान छोटा नहीं होता, बड़ी उपलब्धियाँ हजारों छोटे छोटे प्रयासों से मिलकर बनती हैं।
1: दादू, आप अक्सर कहते हैं ना कि भारत युवाओं का देश है?
2: हाँ हाँ, मैं आज भी कहता हूँ, और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।
1: तो क्या आने वाले समय में ऐसे संस्थानों की जिम्मेदारी भी युवाओं के कंधों पर होगी?
2: निश्चित रूप से बेटा, आने वाले वर्षों में नई तकनीकें विकसित होंगी, नई चुनौतियां सामने आएंगी और नए समाधान भी खोजने होंगे। इसके लिए जिज्ञासु, मेहनती और नवाचार करने वाले युवाओं की आवश्यकता होगी।
1: यानी आज का विद्यार्थी ही कल का वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ बनेगा।
2: बिल्कुल, और हो सकता है कि आज ये कार्यक्रम सुनने वाला कोई बच्चा भविष्य में ऐसी ही किसी संस्था का नेतृत्व करे।
1: दादाजी, मुझे तो सोचकर बड़ा ही रोमांच हो रहा है।
2: देखो बेटा, किसी भी संस्थान की सफलता केवल उसकी मशीनों से नहीं मापी जाती है, उसकी सफलता इस बात से मापी जाती है कि उसने देश और समाज को कितना मजबूत बनाया।
1: और BEML ने ये काम कई दशकों से किया है।
2: हाँ, बदलते समय के साथ उसने स्वयं को बदला, नई तकनीकों को अपनाया और देश की आवश्यकताओं के अनुसार आगे बढ़ती रही।
1: यानी यही किसी जीवंत संस्था की पहचान है।
2: बिल्कुल बेटा, जो सीखना बंद कर दे वो आगे बढ़ना भी बंद कर देता है,
1: और जो निरंतर सीखता रहे वही भविष्य का निर्माण करता है।
2: शाबाश बेटा, शाबाश। लगता है आज की यात्रा सचमुच सफल रही।
1: दादू, आज हमने जाना कि किसी भी संस्थान की कहानी केवल उसकी इमारतों या मशीनों की कहानी नहीं होती।
2: तो फिर क्या होती है?
1: ये उन लोगों की कहानी होती है दादाजी, जो अपने ज्ञान, परिश्रम और संकल्प से देश को आगे बढ़ाते हैं।
2: वाह बेटा वाह, लगता है इस यात्रा ने वाकई तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया।
1: और आपने भी तो बहुत कुछ सिखाया दादू।
2: मैं तो तुम्हारा दादू हूँ, सिखाऊंगा ही बेटा। याद रखो बेटा, किसी भी संस्थान की सबसे बड़ी पहचान उसकी मशीनें नहीं होती, बल्कि वो विश्वास होता है जो वो देश के लोगों में पैदा करता है। BEML ने दशकों से यही विश्वास मजबूत किया है। भारत की अपनी जरूरतों के अनुरूप तकनीक विकसित कर सकता है, बड़े सपने देख सकता है और उन्हें साकार भी कर सकता है।
1: यानी ये केवल मशीनें बनाने की कहानी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास जगाने की कहानी भी है दादाजी।
2: हाँ, एकदम सही कहा बेटा तुमने। जब किसी देश के युवा सीखने, शोध करने और नवाचार करने का संकल्प लेते हैं, तब ऐसे संस्थान उस संकल्प को शक्ति देने का काम करते हैं।
1: समझ गए दादू, आज के आत्मनिर्भर भारत की नींव केवल देश के कारखानों से मजबूत नहीं है, बल्कि देश के उन संस्थानों में काम कर रहे लाखों लोगों के ज्ञान, कौशल और परिश्रम से है।
2: शाबाश बेटा, मुझे तुम पर गर्व है, और यही आज की यात्रा की सबसे बड़ी सीख भी है।
1: दादू चलिए, जरा संभल कर उठिएगा।
2: हाँ हाँ बेटा,
1: बैग में लेती हूँ।
2: हाँ।
1: श्रोताओं, आज आपने सुनी BEML की स्थापना, उसके शुरुआती कार्यों और रक्षा

0: शिक्षा अधोसंरचना क्षेत्र में बढ़ती भूमिका की कहानी, लेकिन ये तो केवल शुरुआत है। अगले भाग में दादो और रुचि आपको बताएंगे देश के और भी कई संस्थानों के बारे में, साथ ही आत्मनिर्भर भारत में इन संस्थानों की भूमिका और भविष्य की योजनाएं क्या क्या हैं। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, लेखन था स्वाति गिरी का। मैं थी आपके साथ भगवती सक्सेना
1: और मैं आपका रेडियो मित्र दीपक नेमा।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए

स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

0: आजाद हिंद के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मेरा नाम है इतिहास और मैं उन व्यक्तित्वों को कभी भुलाई नहीं भूल पाता जिन्होंने गुलामी के दौर में यह विश्वास हमेशा बनाए रखा कि हम हमेशा गुलाम नहीं रहेंगे और जो सोचा वो कर भी दिखाया।
1: ये तारीख भी सभी श्रोताओं का स्वागत करती है। मैंने हमेशा उन यादों को तारीख के साथ इतिहास के पन्नों में उतारा है जो ये समझकर शहीद हुए थे कि ईश्वर ने हमें केवल देश को आजाद करने की ही जिम्मेदारी दी है।
0: तारीख, आज हम बात करेंगे क्रांतिकारी युग की प्रथम शहीद महिला की, जो मुक्ति संग्राम में आत्मविसर्जन के लिए हमेशा भयानक विष पोटेशियम साइनाइड लेकर के साथ चलती थी।
1: जी हाँ इतिहास, हम बात कर रहे हैं प्रीति लता वादेदार की।
0: आजादी की लड़ाई के इतिहास में प्रथम शहीद महिला के रूप में गोलपांडा चटगांव की बेटी प्रीति लता वादेदार का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। 5 मई 1911 को गोलपांडा चटगांव में जन्मी प्रीति लता के पिता जगबंधु वादेदार चटगांव म्युनिसिपैलिटी में हेड क्लर्क थे। 1921 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। प्रीति लता की माता प्रतिभा भी देशभक्त और शिक्षा प्रेमी थी। बचपन से ही प्रीति लता में देश प्रेम की भावना बलवती हो उठी। उनके पिता कहते थे, मेरी यह बिटिया एक दिन चटगांव की सरोजनी नायडू बनेगी, और उन्होंने कर भी दिखाया।
1: किंतु जलियांवाला बाग की कहानी सुनकर प्रीति लता के मन में भी बंगाल के अन्य युवाओं की तरह ये भावना घर कर गई थी कि सशस्त्र संग्राम ही स्वाधीनता प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है। इसलिए जब 1928 में प्रीति लता ने प्रवेशिका परीक्षा पास कर ढाका के ईडन कॉलेज में प्रवेश लिया तो बंगाल के क्रांतिकारी दल श्री संघ की नेत्री लीला राय के दल में शामिल हो गई बिना किसी भय के और कहा,

0: प्रीति लता के साथ उसकी प्रिय सहेली कल्पना दत्त भी कलकत्ता से चटगांव आकर के महिला सम्मेलन में शामिल हो गई। उन दिनों चटगांव क्रांतिकारी दल का संचालन महानायक मास्टर दा यानी सूर्य सेन कर रहे थे। प्रीति लता और उसकी सहेली की दिली इच्छा उनके दल में शामिल होने की थी, पर उस समय क्रांतिकारियों के दल में महिलाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता था, अतः उनके प्रयत्न सफल नहीं हो पाए। इसी बीच प्रीति लता ने ढाका विश्वविद्यालय से आईए पास करके कलकत्ता के बैथुन कॉलेज में बीए में प्रवेश ले लिया।
1: ठीक उसी समय 18 अप्रैल 1930 की रात इंडियन रिपब्लिक आर्मी ने जिले के सभी शस्त्रागारों पर कब्जा कर मास्टर दास सूर्यसेन के नेतृत्व में भारत की प्रथम गणतांत्रिक सरकार की घोषणा कर दी और सभी नर नारियों छात्र छात्राओं का देश की आजादी के लिए काम करने का आह्वान किया।

0: उसके बाद की घटनाओं ने युवक युवतियों को गहरे से प्रभावित किया। इस समय प्रीति लता और कल्पना दत्त का प्रभावित होना भी स्वाभाविक ही था। जलालाबाद का पहाड़ युद्ध, अमरेंद्र के आत्म उत्सर्ग, कालारपुर के खंड युद्ध, चंदन नगर की लड़ाई, ढाका में लोमेन की हत्या, चांदपुर में तारणी मुखर्जी हत्याकांड आदि घटनाओं ने उनके मन में भी क्रांतिकारियों के गोरिल्ला युद्ध का हिस्सा बनने की ललक तीव्र हो उठी।
1: उस समय चटगांव के क्रांतिकारी दलों के स्थानीय छात्र नेता मनोरंजन राय कलकत्ता में थे। उन्हें कलकत्ता से काफी मात्रा में एसिड चटगांव पहुंचाने का काम सौंपा गया था। इस काम के लिए उन्हें लड़कियों की जरूरत थी, क्योंकि खुफिया पुलिस पुरुषों पर नजर रखती थी, लड़कियों पर नहीं। प्रीति लता और कल्पना दत्त ने इस अवसर को भुना लिया और उनके दल में शामिल हो गईं। अब उन्हें मातृभूमि के लिए काम करने का रास्ता मिल गया था।
0: इसी दौरान प्रीति लता की भेंट क्रांतिकारियों की मददगार गुनुबुआ से हुई, जिनकी सहायता से उसकी भेंट चटगांव में क्रांतिकारी और मृत्यु दंड से दंडित रामकृष्ण विश्वास से जेल में हुई। रामकृष्ण विश्वास को 4 अगस्त 1931 को अलीपुर जेल में फांसी दी गई। फांसी से पहले 40 बार प्रीति लता और उनकी मुलाकात हुई थी। विश्वास ने प्रीति लता की क्षमता पहचान कर उससे कहा था, जितनी जल्दी हो सके मृत्यु शपथ लेकर के किसी काम में लग जाओ। और प्रीति लता ने प्रति उत्तर में कहा था, मैं आज ही आपकी शपथ लेकर कहती हूँ, मैं काम करते करते अपने कार्य क्षेत्र में ही अपने आप को उत्सर्ग कर दूंगी। क्या हुआ अगर मर गए वतन के वास्ते।

0: सन 1931 में ही प्रीतिलता और कल्पना दत्त को मास्टर दा, निर्मल दा, तारकेश्वर दस्तीदार, शैलेश्वर चक्रवर्ती और काली किंकर के दल में शामिल कर लिया गया। इसी वर्ष बीए पास करने के बाद 1932 में प्रीतिलता चटगांव के नंदन कानन उच्च बालिका विद्यालय में प्रधान अध्यापिका हो गई। साथ ही क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेती रही। शीघ्र ही उसे सशस्त्र संग्राम का अनुभव भी मिल गया, जिसमें कैप्टन कैमरून मारा गया। साथ ही भारी गोलाबारी के दौरान प्रीतिलता के साथ ही निर्मलदा और अपूर्व सेन शहीद हो गए।
1: सन 1932 की जुलाई में उन्हें यह खबर मिली कि चटगांव के सभी उच्च अधिकारी यूरोपियन क्लब में इकट्ठे होकर के मदिरा पी रहे हैं और नशे में नाच रहे हैं। बस फिर क्या था, योजना बनाई गई कि सभी को वहीं ढेर कर दिया जाए। क्रांतिकारी शैलेश्वर चक्रवर्ती के नेतृत्व में 10 अगस्त 1932 को आक्रमण की योजना बनी, पर वह सफल नहीं हो पाई। शैलेश्वर ने असफल होने पर विष खाकर के आत्मसर्ग कर लिया।
0: आखिर इस योजना को सफल बनाने का दायित्व प्रीतिलता के नेतृत्व में महिला प्रभाग को सौंपा गया। 24 सितंबर 1932 को आक्रमण का दिन निश्चित हुआ। प्रीतिलता के नेतृत्व में आक्रमण सफल हुआ। सारा इलाका घायलों की चीख पुकार से दहल उठा। गोलाबारी में प्रीतिलता भी घायल हुई थी, किंतु उन्होंने अपनी परवाह ना करते हुए अपने सभी साथियों को निश्चित स्थान पर मिलने का कह जाने का आदेश दे दिया। घायल प्रीतिलता के साथ केवल कालीदा थे। 500 गज चलने के बाद प्रीतिलता की हिम्मत जवाब दे गई।
1: तब उन्होंने कालीदा से कहा कि इससे पहले कि अंग्रेज सिपाही आ पहुंचे, आप अपना साइनाइड मेरे मुंह में डाल दीजिए। और वे बेहोश होकर के गिर पड़ी। कालीदा ने प्रीतिलता की आज्ञा के अनुसार साइनाइड उसके मुंह में डाल दिया और प्रीतिलता ने शपथ के अनुसार आत्म आहुति दे दी, जैसे कह रही हो, विदा करो माँ, अब तो हम जाते हैं।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: अभी आप सुन रहे थे आजाद हिंद कार्यक्रम का प्रसारण। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। रेडियो आजाद हिंद के सफर में मैं हूँ आपके साथ भारती। लीजिए प्रस्तुत है राष्ट्र धर्म से ओतप्रोत ये देशभक्ति रचना।

0: वादा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
3: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
4: कुछ यादें उन्हें भी कर लो।
5: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
4: जो लौट के घर न आए।
6: हेलो, पप्पू पेजर बोल रहा हूँ। ए झंटू ले झटक, दादा ना मटक और मेरी बात गले में सटक।
7: नमस्कार, मैं हूँ सतीश कौशिक, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं सोनाली राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए जय हिंद।
1: वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं कहने को, फिर भी हम कह रहे हैं कि हम हैं लल्लन जी। अरे लापता गंजे वाले, पीडब्ल्यूडी में काम करते, पीडब्ल्यूडी में कौन ऐसे वैसे आदमी नहीं बता दे रहे। हाँ नहीं तो, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद रेडियो रूपक।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि स्वामी जी के दार्जिलिंग में रहते समय जब सर्वप्रथम उनकी ज्ञात ज्योति को लेकर अशोभनीय वाद विवाद आरंभ हुआ, तब वे इसके विषय में कुछ भी नहीं जानते थे। और जानते भी कैसे, वे तो दक्षिणेश्वर के मंदिर में जाकर मां काली का दर्शन कराए थे। वहां मंदिर के कर्मचारियों तथा विश्वास महाशय के पुत्रों ने उनके साथ प्रीति एवं श्रद्धापूर्ण व्यवहार ही किया था, अतएव उन्हें कैसे आन हो सकता था कि इसके बाद ही शत्रुगण एक काल्पनिक घटना रचकर कहेंगे कि समुद्र यात्रा के फलस्वरूप जातिच्युत हो जाने के कारण उन्हें मंदिर से निकाल दिया गया था।
1: और यदि सचमुच ही ऐसा हो जाता तो क्या इसमें स्वामी जी के कार्य में कोई स्थायी बाधा उत्पन्न हो जाती, या फिर क्या स्वामी जी का हृदय इससे कांप जाता? उनके परवर्ती काल के एक पत्र से पता चलता है कि वे इस प्रकार की अवज्ञा को किस प्रकार उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। स्टडी के कुछ मिथ्या आरोपों के उत्तर देते हुए उन्होंने 14 सितंबर 1899 ईस्वी को लिखा था,
2: भारत में अनेक लोगों ने यूरोपीय लोगों के साथ भोजन करने पर भी आपत्ति दिखाई है। मैं यूरोपियन लोगों के साथ खाता हूँ, इसलिए मुझे एक पारिवारिक देवालय से निकाल दिया गया था। मैं तो ऐसा नमनीय हो जाना चाहता हूँ कि हर कोई अपनी इच्छानुसार मुझे मोड़ सके, परंतु दुर्भाग्यवश आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति मेरे देखने में नहीं आया जो सबको संतुष्ट कर पाया हो।
0: इस पत्र को पढ़ने से बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि स्वामी जी ने स्टर्डी को उल्टा जवाब देने के लिए तर्क के रूप में ही त्रैलोक्यनाथ विश्वास का काल्पनिक विवरण स्वीकार करते हुए लिखा था कि उन्हें एक पारिवारिक देवालय अर्थात रानी रासमणि के दक्षिणेश्वर स्थित कालीबाड़ी से निकाल दिया गया था। परंतु इसके बाद 1898 ईस्वी में श्री रामकृष्ण के जन्मोत्सव के समय उन्हें सचमुच ही उस मंदिर में प्रवेशाधिकार से वंचित कर दिया गया था। उत्सव के पूर्व ही विश्वास परिसर की यह मनसा जानकर 15 नवंबर 1897 ईस्वी को स्वामी जी ने लिखा था, इस बार महोत्सव होना तक असंभव है, क्योंकि रासमणि के मंदिर उद्यान के मालिक मेरे विदेश हो जाने के कारण मुझे उद्यान में जाने नहीं देंगे।
1: स्वदेश और विदेश में इस प्रकार के विरोध और युक्तिहीन लोक निंदा की बातें सुनकर भी स्वामी जी ने निर्भीक हृदय के साथ मैरी को 9 जुलाई 1897 को लिखा था,
2: प्रिय मैरी, मेरे लिए भय बिल्कुल मत करना। कुछ भी हो, मैंने जितना कार्य किया है उसी से मैं संतुष्ट हूँ। मैंने कभी मंसूबा बांधकर कुछ नहीं किया। चीजें जैसे जैसे सामने आती गईं, उन्हें मैं वैसे वैसे स्वीकार करता गया। केवल एक ही चिंता मेरे मस्तिष्क में दहक रही थी, और वो ये कि भारतीय जनता को उन्नत करने वाले एक यंत्र को चालू कर दूं। इस कार्य में मुझे कुछ हद तक सफलता मिली है। तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंद से प्रफुल्लित हो जाता कि किस प्रकार मेरे लड़के अकाल, रोग तथा दुख दर्द के बीच कार्य कर रहे हैं। हैजे से पीड़ित पैरिया की चटाई के पास बैठे उसकी सेवा कर रहे हैं, भूखे चंडाल के मुख में अन्न दे रही हैं, प्रभु मेरी तथा उन सब की सहायता कर रही हैं। लोग क्या कहते हैं इसकी मुझे क्या परवाह? क्यों? क्योंकि मैं तो परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका हूं और समस्त सांसारिक प्रपंचों की असारता जान चुका हूं। क्या मैं बच्चों की तोतली बोली सुनकर अपने मार्ग से हट जाऊंगा? मुझे देखकर क्या ऐसा ही लगता है?
0: स्वामी विवेकानंद का संन्यास ग्रहण करने के उपरांत हिंदू धर्म का प्रचारक होने का दावा करना, समुद्र यात्रा तथा विदेशियों का आहार ग्रहण करना आदि को केंद्र बनाकर देश विदेश में जो वाद प्रतिवाद अथवा शत्रु पीड़न का जो उत्साह दिख पड़ा था, उसी की चरम परिणति मिलती है कि प्रेमदास मित्र को लिखित स्वामी जी के 30 मई 1897 के पत्र में मेरी को लिखित पत्र में उत्तर है, उदासीनता है और विरोचित आत्मतुष्ट का भाव है। परंतु वे सब बातें प्रधानतः अमरीकी समाज को ध्यान में रखकर लिखी गई थी। प्रेमदास बाबू को लिखित पत्र भारतीय परिवेश में एक सुशिक्षित पुरातन पंथी पुराने मित्र को उपदेश देने के निमित्त लिखा गया था। प्रेमदास बाबू को लिखा यही उनका अंतिम पत्र है, और इसी पत्र में हम ये भी देखते हैं कि जटिल प्राचीन समाज बातों में तो कट्टरता प्रदर्शित करता है, तदापि अंतर में पश्चिम की वाहवाही पाने को लालायित रहता है और व्यवहार में दुर्बल एवं दरिद्रों के शोषण में लगा रहता है। इस विषय में उन्होंने स्पष्ट भाषा में अपना मनोभाव व्यक्त करते हुए सब प्रकार से समझौता करके चलने की नीति पर मोटा पर्दा डाल दिया। उस पथ की इतिश्री हो गई। प्रमदा बाबू को लिखे उस पत्र के उल्लेखनीय अंश ये हैं।
2: सुनने में आया कि हिंदू धर्म के गोरे मिशनरियों के आप विशेष मित्र हैं और दुष्ट काले भारतवासी आपकी घृणा के पात्र हैं। जो मिल जाए सो खाता हूं, वो भी जिस तिस के साथ और सबके सामने, चाहे देश हो या परदेश। उपनिषद और गीता सच्चे शास्त्र हैं और राम कृष्ण बुद्ध चैतन्य नानक कबीर आदि सच्चे अवतार हैं, क्योंकि उनके हृदय आकाश के समान अनंत थे। और भी एक विसंगति है। दिन पर दिन मेरी ये दृढ़ धारणा होती जा रही है कि जाति बोध ही सर्वाधिक भेद उत्पन्न करने वाला और माया का मूल है। चाहे जन्मगत हो या गुणगत, हर प्रकार का बाहर का जाति भेद बंधन ही है। कोई कोई मित्र सुझाते हैं कि वो मन में रहे, पर बाहर के व्यवहारिक जगत में तो जाति आदि को बनाए रखना होगा। मन नहीं, मन अभेद, बुद्धि और बाहर पिशाच का नृत्य, अत्याचार, उत्पीड़न और गरीबों के लिए साक्षात यम, जाति आदि पागलपन के विचार केवल पुरोहितों द्वारा लिखित ग्रंथों में ही पाए जाते हैं, ईश्वर प्रणीत ग्रंथों में नहीं। पुरोहितों के पूर्वजों के कर्मों का फल पुरोहित ही भोगें। मैं तो ईश्वर की वाणी का अनुसरण करता हूं, उसी से मेरा कल्याण होगा। एक और बात मेरी समझ में आई है कि परोपकार ही धर्म है और बाकी याग यज्ञ इत्यादि सब पागलपन है। अपनी मुक्ति की इच्छा भी अनुचित है। जिसने दूसरों के लिए अपना सर्वस्व दे दिया है वही मुक्त होता है, और जो लोग मेरी मुक्ति रटते हुए दिन रात सिर खपाते हैं वे इतो नष्ट स्ततो भ्रष्टः बनकर भटकते रहती हैं। ऐसा भी अनेकों बार मेरे देखने में आया है।
1: सभी दृष्टियों से एक सुंदर उत्तर है। शास्त्र दर्शन युक्त व्यवहारिकता और नवीन युग दर्शन, इसमें सब कुछ है। और मजे की बात तो ये है कि प्रतिपक्ष की ओर से जो लोग शूद्र नरेंद्रनाथ को धराशायी कर सच्चे धर्म की विजय पताका को उड़ते देखने को ठान कर युद्ध क्षेत्र में उतरे थे, योगेंद्रनाथ बसु, त्रैलोक्यनाथ विश्वास, प्रमदा दास मित्र, बैरोज, वे सभी अब्राह्मण थे। वैसे तो ये पत्र जन साधारण के लिए प्रकाशित होने की संभावना न थी, फिर भी परवर्ती युग के भारतीय परिदृश्य में स्वामी जी को समझने के लिए ये अमूल्य है। पश्चिम में भी ठीक ऐसा ही एक सर्वांग सुंदर उत्तर मिलता है। डॉक्टर जेन्स को लिखित श्रीमती ओली बुल के 7 जून 1897 के इस पत्र में।
3: कैलिफोर्निया के अखबार की कटरण के लिए धन्यवाद। डॉक्टर बैरोज ने छप इतने स्पष्ट भाषा में विवेकानंद को मिथ्यावादी कहकर निंदा की और इस कारण उन पर यह आरोप लगा है कि वे जानबूझकर मद्रास में डॉक्टर बैरोज से नहीं मिले, तब डॉक्टर बैरोज के ही भले के लिए मुझे खेद पूर्वक कहना पड़ता है कि वे उन सुप्रचारित स्वागत सूचक पत्रों का बिल्कुल भी उल्लेख न करते तो अच्छा होता, जिनमें स्वामी जी ने हिंदू से अनुरोध किया था कि डॉक्टर बैरोज का हिंदू धर्म अथवा उनके अपने धर्म के बारे में चाहे जो भी अभिमत हो उन पर विचार न कर उपयुक्त सद्भाव पूर्ण ढंग से उनका वैसा ही स्वागत किया जाए जैसा कि डॉक्टर बैरोज और श्री बोनी ने शिकागो में एकत्र प्राच्य प्रतिनिधियों के प्रति सदैव व्यवहार किया था, जिस समय समग्र राष्ट्र अभूतपूर्व आंतरिकता एवं उत्साह के साथ स्वामी का स्वागत करने को तैयार हो रहा था। उस समय उनके प्रचारित पत्रों के साथ जब हम स्वदेश लौटकर कैलिफोर्निया में ठिया खाए डॉक्टर बैरोज के विवेकानंद संबंधी व्यक्तित्व की तुलना करते हैं तो उनमें कैसा विपरीत भाव दिखाई देता है। भारतीय जनता के मूल्यांकन करने के लिए दोनों व्यक्तियों का कैसा विपरीत चित्र उपस्थित करता है।
0: श्रीमती बुल ने डॉक्टर जेन्स को खेद जताते हुए बहुत लंबा खत लिखा था, जिसमें स्वामी जी के प्रति लगाए गए आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। इस प्रसंग के अंत में हम स्वामी जी के 3 मार्च 1898 के एक पत्र का अंश भी उद्दात करना चाहेंगे कि जिसमें यह स्पष्ट होता है क्यों वे बैरोज साहब से बिना मिले ही मद्रास चले गए थे और उस समय वे कितना अस्वस्थ थे। उन्होंने लिखा था,
2: लंदन से लौटकर जब मैं दक्षिण भारत में था तो शरीर में शक्ति का पूर्ण हास तथा चरम अवसाद आ गया और मुझे तुरंत मद्रास छोड़कर अपेक्षाकृत ठंडे उत्तरांचल में जाना पड़ा। एक दिन भी विलंब करने का अर्थ होता उस भीषण गर्मी में और भी एक सप्ताह जहाज के लिए प्रतीक्षा करना। खैर, मुझे बाद में पता चला कि अगले दिन श्री बैरोज मद्रास पहुंचे और अपनी अपेक्षा के अनुसार मुझे वहां ना पाकर बड़े नाराज हुए। वैसे मैंने वहां उनके स्वागत तथा आवास का प्रबंध कर दिया था। उन बेचारे को क्या मालूम कि उस समय मैं यमलोक के द्वार पर था।
1: बैरोज के लिए लिखे गए अभिनंदन पत्र पर स्वामी जी का भी हस्ताक्षर था और उनका नाम देखकर और भी अनेक हिंदू सज्जनों ने उस पर दस्तखत किए थे।
0: एक वर्ग के लोगों ने जातिवाद के आधार पर स्वामी जी को नीचा दिखाने का प्रयास किया था, तथापि उन्होंने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। परंतु संपूर्ण देश में और विशेषतः त्रावणकोर राज्य में उच्च जातियों के द्वारा निम्न जातियों के लोग

0: जाति के हैं। तुम्हें इन सज्जन से पता चलेगा कि केवल जाति के कारण ये बेचारे गरीब लोग कैसे सताए जाते हैं। देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की अपनी नीति के कारण भारत की अंग्रेज सरकार कुछ करने को राजी नहीं है। एकमात्र ब्रिटिश पार्लियामेंट ही उनकी आशा है। इस बात को ब्रिटेन के जनसमाज के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार तुम जो भी कर सको करो।
1: इसी समय एक दिन स्वामी जी माताजी तपस्विनी के आमंत्रण पर शिष्य शरद बाबू को लेकर महाकाली पाठशाला के निरीक्षण के लिए गए। विद्यालय की शिक्षा प्रणाली देख स्वामी जी संतुष्ट हुए। लौटते समय वार्तालाप के सिलसिले में उन्होंने कहा कि पुरुषों के लिए मठों की स्थापना करने के साथ ही साथ नारी मठ स्थापित करने की भी इच्छा है। वहां पर ब्रह्मचारिणी व सन्यासिनी सुशिक्षित बनकर नारी जाति की उन्नति व शिक्षा के लिए प्रयत्न करेंगी।
2: उन्होंने और भी कहा था कि विजातीय आदर्श के अनुसार जीवन जीने की कोशिश न करते हुए भारतीय स्त्रियों को अभी से जातीय भाव में शिक्षा देना ही कर्तव्य है। वे शिक्षित होकर अपने भले बुरे को स्वयं ही समझ लेंगी। इसके लिए पुरुषों को माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है और कर्म क्षेत्र में नारी की स्वाभाविक दक्षता स्वतंत्र रूप में यदि राष्ट्र की उन्नति के लिए नियुक्त हो तो कल्याण होगा। इन दिनों स्वामी जी के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आती जा रही थी। अल्मोड़ा जाने से पहले उन्होंने 28 अप्रैल को मैरी को लिखा था,
0: मेरे गुच्छे के गुच्छे बाल सफेद हो रही हैं, मुख पर चारों ओर झुर्रियां पड़ गई हैं और शरीर का मांस घट जाने से मेरी आयु और भी 20 वर्ष बढ़ गई प्रतीत होती है। अब मैं दिन पर दिन तेजी से दुबला होता जा रहा हूं। उसका कारण ये कि मुझे केवल मांस खाकर रहना पड़ रहा है। रोटी नहीं, भात नहीं, आलू नहीं, इतना ही क्या, अब मैं एक बड़ी दाढ़ी रख रहा हूं जिसके बाल भी सफेद होने लगे हैं। हे सफेद दाढ़ी, तुम कितनी ही चीजें छुपा सकती हो, धन्य हो तुम।
2: अल्मोड़ा जाने से एक दिन पहले यानी 5 मई को स्वामी जी ने श्रीमती बुल को लिखा था,
0: अपने बिगड़े स्वास्थ्य को सुधारने के लिए मैं एक महीना दार्जिलिंग में था। अब मैं काफी अच्छा हो गया हूँ। दार्जिलिंग में रोग पूरी तौर से भाग गया। स्वास्थ्य को पूरा ठीक करने के लिए कल मैं अल्मोड़ा नामक एक अन्य पहाड़ी स्थान में जा रहा हूँ।
1: दोनों पत्रों को एक साथ पढ़ने से पाठकों को सहज ही प्रतीत होगा कि स्वामी जी ने यद्यपि अपने स्वस्थ हो जाने की बात लिखी है, परंतु वास्तव में बात ऐसी नहीं थी। उनका स्वभाव ही ऐसा था कि वे रोग, शोक, आपत्ति, विपत्ति आदि की विशेष परवाह नहीं करते थे। अतः भयानक रोग को भी कुछ नहीं कहकर उड़ा देना उनके लिए असंभव न था। वस्तुतः इसी आयु में बालों का पक जाना और आटा, चावल, आलू तथा मीठी चीजों का निषिद्ध हो जाना अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। यद्यपि उन्होंने दार्जिलिंग में रोग मुक्त होने तथा अल्मोड़ा में पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने की बात लिखी थी, तथापि चिकित्सकों के उनके सहमत न होने के यथेष्ट कारण थे। उन लोगों ने स्वामी जी को ग्रीष्म काल में समतल में न रहकर पहाड़ों में बिताने की सलाह दी थी।
2: 6 मई को उन्होंने अल्मोड़ा की ओर प्रस्थान किया। कुमारी मूलर पहले ही भारत पहुंच चुकी थी और स्वामी जी की यात्रा के पूर्व ही वे गुडविन के साथ देहरादून होते हुए अल्मोड़ा पहुंच चुकी थी। स्वामी जी के आगमन की संभावना जानकर अल्मोड़ा वासियों ने इसमें विशेष उत्सुकता दिखाई और आग्रह पूर्वक उन्हें आमंत्रित किया।
1: अल्मोड़ा जाते समय लखनऊ में उनके अनुरागी मित्रों तथा भक्तों ने उनका सादर स्वागत किया और उन्होंने भी एक दिन वहां ठहरकर विश्राम किया। लखनऊ से ट्रेन में यात्रा कर हिमालय के द्वार पर स्थित काठगोदाम स्टेशन 9 मई पहुंचने पर पता चला कि उन्हें साथ ले जाने को अल्मोड़ा से गुडविन आए हुए हैं। आलम बाजार मठ से स्वामी जी योगानंद भी स्वामी जी के साथ आए हुए थे।
2: अल्मोड़ा के निकट लोदिया नामक स्थान में 11 मई को पहुंचने पर एक विशाल जनसमूह ने जय ध्वनि के साथ स्वामी जी का हार्दिक स्वागत किया। ये लोग स्वामी जी के लिए एक सुसज्जित घोड़ा ले आए थे, उसी के पीठ पर उन्हें बैठाकर एक शोभा यात्रा और अविराम जय ध्वनि के साथ लोग उन्हें नगर की ओर ले चले।
1: सभा स्थल में पहुंचने पर देखा गया कि वहां लगभग 5,000 लोग एकत्र हो गए हैं।
2: ऋषि मुनियों की निवास भूमि, आध्यात्मिक संपदा तथा माओं से परिपूर्ण गिरिराज हिमालय के साथ स्वामी जी का बचपन से ही एक तरह का घनिष्ठ लगाव था। अतः इन मान पत्रों का उत्तर देते हुए उन्होंने हिमालय का गुणगान करते हुए वहाँ एक आश्रम स्थापित करने की अपनी आंतरिक इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा,
0: ये हमारे पूर्वजों के स्वप्न का प्रदेश है। भारत जननी श्री पार्वती की जन्मभूमि है। ये वो पवित्र स्थान है जहाँ भारत का प्रत्येक सच्चा धर्म पिपासु व्यक्ति अपने जीवन का अंतिम काल बिताने को इच्छुक रहता है। ये वही भूमि है जहाँ निवास करने की कल्पना मैं अपने बाल्यकाल से ही करता रहा हूँ। मेरे मन में इस समय हिमालय में एक केंद्र स्थापित करने का विचार है और संभवतः मैं आप लोगों को भलीभांति ये समझाने में समर्थ हुआ हूँ कि क्यों मैंने अन्य स्थानों की तुलना में इसी स्थान को सार्वभौमिक धर्म शिक्षा के एक प्रधान केंद्र के रूप में चुना है। इन पहाड़ों के साथ हमारी जाति की श्रेष्ठतम स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। यदि धार्मिक भारत के इतिहास से हिमालय को निकाल दिया जाए तो उसका थोड़ा ही बचा रहेगा। अतएव यहां एक केंद्र अवश्य होना चाहिए। यह केंद्र केवल कर्म प्रधान न होगा बल्कि यहां निस्तब्धता, ध्यान तथा शांति की प्रधानता होगी और मुझे आशा है कि एक न एक दिन मैं इसे रूपायित कर सकूंगा।
1: इन्हीं दिनों स्वामी शिवानंद अल्मोड़ा में तपस्या कर रहे थे। वे भी स्वामी जी के साथ आ मिले। और भी जो गुरु भाई या शिष्य स्वामी जी के साथ अल्मोड़ा आए थे अथवा बाद में आकर उनसे मिले थे या फिर कुछ दिनों बाद उनके उत्तर भारत के भ्रमण के दौरान उनके संगी हुए थे, उनके नाम इस प्रकार हैं: स्वामी योगानंद, स्वामी निरंजनानंद, स्वामी अद्वैतानंद तथा स्वामी विज्ञानानंद। ये सभी श्री रामकृष्ण के शिष्य थे और स्वामी सदानंद, स्वामी सच्चिदानंद, स्वामी शुद्धानंद, ब्रह्मचारी कृष्णलाल तथा श्री जे जे गुडविन, ये सभी स्वामी जी अथवा उनके गुरु भाइयों के शिष्य थे।
2: आर्य समाज के भूतपूर्व प्रचारक स्वामी अच्युतानंद भी कुछ काल तक स्वामी जी के साथ रहे। ये श्री रामकृष्ण संघ के न थे और उपरोक्त किसी भी श्रेणी में नहीं आते। इनमें जब जो लोग अल्मोड़ा में रहते, स्वामी जी दल के साथ आमोद प्रमोद में दिन बिताते। व्यायाम तथा स्वास्थ्य में सुधार के निमित्त वे घोड़े पर चढ़कर दूर दूर तक भ्रमण करते। 29 मई को उन्होंने कलकत्ता के चिकित्सक डॉक्टर शशि भूषण घोष को लिखा था,
0: सुबह शाम घुड़सवारी के रूप में मैंने यथेष्ट व्यायाम प्रारंभ कर दिया है और इसके फलस्वरूप मैं सचमुच ही काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ।
1: अल्मोड़ा पहुंचकर शहर में कुछ दिन बिताने के बाद गर्मी के कारण वे वहीं से 20 मील दूर देवलधार नामक अपेक्षाकृत ठंडे स्थान में स्थित लाला चिरंजी लाल के एक उद्यान में चले गए। वहां प्रचुर मात्रा में फल, विशेषकर खुबानी होने के कारण वे उन्हीं को खाते तथा नैनीताल से अन्य प्रकार के फल भी मंगा लेते। ये सारा संवाद देते हुए उन्होंने डॉक्टर साहब को अंत में लिखा था,
0: इस समय मैं अपने आप को खूब बलवान महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर, आजकल जब मैं बर्फ से ढके पर्वत शिखरों के सम्मुख बैठकर उपनिषद के अंशों का पाठ करता हूँ, उस समय तुम यदि काश एक बार मुझे देख पाते। रामकृष्ण मिशन की कलकत्ते की सभाओं की सफलता की खबरें पाकर मैं अत्यंत आनंदित हुआ हूँ। जो लोग इस महान कार्य में सहायक हो रही हैं, उनका सर्वांगीण कल्याण हो।
1: शारीरिक अस्वस्थता के कारण हिमालय पहाड़ के निर्जन फलोद्यान में दिन बिताने के बावजूद उन्होंने अपना काम जारी रखा। वहां रहकर भी वे इन बातों पर विचार करते और दूसरों को परामर्श भी देते। स्वामी जी ब्रह्मानंद के नाम लिखे पत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख मिल जाता है। उस समय वे कलकत्ते के पास एक स्थायी मठ निर्माण के लिए आवश्यक धन के बारे में सोच रहे थे। कभी मुर्शिदाबाद जिले में चल रहे अकाल राहत कार्य के बारे में सलाह देते, मद्रास में शुरू किया गया केंद्र के लिए असिस्टेंट की बातें सोचते थे। मेरी हेल्बास्टर को लिखे 2 जून के पत्र में लिखा,
0: अल्मोड़ा के एक व्यापारी के एक सुंदर उद्यान में हूँ। परसों रात एक चीता यहाँ धमका और बाग में रखे झुंड में से एक बकरा उठा ले गया। मिस मूलर की तुम्हें याद है ना, कुछ दिन रहने के लिए वे यहाँ आई हुई हैं, परंतु चीते वाली घटना सुनकर डर सी गई हैं।
2: देवलधार के उद्यान में कई सप्ताह बिताने के बाद 19 जून को वे अल्मोड़ा लौट आए। स्वयं को उस समय वे काफी स्वस्थ अनुभव कर रहे थे, तथापि संगीगण उनके स्वास्थ्य में इतना सुधार हुआ नहीं मानते थे। अल्मोड़ा निवास के दौरान वे स्थानीय लोगों के साथ वार्तालाप करते और अनेक देशी विदेशी मित्रों को पत्र लिखकर अपने विभिन्न भावी कार्यों के विस्तार हेतु क्षेत्र तैयार करते। वैसे उस समय भारत में होने के कारण भारतीय कार्य ही प्रधानतः उनके मन पर अधिकार जमाए हुआ था और इस विषय में उनका मत था,
0: कर्म कर्म कर्म, मुझे और किसी चीज की परवाह नहीं है। हृदय और केवल हृदय ही विजय प्राप्त कर सकता है, मस्तिष्क नहीं। पोथी पत्र विद्या योग ध्यान और ज्ञान प्रेम की तुलना में ये सब धूल के समान है। प्रेम में ही अणिमादि सिद्धियां हैं, प्रेम में ही भक्ति है, प्रेम में ही ज्ञान है और प्रेम में ही मुक्ति है। यही तो पूजा है, मानव रूपधारी ईश्वर की पूजा। ये तो आरंभ मात्र है। इसी प्रकार क्या हम संपूर्ण भारत पृथ्वी भर में नहीं छा जाएंगे?
1: इन्हीं दिनों स्वामी जी की सफलता पर जलते हुए कुछ लोगों ने उन पर चौतरफा आक्रमण चलाया था। स्वामी जी ने इस पर मेरी को पत्र लिखकर कहा था,
0: मैं समझ रहा हूं कि मेरा कार्य समाप्त हो चुका है। जीवन के अधिक से अधिक 3-4 वर्ष बचे रही हैं। अपनी मुक्ति की इच्छा अब मुझमें बिल्कुल नहीं है और सांसारिक सुख की कामना तो मैंने कभी की नहीं। मैं अपने यंत्र को खूब सशक्त रूप से शुरू हो गया देखना चाहता हूं और जब मैं निश्चित रूप से समझ लूंगा कि मानव जाति के कल्याणार्थ मैंने एक ऐसा यंत्र अंततः भारत में चालू कर दिया है जिसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती, तब भविष्य की चिंता छोड़कर मैं सो जाऊंगा। मेरी अभिलाषा है कि मैं बारंबार जन्म लेकर हजारों दुख भोगता रहूं ताकि समस्त आत्माओं के समष्टि रूप अपने उस एकमात्र ईश्वर की पूजा कर सकूं जो सचमुच विद्यमान है और जिन पर मुझे विश्वास है। सर्वोपरि सभी जातियों तथा सभी वर्णों के पापी तापी तथा निर्धन रूपी ईश्वर ही मेरे विश्वास तथा उपास्य हैं।
1: अल्मोड़ा में इसी प्रकार कई दिन बिताने के बाद 11 जुलाई को वे पुनः देवलधार गए। सेवियर दंपत्ति उस समय शिमला में थे, मिस मूलर अल्मोड़ा में थी और गुडविन स्वामी के आदेश पर मद्रास चले गए थे।
2: इसी काल में एक अन्य पत्र में स्वामी जी की स्वभाव सुलभ निर्भीक सत्यवादिता का उदाहरण मिलता है। कुमारी मैकलाउड भारत आना चाहती थीं। स्वामी जी ने उन्हें इसके लिए सस्नेह आमंत्रित किया था, तथापि अपने 10 जुलाई के पत्र में उन्होंने भारतीय हालात तथा उसके साथ पाश्चात्य जीवनधारा के मापदंड के पूर्ण पार्थक्य के विषय में एक ऐसा सटीक तथा निरावरण चित्र खींचा था जो केवल स्वामी जी के लिए ही संभव था। उन्होंने लिखा था,
0: जैसे भी बने तुम यहाँ आ जाओ, केवल इतना ही स्मरण रखना कि यूरोपीय तथा भारतीय का साथ रहना तेल तथा जल के समान है। नेटिव लोगों के साथ मिलना जुलना यूरोपीय लोगों के लिए एक बड़ी भयानक बात है। सर्वत्र धूल कीचड़ और काले आदमी, परंतु दार्शनिक चर्चा करने वाले लोग भी तुम्हें अनेक मिलेंगे।
1: अनुरागी भक्तों को वे चाहते थे, परंतु मिथ्या आशा के धोखे में रखकर नहीं। निवेदिता के भारत आने के पूर्व उन्होंने उन्हें भी ठीक इसी प्रकार या इससे भी स्पष्ट रूप से सावधान कर दिया था। कहना न होगा कि इस प्रकार जान सुनकर भी इन दो महामना महिलाओं ने यहां आकर भारत की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया था। इन दोनों महान महिलाओं ने भारत के सर्वहारा वर्ग के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया था। उनके चरणों में हमारा कोटिशः प्रणाम।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए। रात्रि के 10 बजने वाले हैं और रेडियो आजाद हिंद की प्रसारण सेवा का सफर आज आपके साथ यहीं तक। कल प्रातः 7 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। चलते चलते कल के कार्यक्रम आपको बता दें।
2: कल हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सेवा में आप 7 बजे सुनेंगे कार्यक्रम जीवन सौरभ, धन वैभव और सफलता। अक्षय निधि का प्रसारण 7:10 पर और शाम पुनः प्रसारण 5 बजे होगा। भक्ति संगीत कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे और शाम को 5 बजे आप सुन सकते हैं। 8 बजे सुबह और शाम को 6 बजे पुनः प्रसारण वतन का राग कार्यक्रम का सुनेंगे आप। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आधारित है। आमने सामने कार्यक्रम में आप सुनेंगे, कार्यक्रम में नेहा शर्मा स्वाति, नेहा सैयद युवा कलाकारों से बातचीत सुबह 8:30 बजे और शाम पुनः प्रसारण 6:30 बजे। वागरधाप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद पर आधारित, सुबह 9 बजे पुनः प्रसारण 7 बजे। 9:30 पर सुबह और शाम को 7:30 बजे विशेष कार्यक्रम कविता कृष्णमूर्ति के भाग 2 का आप प्रसारण सुन सकते हैं। हिंदुस्तान हमारा सुनिएगा सुबह 10:30 बजे, पुनः प्रसारण 8:30 बजे। कला कल्लोलनी आप सुबह सुनेंगे 11 बजे और पुनः प्रसारण 9 बजे, विष्णु नारायण भातखंडे पर आधारित है। और 11:30 पर सुबह और 9:30 पर शाम को आप सुनेंगे युग प्रवर्तक विवेकानंद के 54वें भाग का प्रसारण। तो ये थी हमारी कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।
1: अपने रेडियो मित्र डॉक्टर रानी रैकवार भारती को अनुमति, सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम।